0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाह बता हम कहां जाएं।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाना।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा, खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
2: भगवान खिलाएंगे, वही खाएंगे।
1: खाओ।
2: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक
0: 120 से अधिक वर्षों का विश्वास, विकास की नई पहचान।
1: EKCC पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाना हुआ और भी आसान। खेती की हर जरूरत का भरोसेमंद समाधान।
0: बीज, खाद, सिंचाई और फसल की तैयारी, हर कदम पर आपका अपना बैंक।
1: आसान प्रक्रिया, समय पर ऋण, किसान की

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली

0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका आयोजन करेंगे।
1: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी कोलंबस से रवाना होकर कारगिल तक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर परिवार को जीविका के माध्यम से 4,000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष
2: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। यह अभियान 17 अगस्त 2024 लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2024, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2024, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2024 और राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2024 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है।
3: और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जाँच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। भविष्य रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभाग में आपका स्वागत। भारतीय सेना अमरीकी सेना का संयुक्त आयोग रोजाभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के ईओडी टीमों और विशेषज्ञ सलाहकारों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है।
4: जनसंपर्क के सभी कार्यक्रम में सरकार जेपीएससी के सदस्य सदस्य का हिस्सा है। ڈیمیٹ اور ڈیفرنٹ نامنی

Hey, Marina.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हालचाल है जी? आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ, जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने देसी रेडियो के साथ, आपके अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, 8:23 हो रहे हैं, एक सोमवार की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, बहुत ही खूबसूरत सुबह। तारीख हो गई है आज 10 अगस्त की। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और दिल से कहते हैं आप सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सुबह से शिवालयों में जो है भगवान शिव की जय जयकार है, चारों ओर का माहौल भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु भक्त सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगाकर मंदिरों में खड़े हैं। शायद आप मंदिर के लिए तैयार हो रहे हो या फिर आपकी पूजा की थाली रेडी हो। अच्छा, मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हो, चलिए भैया ऑल द बेस्ट, आप आराम से मंदिर पहुंचे। लेकिन हाँ, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो अपने मन को जरा शुद्ध करके जाइए, अपने मन को थोड़ा सा शांत करके जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए, आप मंदिर जा रहे हैं, शॉपिंग पे नहीं जा रहे हैं ना, तो आराम से जाइए। आप परमपिता परमात्मा से, उस भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो अपने मन को शांत करके एकदम मुस्कुराते हुए, किसी को अपनी जुबान से कुछ गलत नहीं बोलना है, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है, अपने मन को एकदम शांत करके एकदम सुंदर से स्माइल करते हुए घर से बाहर निकलिए और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँच जाइए। हाँ जी, आनंद के साथ ऐसी बातों के लिए ट्यून इन रहिएगा आप ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, कांवड़िए जो है चारों तरफ से भगवान शिव के जयकारों के साथ निकल रहे हैं। हो सकता है आपके घर के आसपास भी डीजे की आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ आपको, और कल से जो माहौल बना हुआ है ना, मतलब मानना पड़ेगा यार। फिलहाल आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के साथ। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, और अब से लेकर 10 बजे तक आपको एक कंपनी मिलने वाली इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। जी हाँ साथियों, स्टेशन की घड़ी का जो वक्त है उसको प्लीज मिलाते रहिए। 8:25 हो रहे हैं और एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत। उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी की आवाज़ों में इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है। आज की मॉर्निंग को आपको देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं और एक प्यारा सा थॉट जो आपके साथ शेयर करना है। लौट के आएंगे तो शेयर करेंगे। गजब का है दिन, सोचो जरा, बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन की शुरुआत आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे कुछ पहुँचाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है 9837896 896 पे। गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग. बिंदास मॉर्निंग. बिंदास मॉर्निंग. आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है. पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है. पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है. अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा. किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें. निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली.

0: क्या बात है यार। देखो यार, मुझे ना सच बताऊं, ऐसे गाने सुन के बड़ी नॉस्टैल्जिया वाली फील आती है कि यार सुबह सुबह कुछ तो अच्छा और कुछ तो बेटर मैंने सुन लिया है। और जब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें सुबह सुबह सुनने को मिलती हैं, दिन और मन दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। हेलो, हाय, वेलकम बैक है, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। वक्त हुआ है 8:37। ये मंडे मॉर्निंग है, आपको मंडे ब्लूज बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि आप आनंद को सुन रहे हैं यार। और जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें लेकर आता है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एंड तमाम सारे श्रोता साथ ही लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ढेर सारे मैसेजेस मुझे पहुंचा रहे हैं, ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें आप पहुंचा रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और जो लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उनका स्वागत अभिनंदन इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। सबसे पहले हर हर महादेव, वेरी गुड मॉर्निंग है जी, कैसे हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? चलो, सब कुछ अच्छा ही चलना चाहिए। बस मेरी तो यही विशेज आपके साथ हमेशा रहती है कि यार लाइफ में सब अच्छा होना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। प्रॉब्लम है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, बस आप जो है खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी को एंजॉय करते रहिए, बहुत जरूरी है ना। और हाँ, खुद की तारीफ करना अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज वो मत भूलिए, अपनी तारीफ भी करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में अपनी तारीफ अगर आपने नहीं करी तो फिर आप बहुत पीछे बैठे हैं मेरे दोस्त, है ना। तो अपनी तारीफ भी करते रहिए और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और बहुत सारे वॉइस नोट मेरे पास लगातार पहुंच रहे हैं, ढेर सारे श्रोता साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी मैं तो यहाँ पर रहूँगा आपके साथ 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी आप लोगों ने जो प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं, मैं डेफिनेटली वो यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: क्या बात है जी, बिल्कुल रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और जब हम आते हैं तो रेडियो बजाते भी हैं और साथ में गुनगुनाते भी हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तारीख की एक बारी फिर से बात कर लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत 10 अगस्त की सुबह है, आप आरजे आनंद को सुन रहे हैं और यहाँ पर ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ा प्यारा मैसेज पहुंचा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब। आनंद जी, जिंदगी में अगर कुछ हमें बड़ा करना है तो उसके लिए हमें अपने काम को टालते नहीं रहना चाहिए, हमें सही टाइम पर सही एक्शन लेना चाहिए ताकि हम अपने काम को समय से निपटा सकें। वेरी गुड। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है मनोज भैया का। अरे मनोज भैया, सुबह सुबह आपने तो मतलब कमाल कर दिया यार, इतनी प्यारी बातें आप पहुंचा रहे हैं, आनंद को आनंद आ जाएगा इतनी अच्छी बातें सुन के तो यार। चलिए एक और मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है आनंद जी? सुबह सुबह आपकी जोशीली आवाज सुनकर मन जो है गार्डन गार्डन हो जाता है, दिल भी प्रसन्न हो जाता है और मन भी। अरे वाह भाई वाह, मतलब सब कुछ प्रसन्न कर दिया आपने, है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये जो प्रसन्नता है इसको ऐसे ही बरकरार रखिए। और हम ऑफकोर्स आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे ढेर सारी बातों के साथ। और भी ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। आई एम सो हैप्पी यार, इतने प्यारे व्हाट्सएप कर रहे हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हो, मतलब मैं तो खुशी हो जाऊंगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ बात कर लेते हैं। फिलहाल आज का एक प्यारा सा थॉट ऑफ द डे कहते हैं, जैसे संगत में आप रहते हो ना वैसे आप बन जाते हो, जैसा ऑरा आपके आसपास के लोगों को होता है ना वैसे आप में भी आ जाता है ना। तो अपने आसपास के लोगों को ना बड़ा सोच समझ के शॉर्टलिस्ट कीजिए, अपनी जिंदगी में उन्हीं लोगों को एंट्री दीजिए जो एक्चुअली आप चाहते हैं। जैसे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोचते हैं, आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो अपने सर्कल में भी ना वैसे लोग रखिए जिनके अंदर कुछ ऐसा फायर हो, कुछ करने की ऐसी यू नो इच्छा हो, क्योंकि जब आपके साथ ऐसे लोग होंगे ना तो वो खुद भी करेंगे, आपको भी करने देंगे, राइट। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे या ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे दोगे जिसका कुछ एम ही नहीं है, तो भाई उसके साथ साथ ना आपका एम भी खत्म हो जाएगा, आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। अगर आपको बिरयानी जैसी स्पेशल फील चाहिए तो आपको खिचड़ी जैसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा यार। इस वीकेंड मैंने रियलाइज किया कि यार अगर अच्छे लोग आपकी लाइफ में होना तो जिंदगी अपने आप ही अच्छी हो जाती है। सही कहा ना मैंने? चलिए ऐसी बातों के लिए प्लीज ऐसी ट्यून इन रहिए, बाकी औरों को भी शेयर कीजिए यार रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी 89.6 ईच वन टू कीच वन, इसको औरों को भी सुनाइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, उनकी सुबह भी फैबुलस हो। मंडे मॉर्निंग है और आप हमारी ऐप डाउनलोड करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यस, मुरादाबाद से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 की एप्लीकेशन, एंड आप भी सुनिए, इसकी लिंक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़े। चलिए लौट कर आते हैं, करेंगे आपसे और ढेर सारी बात। 8:41 हो गए स्टेशन की घड़ी में, यानी कि 8:41 हो रहे हैं। बॉस अभी लौट कर आएंगे ना, तो आपसे और बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए भैया, ऐसे ही आनंद को सुनते जाइए। ये गाना आई लव दिस ट्रैक है, व्हाट अ सॉन्ग, इसकी वाइब इतनी अमेजिंग है यार। ओए होए सोमवार है यार, अच्छे गाने तो बजने चाहिए ताकि आपकी मॉर्निंग और भी हो सके बिंदास। I'll be right back, keep listening to FM Muradabad 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, दिल से कहिए जियो बिंदास। हाँ जी भैया शुरू हो जाए, 3, 2, 1, go start। बोल दो ना यार।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स अच्छी बातें और अच्छी गाने आप सुनते हैं मेरे साथ। 8:54 हो गए। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, जगह जगह हो रही है भोलेनाथ की जय जयकार। प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए उमड़ पड़े हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक पाती आई है। योगी जी ने कांवड़ यात्रियों को जो है सरमस्तक पर्व बताया है, और बहुत ही खूबसूरत पर्व, एक ऐसा गर्व का एक ऐसा पर्व कांवड़ यात्रा को बताया है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर कोई डेफिनेटली बात नहीं करता है। लेकिन सच में ये पर्व वो है जहां हम नतमस्तक हो जाते हैं, जहां पूरी श्रद्धा भाव के साथ हम जुड़ जाते हैं। भैया आपको बता दें बस इतनी सी बात कि योगी जी ने कांवड़ यात्रा को समरसता का पर्व बताया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को सामाजिक और एक सेवा का उत्साह बनाएं, और यात्री जो कांवड़ मार्ग हैं, जो कांवड़ी के यात्री जो लोग निकलते हैं ना, कई बार होता है कि हम गाड़ी लेके निकल जाते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल सारी चीज़ें बंद हैं। अगर आप दिल्ली रोड कांट रोड की तरफ जाएंगे तो शायद आपकी एंट्री ना हो, है ना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु की एंट्री है। तो भैया बड़ी सिंपल सी बात आई है कि जो यात्री मार्ग पर अगर

0: क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज की तारीख में, चलिए एक नज़र डाल देते हैं और एक नज़र डालने के बाद आपको बताते हैं क्या स्पेशल है आज, क्यों खास है 10 अगस्त की तारीख। श्रोताओं, हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आज की तारीख भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष सूचियां आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, तमाम सारी कड़ियां आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, तो आज के दिन के बारे में बात करना तो डेफिनेटली बनता है। श्रोताओं, तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें, आज ही के दिन जो है तमाम सारे महान लोगों का जन्म हुआ था, जिनमें से एक नाम आता है वीवी गिरी, भारत के चौथे राष्ट्रपति बने आज ही के दिन, सन 1894 की ये बात है। उन्हें आज ही के दिन जो है उनका जन्म भी हुआ था। श्रोताओं, और आपको बता दें फूलन देवी भारतीय डाकू, जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1963 में, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा प्रेम जी का जन्म हुआ आज ही के दिन, भारतीय सिनेमा के अभिनेता थे, सन 1916 को इनका जन्म हुआ था। वहीं बात करें सौरभ जी की, तो उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ, सौरभ घोषाल जी का जन्म हुआ आज ही के दिन, और काफ़ी पॉपुलर नाम है ये भी। और बाकी आज के दिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होले होले आपको पता लगेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप आनंद के साथ हैं, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप लोगों ने ढेर सारे मैसेज किए हैं, वो हम ज़रूर यहाँ पर शामिल करेंगे, और आप लोगों ने जो भी वॉइस नोट पहुँचाए हैं एक एक करके सभी को सुनेंगे, शामिल करेंगे इसी प्रोग्राम में, क्योंकि आप आनंद को सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए जरा कुछ वॉइस नोट को सुनते हैं।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: थोड़ा थक सजाता हूँ अब मैं, इसलिए दूर निकलना छोड़ दिया, पर ऐसा भी नहीं है कि अब मैंने चलना ही छोड़ दिया। फासले अक्सर रिश्तों में अजीब सी दूरियां बढ़ा देते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि अब मैंने अपनों से ही मिलना छोड़ दिया। हाँ, ज़रा सा अकेला महसूस करता हूँ, खुद को अपनों की ही भीड़ में, पर ऐसा भी नहीं कि मैंने अब अपनापन ही छोड़ दिया। याद तो करता हूँ सबको और परवाह भी करता हूँ सबकी, पर कितनी करता हूँ बस बताना छोड़ दिया। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता उधुली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, धन्यवाद।
0: बहुत ही बेहतरीन कुलदीप, अब बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत ये वॉइस नोट देने के लिए। अब इनको सुनते हैं।
3: आनंद भाई, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
3: मैं मौसम अंसारी बनारस से एफएम मुरादाबाद में जुड़ गया हूँ।
0: वेरी नाइस।
3: और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले हैं। पहले गाना जो था ऐतराज मूवी का था, दूसरा मन मूवी का था, और तीसरा एक रिश्ता मूवी का था। तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आनंद भाई प्ले कर रहे हैं आज की सुबह, आपको दिल से धन्यवाद। सभी लोग एफएम मुरादाबाद सुने आनंद भाई के साथ, और 10 अगस्त की सुबह आनंद भाई के साथ आप लोग आनंद ले, और जो भी आप लोग काम करना चाहते हैं अपना काम बिंदास करें, और बिंदास मॉर्निंग आनंद भाई के साथ सुनते रहें एफएम मुरादाबाद दिल से दिल तक। नमस्कार आनंद भाई।
0: मोहसिन भाई, थैंक यू। कुलदीप साहब, आप भी उधौली बाराबंकी लखनऊ से जुड़े, आपके लिए भी जोरदार तालियां, और आप सभी के लिए जोरदार तालियां यार, थैंक यू सो मच। फिलहाल बताने का टाइम हो गया है, सुबह के बज चुके हैं 9, थोड़ी देर में आपको मिलेंगे यहीं पर। आने वाला गाना नीरज श्रीधर की आवाज, साथ में नीति मोहन देंगी साथ। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।
4: मुझे अपनी बना ले कॉल ट्यून सोनी है।
0: लौट के रहता हूँ, उसके बाद बोलूंगा भैया क्या कहना क्या चाह रहे हो, मुझे अपनी बना ले कॉल ट्यून। सुबह सुबह सोमवार है यार, और ऐसी बातें आप कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ये जो जोक्स पार्ट है, मस्ती वाला टाइम है, ऐसे इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे। बाकी आप जहां भी जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या अपडेट है लेटेस्ट, आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके 9837896896 पर। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग।
5: इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन।

0: नामुमकिन है।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: हाँ मेरी कसम
4: मिस कर दिया तो रीलोड
6: चाय चाय चाय
4: बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: श्रेय भैया हमारी एंट्री हो गई है, 9:02 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। ये मंडे की सुबह है और थोड़ी एनर्जेटिक आवाज में बात करने का यार आनंद। हाँ जी कैसे हाल चाल है? देखो आज 10 अगस्त हो गया यार, कल महाशिवरात्रि है और ऐसे में जो है ना बच्चों के लिए बड़ी जोरदार तालियां। अच्छी गुड न्यूज ये है कि आज भी छुट्टी है, आज तो छुट्टी है ही, सावन का सोमवार है दूसरा है ना, 10 अगस्त को छुट्टी है ही, लेकिन कल भी पूरे जनपद मुरादाबाद में सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की ऑफ रहने वाली। कल महाशिवरात्रि है, कांवड़ भाइयों का जो कांवड़ती भाई है उनका जल चढ़ने वाला है, महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कूल एंड कॉलेजेस दोनों बंद कर दिए गए हैं आज एंड कल। तो भैया कल भी छुट्टी रहने वाली है बहुत सारे बच्चों की, आज भी छुट्टी है एंड दो दिन आपको मिल गए हैं फुल ऑन एंजॉय करने के लिए। पेरेंट्स भी थोड़ा सा जो है अब रिलैक्स फील करने वाले हैं। जी जनपद मुरादाबाद में आज यानी कि 10 एंड कल 11 अगस्त को दो दिन छुट्टी है, सभी स्कूल एंड कॉलेजेस अपने जनपद मुरादाबाद में बंद हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है इसलिए ऑफ है और कल महाशिवरात्रि को मद्देनजर रखते हुए जो है सभी स्कूल एंड कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। चलो ये तो अच्छी बात है, एक अच्छी गुड न्यूज मैंने आपको दे दी। हाँ हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी हो रही है मुरादाबाद में। हाँ जी क्या है पूरी अपडेट मुरादाबाद से जुड़ी अभी आपको बताऊंगा। बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है आने वाली 12 अगस्त को अपने मुरादाबाद में और क्या होने वाला है, इट वाज रियली अमेजिंग यार, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर आप मुरादाबाद से हैं, आप मुरादाबाद में मुझे सुन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल की और काम की चीज होने वाली है। क्या हो रहा है मुरादाबाद में 12 अगस्त को सुबह 8 बजे, ऐसा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जानने, आपको बने रहना मेरे साथ। चलो फटाफट से अभी मुझे एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब पहुंचाओ, इमीडिएटली मुझे मैसेज करना आप 9837896896। ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है? आई रिपीट माय क्वेश्चन, ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है? पता है क्या आपको? व्हाट्सएप करिएगा 9837896896 पे, इमीडिएटली आप मुझे मैसेज करिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा इल्जाम सारा ब्लेम अपने सर ले लेती है? अगर पता है तो बताइएगा जरूर। 9:04 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। थोड़ी देर में जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वायराकी जी। कोई क्वेश्चन है आपका अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चों की स्टडी के बारे में पूछना है, फ्यूचर के बारे में पूछना है, आपका फ्यूचर कैसा होगा, जो भी आपको जानना है, वॉट एवर, आप मुझे अपने नाम के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए फटाफट से 9837896896 पे। थोड़ी सी देर में आएंगी हमारे साथ इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी। सेगमेंट होगा चेक योर लक विद डॉक्टर राखी।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया गाना भी आपने सुन लिया झक मार के। और सुबह सुबह यार ऐसे गाने सुन के सच बता रहा हूँ, मतलब मजा ही आ जाता है, फीलिंग एकदम ग्लैड वाली हो जाती है। आज मंडे की सुबह है, वेरी गुड मॉर्निंग है जी। 9:13 आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुनते हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज कम्युनिटी रेडियो। यार ये मंडे की मॉर्निंग वाइब आपको मिल रही है 89.6 एफएम पे। और जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं फटाफट से मुझे हेलो हाय पहुंचा सकते हैं यार, अगर कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट है तो डेफिनेटली आप उसे शेयर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अभी कुछ काम की, तो आपको बता दें मुरादाबाद में जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो इस 12 अगस्त को जो है अपने मुरादाबाद के इंपीरियल चौराहा से, इंपीरियल तिराहा से एक बहुत ही सुंदर भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। हाँ जी, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जो है एक भव्य तिरंगा यात्रा होने वाली है। देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम की भावना का जो है ये बहुत ही खूबसूरत उत्सव नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा। भव्य तिरंगा यात्रा में आप सभी पार्टिसिपेट करें। ये तारीख रहेगी अपनी 12 अगस्त, दिन होगा वेंसडे का एंड टाइमिंग रहेगी सुबह 8 बजे से। और इसका स्थान रहेगा इंपीरियल तराहा मुरादाबाद। हाँ जी, यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होगी। और बस मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तो भैया आप जुड़िए इस इनिशिएटिव में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी सहभागिता निभाइए एंड इस खूबसूरत माहौल को और भी ज़्यादा गौरवान्वित बनाइए। अपनी जो प्रस्तुति है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है भैया, वहाँ जाके दिखाइए। हर घर तिरंगा अभियान में जो आप भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, सहभागिता निभाइए, बहुत जरूरी है। देखिए आपकी प्रेजेंस ही ना इसको और ज्यादा पावरफुल बना देगी, है ना। तो नगर निगम की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत चीज होने वाली है 12 अगस्त वेंसडे को, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक बहुत ही भव्य यात्रा का आयोजन हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, तारीख याद रखिएगा, वेंसडे का दिन है, 12 अगस्त की तारीख है, ठीक है। तो मैं भी पहुंचने वाला हूं, आप भी पहुंचिए सुबह 8 बजे। और ऐसी ढेर सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जो लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उनके लिए भी एक मेरे पास अच्छी खबर है आज की सुबह। बाकी मैंने आपसे कहा था आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा ब्लेम अपने सर ले लेती है, सारा का सारा इल्जाम ये अपने ऊपर ले लेती है, कौन सी सब्जी है आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप करके आज की सुबह 9837896896 में। इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। 9837896896 पर कोई बहाना मत दो, फटाफट मुझे मैसेज करो 9837896896 पे। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है, पता है आपको? तो देखो यार कोई बहाना मत दो, फटाफट से मैसेज करो 9837896896 पे। लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे अभी और भी ढेर सारी बात, क्योंकि आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6। 9:16 हो रहे स्टेशन क्लॉक में। आने वाला गाना, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, माइंड ब्लोइंग गाना, मीका सिंह की आवाज, सच में वंडरफुल ट्रैक, समथिंग समथिंग।
1: एक बार प्यार की नाची बात चारो सोनिए, सुन ले तो समथिंग समथिंग।
0: मंडे की सुबह, और भैया मैं आपको कुछ और लेटेस्ट चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। डोंट गो एनीवेयर, रेडियो की सुन बिल्कुल मत घुमाइए, कहीं पर बिल्कुल मत जाइए। आप ऐसे ही आनंद के साथ जुड़े रहिए, आने वाले कुछ धांसू गाने, उसके बाद लौट कर आएंगे। बात करेंगे ऐसी फिल्म के बारे में जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, बहुत ही प्यारी फिल्म है यार, बहुत ही कल्ट क्लासी मूवी है बॉलीवुड की। और भी बॉलीवुड में क्या चल रहा है, आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्या नेशनल इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, क्या और खास हो रहा है मुरादाबाद में, दिल्ली रोड कांट रोड, बताऊंगा ना अभी आपको। अभी फिलहाल ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, दिल से कहो जियो ब।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद

0: चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद, इस

बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी आपने एंजॉय कर लिया। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मंडे की सुबह है जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। हन जी, 9:27 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में। यार ब्रांड न्यू मंडे है, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप। देखो यार, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है बिकॉज जिन लोगों ने रेडियो अभी अभी खोला है उनको भी तो पता होना चाहिए ना यार। मैंने आपसे कहा था ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। एंड सो मेनी मैसेजेस यार, बड़े फैंटास्टिक मैसेज आ रहे हैं। किसी ने लिखा आलू, कोई लिख रहा टमाटर, कोई लिख रहा भिंडी। यार ये हो क्या रहा है, सुबह सुबह मैं सब्जी मंडी में पहुंच गया हूँ, स्टेशन बैठे बैठे फील आ रही कि मैं सब्जी मंडी में बैठा हूँ। यार इतने सारे सब्जियों के नाम आप बता रहे हो, बट यार मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ इनमें से एक भी राइट आंसर नहीं है। शिखा जुड़ चुकी है मानसरोवर कॉलोनी से, लिखती है हाय आनंद, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। यार सुबह सुबह तो कहाँ से लेकर आता है ऐसे खुराफाती क्वेश्चन, बस यार आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग सोचता हूँ इसलिए तो रेडियो इंडस्ट्री में हूँ। एनीवे ये लिखती है शिखा, यार मुझे ऐसे लगता है आनंद, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इन्होंने ना बड़ा सोच समझ के जवाब दिया और शायद इनको इनसे बड़ा प्यार है। लिखती है यार मेरे को ना प्याज लगता है, क्योंकि मैं जब भी उसको काटती हूँ मेरे को रोना आ जाता है और मुझे लगता है कि प्याज एक ऐसी सब्जी है, मतलब एक ऐसी चीज़ है कि सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। अच्छा ऐसा क्यों लगा आपको कि मतलब सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर प्याज ले लेती है, यार मेरे को समझ नहीं आया ये वाला शिखा जी। साथ में सावन के सोमवार की शुभकामनाएं दे रही है ये, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए एक और मैसेज फटाफट से मैं यहाँ पे शेयर शामिल कर देता हूँ। यार हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल है, माय नेम इज तरुण। हाय तरुण, गुड मॉर्निंग। तरुण लिखते हैं भैया जय श्री राम, आनंद जी आपकी आवाज और एनर्जी दोनों ही लाजवाब है, अरे वाह क्या बात है यार, गार्डन गार्डन बना देते हो आप मेरा दिन। लिखते हैं यार मेरे हिसाब से तो आलू है। अच्छा एक मैसेज आया हाय गुड मॉर्निंग, मुझे लगता है कि शलजम है। ओ भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है आज की सुबह। एक और मैसेज मेरे पास आ गया है, गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हाल चाल है। गुड मॉर्निंग यार मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मैसेज मेरे पास अमन का है, इन्होंने मुझे गायत्री नगर से मैसेज किया है। ये लिखते हैं आनंद जी मुझे लगता है टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और हर एक सब्जी में मिक्स हो जाता है। वाह जी वाह, मैं क्या ही बोलूँ यार अब। नमस्कार आनंद जी, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है आपका। विंदास मॉर्निंग वाकई ही बड़ा लाजवाब होता है क्योंकि इसमें आप बड़ी खूबसूरत आवाज में बड़े प्यारे प्यारे गीत सुनवाते हैं, बातें आपकी बेमिसाल होती हैं, आपकी बातों का तालमेल और आपके गानों का संगम बहुत ही प्यारा होता है। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चमन लाल साहब पुतलीगढ़ रोड से गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। हमारे पास ये मैसेज आया है अनम का, हाय गुड मॉर्निंग अनम। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आ रहा है जुल्फी भाई का, लिखते हैं हेलो जी कैसे हालचाल है यार, सब बहुत बढ़िया। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज मेरे पास प्रणव का आ रहा है, प्रणव ने लिखा है हर हर महादेव और आनंद जी मुझे लगता है कि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। भाई क्या ही हो रहा है। अच्छा लेडीज से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आई वुड आस्क यू फीमेल्स, आप मुझे व्हाट्सअप करो 9837896896 पे। किचन में आप ज्यादा रहती है, आप बताओ मुझे आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी ऐसी सब्जी है जो सारे का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है। एंड बैक टू पॉइंट, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में, बिजनेस के बारे में, बच्चों के बारे में, लव लाइफ के बारे में, जो भी आपको लगता है वट एवर, यू कैन आस्क मी। अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम मुझे इमीडिएटली मैसेज करेंगे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम, क्योंकि मेरे साथ जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी। आप फ्री में अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं, यहाँ पर आप फ्री में अपना चेक कर सकते हैं लक। जी हाँ कुछ भी जानना है तो आप मुझे फटाफट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेजेस का। गाड़ी में जा रहे हो पर जाए जी, चलो अच्छी बात है, गाड़ी आराम नाल चलाओ है ना, आप आनंद को सुनते जाओ ऐसे ही। और अभी मैं लौट कर आऊंगा तो करूंगा आपसे और भी बातचीत। एंड हम अभी लेकर आने वाले हैं डॉक्टर वाई राखी जी को, जो आपके साथ साझा करेंगे बहुत ही प्यारी रेमेडीज एंड साथ ही साथ किसी दो लकी कॉलर के फ्यूचर को थोड़ा सा और ज्यादा हम हैप्पी बनाने वाले हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आने वाला गाना और भी झकास, जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी खास। 9:30 हो रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर मेरा बड़ा सिंपल है 9837896896, इस नंबर पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। ये गाना जरा सी देर में आपके रेडियो पर आएगा इसी स्टेशन पर।

0: हाँ जी, बट मैं आपसे एक और चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप मुझे मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन अपना नाम आप जरूर लिखें, और अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां आपको लगता है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आनंद तक पहुंचनी चाहिए, आनंद रेडियो पे सब तक पहुंचाएगा, तो डेफिनेटली आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। UPI से जुड़ी एक खास जानकारी शेयर करूंगा थोड़ी देर में।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: कहा मेरी कसम?
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाहे चाहे चाहे
6: बिंदास मॉर्निंग।
3: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, वो स्वागत है। शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, वो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं, आप चाहे दिल्ली रोड हो या स्टेशन रोड, आप चाहे क्या कह रहे हो भैया, हम कांट रोड पे बिल्कुल नहीं है आज, उधर हमारी गाड़ी की एंट्री नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज जो है बिल्कुल एंट्री नहीं है, क्योंकि आज भैया सिर्फ बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं कांट रोड पर, दिल्ली रोड पर, और गूंजने भी चाहिए। अगर अभी तक आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, अगर अभी तक आप मंदिर नहीं गए, तो फिर कहाँ जा रहे हो? निकलो यार, कब जाओगे? समय बहुत ज्यादा हो गया, 9:37 हो रहे हैं। मंडे की सुबह व्हाइट पहन के निकल रहे हो, तो आपका लक और भी ज्यादा साथ दे देगा आज की मॉर्निंग, बता रहा हूं मैं आपको। हाय, कैसे हाल चाल है? बहुत सारे मैसेज आ गए थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था चेक योर लक विद डॉक्टर राखी, हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर। कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप मुझे बताइए। एंड इतने सारे मैसेज आ गए, चलिए मैम को लाइन पर लेते हैं। मैम जुड़ चुकी है। हेलो मैम, जय श्री राम, हर हर महादेव।
1: जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।
0: क्या बात है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद में।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुरादाबाद में तो बिल्कुल हर जगह पर कावड़ ही कावड़ दिखाई दे रही होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा दिल्ली में है वैसे मुरादाबाद में भी है, और सुबह से मंदिरों में भी बहुत भीड़ लगी हुई है, और अब तो कुछ ज्यादा भीड़ हो गई है। मैं स्टूडियो आ रहा था, मैंने देखा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
1: अब ये 3-4 दिन बहुत स्पेशल है, ये अगस्त का महीना है, 15 अगस्त है, औरतों की तीज है, कल जल चढ़ेगा, तो इतने सारे त्योहार एक साथ है। सावन का सोमवार है, मंगला गौरी का व्रत है, तो मतलब त्योहार ही त्योहार, हर जगह पर एक पॉजिटिव एनर्जी।
0: एब्सोल्युटली, और बाकी सारी एनर्जीज तो आपसे ही आती है पॉजिटिविटी वाली। मेरे पास मैसेज आया है श्वेता का, इन्होंने लिखा आनंद जी डॉक्टर राखी जी को जय माता दी, और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैंने कल भी व्रत रखा, मैं आज भी रख रही हूँ, क्या मैं कल भी शिवरात्रि का व्रत रख सकती हूँ?
1: हाँ बिल्कुल, आप तो पूरे सावन के व्रत रख सकती हैं, पूरे महीने के व्रत रख सकती हैं, और रखने भी चाहिए, बिल्कुल रख सकती हैं। और पूरी साल में व्रत रखना एक बात, और सावन के महीने में ये व्रत रखना एक बात, और हमें व्रत रखने चाहिए। हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और महादेव की अति कृपा हम पर होती है। और जय माता दी श्वेता, वैसे भी तुम्हारा नाम श्वेता है, कुंभ राशि, और कुंभ राशि में शनि की सारस्वती चल रही है, जितनी भक्ति में रहोगी उतनी मस्ती में रहोगी।
0: वेरी नाइस श्वेता जी, थैंक यू सो मच। और शिखा जी मेरे साथ जुड़ी है, हमारी रेडियो लिसनर। शिखा ने लिखा है आज पहली बार मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, और इन्होंने लिखा है मुझे ये पूछना है कि सावन में ग्रीन कलर ही क्यों इतना ज्यादा पहना जाता है, क्या आप पूछ सकते हैं मैम से?
1: तो बिल्कुल, खिड़की से बाहर निकलिए और बाहर निकल कर चारों तरफ देखिए, एक एक पौधा, एक एक घास का टुकड़ा, एक एक जगह, हर जगह हरियाली छाई हुई है। इस टाइम पर पूरे साल में महादेव जो है कैलाश पर निवास करते हैं, और पूरी कुदरत को जो कि उनके बच्चे हैं, पेड़ पौधे, नदियां, झरने, मिट्टी, हर किसी पर अपनी कृपा बसाते हैं। और चारों तरफ जब हरियाली हो तो मनुष्य उस हरियाली से दूर कैसे रह सकता है? तो आपको हरे कपड़े, हरी चूड़ी, हरी बिंदी का प्रयोग करने से आपका बुध अच्छा होता है, और महादेव की बड़ी कृपा आप पर होती है।
0: वेरी नाइस मैम। एक प्रणव करके मैसेज कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है आनंद जी मुझे अपनी हेल्थ के बारे में पूछना है, क्या मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर से जान सकता हूँ कि मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, और मैं क्या कर सकता हूँ सावन में ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे और फाइनेंस भी मेरा अच्छा बना रहे?
1: देखो, फाइनेंस अच्छा करने के लिए तो महादेव की पूजा करें, गन्ने का रस और शहद महादेव पर अर्पण करें। लेकिन अगर मैं आपसे जहां तक की बात करूं आपकी हेल्थ की, तो महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें, सुने, पढ़ें, और जैसा सोचोगे जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा तन और मन, तो भैया अच्छा खाओ अच्छा रहेगा।
0: वेरी नाइस। एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास, महाशिवरात्रि पे हम क्या उपाय कर सकते हैं? आज भी हमने किया है, क्या हम कल भी कुछ कर सकते हैं मंगलवार में?
1: देखिए, पहली बार तो मंगला गौरी का व्रत है, मंगल और कर रहा है दंगल, तो भाई ऐसा है कि जब इतने बड़े बड़े कावड़िए नंगे पैर पैदल बारिश में इतनी थकान इतनी तकलीफ के साथ कावड़ उठाकर ला रहे हैं, तो एक आम इंसान का क्या फर्ज बनता है? कम से कम अपने घर से एक लोटा गंगा जल ले जाके महादेव पर तो अर्पण करे। मैं उतना तो नहीं कर सकता, पर इतना तो जरूर करूं।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैसेज

0: मेरे पास पहुंचा है, इन्होंने लिखा है, मेरा नाम अमन है और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी तरफ से लेडीज को ग्रीन चूड़ियां दे सकता हूं किसी को भी?
1: जितनी महिलाओं को आप ग्रीन चूड़ियां दे सकते हैं दें, जितनी महिलाओं को आप बिंदी दे सकते हैं दें, बहुत अच्छी बात है और देना भी चाहिए, बहुत अच्छा है ये, बहुत शुभ और लकी है, इससे माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा।
0: वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा अभी मैं बात कर लेता हूँ राखी मैम आपसे, आज प्रदोष भी है, मंडे है, हमने आपकी वीडियो से भी देखा, तो आज शाम को हम क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह मैं भी बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पाया, ऑफिस आना होता है, बहुत जल्दी होती है सारी चीजों में, तो हम शाम को ऐसा क्या अच्छे से कर सकते हैं कि हमारी पूजा भी सफल हो जाए और हम जो चाहते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाए? मतलब हर बार मांगना ही नहीं जाना चाहिए प्रभु से, कभी कभी मन की शांति के लिए भी हमें पूजा करनी चाहिए।
1: मक्खन महादेव पर सफेद अपने हाथ से निकालकर या किसी अच्छी सी डेयरी पर जाकर सफेद मक्खन महादेव पर अर्पण कर आए, इससे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और आज एक बेल पत्र अगर आपको मिल जाए तो आप अपने आप को भाग्यवान समझें। शिव मंदिर में शाम के समय पर अगर शिव जी की पढ़ा चढ़ा हुआ एक बेल पत्र मिल जाए तो उसे लाकर अपनी तिजोरी में रख दें, पर याद रखिए कि वो बेल पत्र शिव जी पर होना चाहिए, शिवलिंग पर होना चाहिए, शिवलिंग के आसपास नीचे इधर उधर नहीं होना चाहिए।
0: ओके, अगर ये किसी को मिलता है तो मतलब उसके लिए एक लकी चार्म हो सकता है आज की शाम,
1: मुकद्दर बदल जाएगा उसका, लेकिन लाखों में से किसी एक को ही मिलेगा।
0: ओह माय गॉड, चलिए हम भी अपना लक आजमाते हैं। वेल, कल का दिन बहुत खास है, आज का दिन भी बहुत खास है, सावन का दूसरा सोमवार चल रहा है, आप तमाम मुरादाबाद को, जो जनता आपको सुन रही है अलग अलग शहरों में, उनको आप अपनी तरफ से क्या एक अच्छा उपाय बताएंगे?
1: मैं कहूंगी भाईचारे के साथ रहें, प्रेम से रहें, विश्वास से रहें, जिए और जीने दें, लोगों में खूबियां ढूंढें, खामियां नहीं ढूंढें, क्योंकि जिसमें आप खामियां ढूंढेंगे तो दुनिया आप में भी खामियां ढूंढने लगेगी, यूनिवर्स को जो देंगे वही मिलेगा। ये चतुर्मास चल रहा है, सावन का महीना है, माता पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखें, आने वाला टाइम जिंदगी में बड़ी उथल पुथल करने वाला है, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाला है, और जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में जाएगा तो आप दुनिया में बड़े बवाल, बड़ी परेशानियां, बड़ी तकलीफें देखेंगे, इन सब का कोई भी नेगेटिव असर भारत पर, हमारे जीवन में, हमारे देश में ना पड़े, इसीलिए महादेव से अभी गुजारिश कीजिए और अपनी भागती दौड़ती इस दुनिया में से महादेव के मंदिर जाकर माता पिता को दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए।
0: मेरे पास इमीडिएटली मैसेज पहुंच गया है श्रुति झा का, इन्होंने मुझे पूछा है कि आनंद जी एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, हरियाली तीज पर ग्रहण भी लग रहा है क्या इस बार? बहुत सारी वीडियो में देखा जा रहा है।
1: देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो समझना बहुत जरूरी है कि ग्रहण भारत में नहीं है, ग्रहण का कोई भी असर हमारे आपके जीवन पे या सूतक पातक लागू नहीं होगा, लेकिन ग्रहण का असर भारतवासियों पर नहीं होगा, मौसम पर नहीं होगा, नेता भी नेताओं पर नहीं होगा, बड़े बड़े नेता भी नेता हॉस्पिटल जाते दिखाई देंगे, और राजनीति पर नहीं पड़ेगा तो ये तो हो नहीं सकता। और जिस दिन ग्रहण है उस दिन अमावस भी, और ये हरियाली अमावस है तो अपने पितरों को भी मनाइए, पितरों के नाम का जल पीपल के पेड़ पर दीजिए, पितरों के नाम का तर्पण छोड़िए और गीता का 7वां अध्याय करिए। आपको सूतक या ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आप प्रेग्नेंट है चाहे आप प्रेग्नेंट नहीं है, भारत में ग्रहण नहीं है।
0: ओके, तो आई होप मैम आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच राखी मैम, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइज, आप अगर ऐसी ही रेमेडीज फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डॉक्टर वाई राखी ऑफिशियल नाम से मैम मिलते हैं, गूगल पे आप डालेंगे तो भी आपको मैम की सारी चीज़ें वहां पर मिल जाएंगी। मैम थैंक यू सो मच आप जुड़े और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जहां भी जा रही हैं ऑल द बेस्ट, आपको भी हर हर महादेव।
1: सोमवार वाले दिन इंसान सिर्फ घर से ऑफिस जा रहा होता है, तो बस ऑफिस जा रही हूँ और ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। तुम्हें भी हर हर महादेव, महादेव की अति कृपा तुम पर, तुम्हारे सब सुनने वाले लिसनर्स पर, पूरे मुरादाबाद पर, पूरे भारत विश्व पर पड़े और तुम बहुत सुखी और खुश रहो।
0: थैंक यू सो मच राखी माँ, जय माता दी, थैंक यू सो मच। तो ये जुड़ी थी हमारे साथ इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी, अभी भी आपके ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे पास नॉन स्टॉप आ रहे हैं, सो आई एम रियली सॉरी गाइज, अभी ये सेगमेंट खत्म हो गया, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंडे डेफिनेटली आप मेरे साथ रेडी रहिएगा, 9:30 हमारे साथ जुड़ती हैं इंडिया की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी। फिलहाल 9:45 हो गए स्टेशन क्लॉक में, कुछ एड ब्रेक के बाद अच्छे गाने फिर मेरी एंट्री।
2: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती है दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या बात है जी, नाचते रहिए और नचाते रहिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। आप जहां भी जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आज मंडे है, बहुत सारी बातें आपके साथ हो गई। 9:52 हो गए स्टेशन क्लॉक में, ढेर सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं आज की सुबह। फिलहाल आपको बता दें, थोड़ी दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि भैया देखिए, जो UPI का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए खबर थी कि उनको UPI पर जो है एक्स्ट्रा पे देना पड़ सकता है। मतलब अगर आप UPI से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको शायद पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। UPI बिल्कुल फ्री रहेगी। आप गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बताया जा रहा है कि उनके लिए UPI से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगी। हाँ जी, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे आप इस्तेमाल करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो आप ज्यादा लोड नहीं लेना आपने, आप डिजिटल चलाओ या डिजिटल बनो, सब डिजिटल बन रहे हैं, आप भी डिजिटल बनो, ठीक है। तो दुकानदारों और व्यापारों के लिए UPI बिल्कुल फ्री रहेगा, ट्रांजेक्शन पर कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। यार इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आपको पता है ना, 15 अगस्त। ओ माई गॉड, स्कूल की बूंदी और बूंदी के लड्डू। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान होगा जिसने मिस, मतलब याद ना किया होगा ये मोमेंट, जिसने फील ना किया होगा। जब भी 15 अगस्त आता है तो बूंदी के लड्डू डेफिनेटली याद आते हैं। बड़ा ही अलग सिनारियो होता है जी इस टाइम का। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से एक ताज़ा बेहतरीन अपडेट यही है कि भैया अब देखो, आज जो है उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त से लेकर 13 और 14 अगस्त तक जो है कुछ स्थानों पर जो है भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी किया है। आज जो है 10 अगस्त है, आज और 13 14 को जो है अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो है बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, तो आप इस बात के साथ तैयार रहें। चलो अच्छी बात है यार, बारिश हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। चलिए, और अभी एक कड़क सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका जवाब देना होगा आपने आज की सुबह। बहुत ही कल क्लासी मूवी है, बहुत ही कमाल की फिल्म है। अपने कुछ इयर्स कंप्लीट कर रही है, एनिवर्सरी मना रही है आज की सुबह। आपको आइडेंटिफाई करना है आज की मॉर्निंग जो मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, बेसिकली कौन सा गाना है। एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस ट्रैक, एंड बहुत ही प्यारी फिल्म थी, बहुत ही कल क्लासी मूवी है, एंड बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट है, एंड आपको मजा आ जाएगा ये गाना सुन के। सो 3, 2, 1 गो स्टार्ट। आप बस ये सुनो, आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ अभी जो आप सुन रहे हैं ये गाना कौन सा है, आपने मेरे को बताना है। व्हाट्सएप करना है आपको लेडीज एंड जेंटलमैन, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर। ब्रांड न्यू मंडे मॉर्निंग है, एक अच्छी किक स्टार्ट हो गई है मेरे साथ। आप मुझे बताओ मुरादाबादीज, ये जो गाना चल रहा है वो कौन सा है।

यस, व्हाट्सएप करो फटाफट से 9837896896 पे, इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस पे। मैसेजेस भैया मेरे को आप संदेश भी पहुंचा सकते हैं, और मेरे को आप जो है

0: ਬੱਚਿਆਂ ਤੋੜ ਦਿਆ ਨਾ ਲਾਇਓ ਸੋਰੀ ਮਾਂ
1: नलायक बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
3: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना, 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है।

0: लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: कभी कभी बदलाव की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, ना उनमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कोई चमकदार मंच, बस एक परिवार होता है, कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों के बीच एक मदद का हाथ।
1: किसी के लिए वह मदद बनती है एक सुरक्षित छत, किसी के लिए परिवार के भोजन का सहारा और किसी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर जिंदगी में बदलाव की वजह बने।
1: आज विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर चल रहे हैं देवरिया, जहां हम सुनेंगे विकास की कोई बड़ी घोषणा नहीं, बल्कि एक आम इंसान की अपनी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसके जीवन में बदलाव आया है।
0: हमारी मुलाकात एक ऐसे लाभार्थी से है जिन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच सरकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है। अब कहानी हमारी नहीं, उनकी अपनी जुबानी।
1: आज हम उपस्थित हैं देवरिया के अगस्त पार गांव में और यहां पर हम लोग ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो किन लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाएं, तो हमारे साथ एक ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: चंद्रिका प्रसाद।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अगस्त पास पचमतला।
1: जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और विकलांगता के आधार पर आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: हमको यही विकलांगता के आधार पे आवास मिला है सरकार की तरफ से।
1: जी,
2: तो अभी बनना थोड़ा बाकी है, छत लगाना है।
1: जी,
2: और ये मिला है।
1: जी, ये कब मिला आपको?
2: अभी हो गया 2-4-5 महीने हो गया।
1: जी, अभी हम लोग देख सकते हैं इसका ढलैया कराना, लिंटर कराना बाकी है।
2: बाकी है
1: जी,
2: अब कराएंगे इसको, ढलैया अभी 1-2 महीने में करा देंगे।
1: जी, इसके अलावा और कौन कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं आप?
2: हाँ, राशन कार्ड में है, नाम है, राशन मिलता है।
1: जी, तो आपको आवास मिला हुआ है और राशन कार्ड बना हुआ है जिसके तहत आपको राशन मिल रहा है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा है आपके लिए?
2: सरकार को धन्यवाद देना चाहूँ, अच्छा है, मिल रहा है राशन, नहीं तो पहले नहीं मिलता था।
1: जी,
2: बढ़िया है, मिल रहा है, अभी क्या करेंगे।
1: पहले क्या दिक्कत होती थी घर नहीं बनने से?
2: पहले दिक्कत थी घर नहीं बनना तो कहाँ रहेंगे, मड़े चाटू में रहते थे और क्या।
1: जी जी,
2: जैसे मड़ी में जी रहे थे और कुछ।
1: जी, और ये राशन मिलने से क्या फायदा?
2: राशन मिलने से क्या फायदा, रोटी रोजी पेट भरता है और क्या है। पहले दिक्कत बहुत थी, बहुत दिक्कत बोले तो दिक्कत, रोजगार नहीं, कुछ नहीं तो क्या करेंगे।
1: तो अभी आपने देखा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, इसके तहत हम लोग अगस्त पार गाँव में पहुंचे हुए थे और यहाँ पे इन भैया से हम लोग ने जाना कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले रहे हैं ये, जो विकलांगता के आधार पर मिला हुआ है, और पेंशन भी मिल रहा है और राशन कार्ड के तहत इनको राशन भी मिल रहा है, तो इन सभी योजनाओं का ये लाभ ले रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
3: किसी कहानी में सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वह कहानी खुद उसी इंसान की आवाज में सुनाई दे जिसने उसे जिया है, और यही वजह है कि लाभार्थी की आवाज किसी भी सरकारी योजना का सबसे मानवीय चेहरा बन जाती है।
0: दिव्यांग जन के लिए सहायता केवल आर्थिक मदद का विषय नहीं, ये उनके जीवन में सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भरता की संभावना से भी जुड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जन के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, और जब ये सहायता किसी जरूरतमंद तक पहुंचती है तो उसके मायने सिर्फ एक सरकारी लाभ तक सीमित नहीं रहते।
3: लेकिन किसी योजना का लाभ जमीन पर कैसे पहुंचता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, लाभार्थियों तक पहुंचने में प्रशासन की क्या भूमिका है, और पात्र व्यक्ति अगर अभी तक योजना से नहीं जुड़ा है तो वो क्या करे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं देवरिया के जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह से।
4: सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक गणराज्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा में खाने पीने रहने और विकास के लिए सभी को समान और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा आप देखेंगे ICDS डिपार्टमेंट द्वारा पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, और लोग बेशक हो जाते हैं तो उनके लिए मनरेगा है, आवास दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जा रहा है, और भी जैसे कृषि सम्मान निधि है, कामधेनु योजना है, नंदनी योजना है, जिसके लाभ उठा के लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। अब जैसे जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका अप्रत्यक्ष लाभ आप देखेंगे लोगों के रोजगार में मिलता है। जैसे आप कोई व्यक्ति आवास बनाता है, लगभग 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, शहरी क्षेत्र में यह धनराशि 2 लाख रुपये से अधिक हो जाती है। तो आप देखेंगे तो उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है, छड़ की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है, और मजदूर की जरूरत पड़ती है। तो इस इन कार्यों के लिए और सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार अपने नागरिकों के लिए हर एक विकास के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है। बस देवरिया के लोगों को आपका सहयोग चाहिए प्रशासन के साथ। आप कोई भी समस्या हो जो जायज हो, और यदि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटा हो, तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने वार्ड मेंबर से, UO से, BDO से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, वहाँ उचित जानकारी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि आप अपना सशक्तिकरण कर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
6: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
7: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, 7055011681।

यही तो पूछा था यार मैंने आपसे, कौन सा गाना है ये, और ढेर सारे मैसेज आए हैं। 10:11 हो गए, आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक, दिस इज ब्रांड न्यू मंडे मॉर्निंग। कैसे हालचाल? अरे भैया सब बढ़िया चल रहा है ना जिंदगी में, सब कुछ बढ़िया ही चलना चाहिए। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, बस आप पहुंचिए अपने ऑफिस यार। चलिए जी, फिलहाल जाने का समय हो गया है, बिकॉज घड़ी की सुइयां टिक टिक करके इशारा कर रही है कि आनंद जी अब आपको और ज्यादा बात करने नहीं देंगे हम, क्योंकि समय हमें और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। स्कूलों की तो छुट्टी है ही आज की और कल की, तो जो बच्चे अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे हैं करते रहिए यार। थैंक यू वेरी मच, आज बहुत मजा आया आप लोगों से बातचीत करके, ढेर सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आज की सुबह जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब ढेर सारे लोगों ने दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड बिल्कुल राइट आंसर है

कंग्रेचुलेशन ऑल द पार्टिसिपेंट, सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए हैं। मेरे पास यहाँ पर श्वेता जी ने सही जवाब पहुंचाया था। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन श्वेता जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत ही कल क्लासी फिल्म, रानी मुखर, करीना कपूर खान, ऋतिक रोशन, बहुत ही और भी कमाल के स्टार कास्ट, मूवी एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत बढ़िया पिक्चर है। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये मूवी मैंने देखी नहीं है, बट हाँ मूवी का मैंने ट्रेलर देखा, टीजर देखा, बहुत अच्छी है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, जब मैं कभी कभी ट्रेलर देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है ट्रेलर में इतनी क्रिस्पी चीजें हैं तो शायद पिक्चर कितनी बढ़िया होगी, बट ये मेरे को मिलती नहीं है यार। मैंने बहुत सही जगहों पर देखी, मेरे को मिलती नहीं है, और पता नहीं टीवी पे कब आती है, आई डोंट नो। आपके लिए तालियां, और बाकी जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड ऐसे ही आप आनंद के साथ जुड़े रहिए।

कल 9 अगस्त को मूवी रिलीज हुई थी सन 2002 में। बहुत ही कल क्लासी फिल्म थी ये, बहुत ही प्यारी मूवी थी यार। हाँ, यश चोपड़ा निर्माता, बहुत ही कमाल की फिल्म और बहुत ही बढ़िया मूवी। ऐसी मूवी देख करके सच में यार मजा आ जाता, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, राइट। चलो, आप लोगों ने मैसेज किए उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। डॉक्टर सुरेश मेरे साथ जुड़े थे, यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े थे बबलू जी। रिजवान खान साहब जुड़े थे ग्राम बीजना से, गुड मॉर्निंग। ये लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से जो सब्जी आपने बताई थी वो बैंगन है। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। रिहाना ने मुझे सही जवाब पहुंचाया था। लक्ष्मी जी मेरे साथ माता मंदिर से सही जवाब दे रही है। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से डॉक्टर सैयद शारिक अली साधु हुसैन अंसारी लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, गाने इनको अच्छे लग रहे हैं। बबली अंजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी भाभी, संतोष भाभी मेरे साथ जुड़ी है, सावन की शुभकामनाएं पहुंचा रहे हैं सोमवार की। राधे राधे आनंद जी। अलका वर्मा जी बुद्धि विहार से जुड़ चुके हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग। विजय वर्मा जी का आज बुद्धे है, विजय जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और अलका जी आपको बहुत बहुत बधाई, आज इनका जन्म है, दिन दिन जन्मदिन मना रही हैं आप, बहुत बढ़िया। हमारी पूरी रेडियो इंटर फैमिली की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे विजय वर्मा जी को, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और इन्होंने लिखा है, दिस इज द राइट आंसर, वो सब्जी है मेथी। ये एग्जैक्टली, दिमाग लगाना था यार, वो सब्जी है मेथी, मेथी मेथी मेथी बाबा, वो कह रही ना मेथी, सारा इल्जाम उसी ने तो लिया अपने ऊपर। मोहसिन अंसारी साहब जुड़ गए मेरे साथ, मोहसिन जी ने वैसे सही जवाब तो दिया था यार, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, मेरे साथ आप जुड़े। एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स थैंक यू वेरी मच। हमारे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग। मैं इन्होंने लिखा है, आशियाना मुरादाबाद में रहता हूं लेकिन अभी मैं महाराष्ट्र में सुन रहा हूं। थैंक यू सो मच, आप जहां भी सुन रहे हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आनंद जी। सना तुर्क नाजिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं। और ये लिखती है, करेला वो सब्जी आनंद जी भाई मुझे मारो। हेलो आनंद जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस लिखते हैं, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ मन मिले। आए हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है। हाय, मेरा नाम अलीशा है, गुड मॉर्निंग अलीशा, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। एंड इन्होंने लिखा है, सर आज मेरा बर्थडे

0: है। अरे वाह क्या बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू अलीशा, मस्त रहो, झकास रहो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, और आप ऐसे ही फिर मुरादाबाद सुनती रहो। मयंक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं पीतल बस्ती से, जय श्री राम पहुंचाते हैं। आनंद जी गुड मॉर्निंग, देखते हैं आनंद भाई, बड़ा लेजी डे है। नो नो नो, दिस इज एनर्जेटिक वाला डे यार। मुरादाबाद यूपी से रणवीर जेठालाल जुड़ चुके हैं आज की सुबह, एंड गणेश प्रसाद जी जुड़े हैं, बाकी और भी ढेर सारे लिसनर्स लगातार नॉनस्टॉप मैसेज कर रहे हैं। गाइस थैंक यू सो मच, अब मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे जल्दी। गौरव टीलर जी नवीन नगर से जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आप सभी को हर हर महादेव, मस्त रहिए, झकास रहिए, भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और बस अच्छी बात के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, कोई एक काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे करके आपको सच में सुकून मिले यार।
1: कह दो कि तुम मेरे दिल में,
0: हाँ हाँ मैं आपके दिल में हूँ यार,
1: कह दो कि तुम मुझसे दोस्त,
0: बिल्कुल मैं आपका दोस्त हूँ, कल मिलूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, सेम टाइम सेम जगह होंगी ढेर सारी बातचीत, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग मंडे मॉर्निंग। मंडे ब्लूज आपको होने नहीं चाहिए, मैंने आपको पूरा रिचार्ज कर दिया। वैसे कल एक अपडेट अगर आपको जाननी है और लेटेस्ट खबरें आपको जाननी है तो आप क्या करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलता है ऑफिशियल आईडी, मेरा नाम इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको, रेडियो वाला आनंद के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहां पर आके भी हमें ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अभी के लिए धीर सर अपना ख्याल रखिए, अगर आज आपका फास्ट है तो अपने फास्ट को कंप्लीट कीजिए, अपने मन को पॉजिटिव रखिए, शांत रखिए और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। कीप इट अप, ऑल द वे बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
3: लेकिन सोनिया
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
3: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: You're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
7: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
8: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
9: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
8: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
10: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
11: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
10: पर पापा।
11: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
12: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार है तो आज का दिन हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, अगर मन में विश्वास और चेहरे पर मुस्कान हो तो रास्ते जरूर निकल आते हैं। महादेव पर भरोसा रखिए, जो आपके लिए सही होगा वो सही समय पर आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। और आज शिव जी को जल अर्पित कर आप आ चुके हैं ना, कुछ अभी हमारे श्रोता मंदिर में जा रहे हैं।

तो क्योंकि आज मंडे है तो मंडे की सुस्ती को दूर भगाइए, एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए और खुद से कहिए नया सोमवार नई उम्मीद नई ऊर्जा और नई शुरुआत। हर हर महादेव एवरीवन, आज का दिन खुशियों से भरा रहे आपका और इस सावन के पावन सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे भी बहुत सारी बातें, क्या कुछ चल रहा है हमारे लोकल में सब आपको पता लगेगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, क्योंकि मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए।

मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.7। और अभी आपने सुना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी केदारनाथ। और दोस्तों, सावन का पावन महीना आखिर इतना खास क्यों है, हम बताएंगे आपको। एंड दोस्तों, आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन का पावन महीना, चारों तरफ भक्ति का माहौल, मंदिरों में भोलेनाथ की जय जयकार गूंज रहे हैं और शिव भक्त भगवान शिव को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सावन का महीना तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना इतना खास क्यों माना जाता है? और सावन के महीने में ही भगवान शिव जी की पूजा इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? वैसे तो इस बारे में आप में से बहुत सारे श्रोताओं को पता होगा, लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसे श्रोता भी होंगे जिन्हें शायद इसकी पूरी कहानी मालूम ना हो। तो आज हम उनके लिए लेकर आए हैं सावन के इस पावन महीने की एक सुंदर पौराणिक कथा।

इस कथा को कौन कौन सुनना चाहते हैं, हमारे श्रोता इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जल्दी से हमें यस लिखकर पहुंचाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी, लेकिन वक्त भी बता देती हूँ। समय हुआ है 10:38। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। वैसे दोस्तों आज का जो मौसम है, बाहर बादल हो रहे हैं ना, और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। हाँ, मुरादाबाद में भी बारिश हो रही है, बताइएगा मुरादाबादीज आपकी, आप कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि ऐसा भी होता है मुरादाबाद में कहीं होती है बारिश कहीं नहीं होती है। उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं पथरिया छत्तीसगढ़ से, ये सब हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं नरेन जी एंड साथ में कुसुम जी हमें मैसेज पहुंचाती हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये भी हमें मैसेज पहुंचाते हैं छत्तीसगढ़ से, सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी, बैक टू बैक आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही अपने मैसेज पहुंचाती रहिए और शिव जी की सावन की पौराणिक कथा जो है वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक। दोस्तों आप मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896, जी हाँ 9837896896, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और अपने मैसेज पहुंचाइएगा।

0: तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया।
1: हमने किसी से किससे सुने यूं तो
0: कहते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना हंसराज रघुवंशी जी की आवाज में। दोस्तों, सावन का महीना यानी भक्ति, आस्था और भोलेनाथ के प्रेम का महीना है। बारिश की बूंदें जब धरती को भिगोती हैं, चारों तरफ हरियाली छाती है और मंदिरों में गूंजता है हर हर महादेव, तो महसूस होता है कि सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति के मेल का उत्सव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन के महीने को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, लेकिन समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले निकला भयंकर विष हलाहल। उस विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि उससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का संकट पैदा हो गया। तब देवता और सभी प्राणी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके गले में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया, तभी भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है। मान्यता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है और शायद यही वजह है कि सावन की बारिश और शिव भक्तों का रिश्ता इतना खूबसूरत लगता है कि एक तरफ आसमान धरती को जल से तृप्त करता है और दूसरी तरफ भक्त भोलेनाथ को जल अर्पित करके अपनी श्रद्धा व्यक्तित करते हैं। लेकिन सावन से जुड़ी एक और बेहद महत्वपूर्ण कथा है माता पार्वती और भगवान शिव की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की, इसलिए मान्यता बन गई है कि सावन में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं की पूर्ति की कामना की जाती है। खासकर सावन के सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं, इसीलिए भक्त सोमवार को व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और दोस्तों, सावन हमें सिर्फ पूजा पाठ का संदेश नहीं देता, ये हमें सिखाता है कि जैसे बारिश सूखी धरती से नई जान डाल देती है, वैसे ही भक्त और सकारात्मक सोच हमारे जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है। तो इस सावन एक छोटी सी प्रार्थना जरूर कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में इतनी शक्ति देना कि मुश्किलों में भी मैं मुस्कुराता रहूं, इतना विश्वास देना कि परिस्थितियां कैसी भी हो मेरा हौसला कम ना हो, और इतनी कृपा देना कि मेरे साथ साथ मेरे अपनों का जीवन भी खुशियों से भर जाए। तो दोस्तों, सावन के इस पावन बेला में मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान शिव की ये कथा पसंद आई होगी। हमारे पास बैक टू बैक बहुत सारे खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा और हाँ, अपने संदेश भी हमें पहुंचाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और आज का दिन क्या स्पेशल है सब आपको पता लगेगा। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आप सब यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजी खुशी और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:03 राइट नाउ। और दोस्तों मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हाईवे और कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। और भी अपडेट है जो मुरादाबाद के बारे में अपने शहर में क्या चल रहा है, कुछ सारी अपडेट आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तो कनेक्ट रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। और यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के, वरना हमारे श्रोता नाराज हो जाएंगे। तो हमने चाहते कि हमारे जो प्यारे प्यारे से लिस्टनर हैं वो हमसे बिल्कुल नाराज हों। तो चलिए शामिल कर लेते हैं प्यारे प्यारे जो मैसेज हमारे पास आए हैं हमारे लिसनर्स के। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से मैसेज पहुँचाते हैं रजा हुसैन जी। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और आज की सुबह इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज पहुँचाते हैं विकी सागर जी हिमगिरी मुरादाबाद से। कहते हैं कि खुशी जी आप बातें बहुत अच्छी करती हो। अच्छा थैंक यू, मुझे पता नहीं था सर, थैंक यू बताने के लिए। और कहते हैं कि आप अपनी पसंद से कोई भी ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, श्योर सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, धन्यवाद आपने अपना मैसेज पहुँचाया। और इन्होंने एक थॉट भी शेयर किया आज की मॉर्निंग कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, और सबसे बड़ी सुरक्षा विश्वास, विश्वास और सबसे बड़ी दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सब निःशुल्क है। हाँ बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मुस्कुराने में कंजूसी मत किया करो, लेकिन आप होंगे मुस्कुराने में कंजूसी कर ही देते हो। हाँ चलो आप मुस्कुरा दीजिएगा। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग आरजी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जनकपुरी सहारनपुर से जून रूसी परवलीज जी अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। और कहते हैं आप हमें अपने पसंद के गीत में शामिल कर लीजिएगा, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यूपी मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, एंड ये हमें पहुँचाते हैं, गुड मॉर्निंग आप सबको सावन माह के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट भी की है तो पूरा ये मतलब हम पूरा प्रयास करेंगे सर आपने जिस ट्रैक की रिक्वेस्ट की कंप्लीट करने की। इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अमित वर्मा जी हिमगिरी मुरादाबाद से। खुशी जी हर हर महादेव, सावन के दूसरे सोमवार की आपको एंड एफएम मुरादाबाद के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नईमूल अकरम जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं सिरसवा दोराहा से। और एक मैसेज और हमें मिला है यहाँ पर कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में सैयद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। और ये कहते हैं आदाब खुशी जी, कैसी हैं आप? खुशी तो हमेशा खुश रहती है सर। कहते हैं आपका शो सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक गाना सुनना चाहते हैं, राहू में उनसे मुलाकात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई, ऐसे ही कुछ लिरिक्स है ना सर। वैसे आपकी सुबह सुबह किन से मुलाकात हो गई है बताइए जरा हमें। सबसे पहले मुलाकात मुझे लगता है कि आप एफएम मुरादाबाद से करते हैं राइट, सुबह सुबह रेडियो ऑन करके। चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसकी बात करेंगे बातचीत। और आप भी अपने मैसेज पहुंचा दीजिएगा दोस्तों
ओहो, इतना सोच क्यों रहे हैं आप? सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर अच्छा नहीं पता है, मैं बता देती हूँ, आप चिंता मत करो। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मिलके मैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आरजे खुशी है आपके साथ। और शो का नाम तो आप जानते ही हैं, हाँ जी, मॉर्निंग मसाला, जहां पर कुछ चटपटी बातें भी होती हैं, कुछ आपके दिल की, कुछ हमारी बातें और अपडेट भी यहां पर होती हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों की थकान मिटाने के लिए कांवड़िया पथ पर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। सेवा शिविर में आधुनिक मशीनों से फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी की सुविधा दी जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को पैरों के दर्द और थकान से तुरंत राहत मिल जाए। क्या बात है दोस्तों, यही तो होती है ना श्रद्धा भाव सेवा, और सेवा का भी बहुत अच्छा अवसर है ये। और मुझे लगता है अगर किसी की मदद करने का, सेवा करने का अवसर मिले ना, तो किसी खास दिन को नहीं देखना चाहिए, हर दिन अगर आपको लगता है कि कोई मदद के लिए आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद है जिसकी मदद करनी चाहिए, तो बिल्कुल करें आप। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ।

0: हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं दानवीर सिंह जी, और कहते हैं खुशी जी जय भोले की, जय भोले की आपको भी। इन्होंने एक शायरी लिखी है कि हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ दें, हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ दें, छोड़ देंगे हम तो वो नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे, कि हम वो नहीं जो तुमसे गम में तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम तो वो हम वो नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुकें तो अपनी सांसें छोड़ देंगे। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मुरादाबाद से दानवीर सिंह जी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। मुरादाबाद से अलीशा अपना मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह, और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने बस गुड मॉर्निंग पहुंचा है, अरे कुछ तो बोलो यार, क्यों इतनी कंजूसी करते हो आप। हाँ अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं कि मैम को क्या मैसेज लिखें। अच्छा, जो आपके मन में आ रहा है ना, कोई भी सवाल, कोई भी बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहुंचाइएगा, बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। मैं आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइएगा।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

बिल्कुल दोस्तों, सावन भी आ गया है और बाहर बादल भी हो रहे हैं, कभी कभी हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है ना बाहर, कहीं हो रही है मुरादाबाद में, कहीं नहीं हो रही है बारिश, ऐसा है ना। मैंने आपसे मालूम किया था कि आप मुरादाबाद में कहाँ से मुझे सुन रहे हैं एवरीवन, एंड आपकी साइड कैसा मौसम है, क्योंकि मुरादाबाद में ऐसा भी होता है कहीं बारिश होती है और कहीं बारिश नहीं होती है, तो मुझे बता सकते हैं कि बाहर का वेदर कैसा है अभी राइट नाउ। और दोस्तों आज मुरादाबाद के मौसम की अगर बात करें तो मुरादाबाद का मौसम रहेगा क्लाउड और उमस भरा, एंड एवरीवन अधिकतम तापमान करीबन 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं। दोपहर और शाम में थोड़ा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बारिश की संभावनाएं 45% से 65% बताई हुई है, और नमी करीबन 79% से 82% रहने से उमस ज़्यादा महसूस हो सकती है, तो घर से निकलें तो छाता साथ रखना ना भूलें, ठीक है, छाते को अपने साथ लेकर जाइएगा। ये है हमारे मुरादाबाद के आज मौसम की अपडेट। जी हाँ, वेदर अपडेट, आज मुरादाबाद का ऐसा वेदर रहने वाला है। मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप अभी घर पर हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं तो अपना छाता रेनकोट साथ में रखें, बारिश का पता नहीं है, कभी भी हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का और सतमी संतोष कश्यप जी भी हैं। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं कि एक गाना हमें सुनवा दीजिएगा मैम, फ्रॉम द मूवी अनाड़ी से, क्या मौसम आया है। मौसम तो बहुत सुहाना है, और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहा से, ये मैसेज पहुँचाते हैं शंकर लाल यादव जी। हिरांशी यादव और नमन यादव एंड अमित यादव, रितु यादव जी का मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव आपको भी। तो दोस्तों चलिए सुन लेते हैं कुछ और खूबसूरत गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी अपने मैसेज पहुंचाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ बताइए मौसम कैसा है आपकी साइड मुरादाबाद में, या आप मुरादाबाद के बाहर से भी मुझे सुन रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट में भी हमें सुनते हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके शहर का वेदर कैसा है।

0: Curious.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और सच में मौसम बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन सितारों के जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता एंड भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में मुलाकात की। इस खास मुलाकात में मीराबाई चानू, प्रिया साक्षी चौधरी और विद्या रानी देवी समेत कई शानदार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया एंड प्रधानमंत्री जी ने सराहा। सच में ये सिर्फ एक मेडल नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की चमक है।

दोस्तों इस मुलाकात में मीरा बाई चानू, प्रिया, साक्षी चौधरी और विद्या रानी समेत कई शानदार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया एंड खिलाड़ियों की मेहनत, जीत और जज्बे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सराहा। सच में ये सिर्फ दोस्तों मेडल नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है और प्राउड ऑफ यू एंड हम प्राउड करते हैं अपने सभी देश की बेटियों पर जो हर क्षेत्र में आगे अच्छा कर रही है। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं तो उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं कि सावन के पावन महीने में हमें भी वक्त मिला है तो हमने भी आपको मैसेज पहुंचा दिया है मैम। एग्जैक्टली, घर में बहुत सारे काम होते हैं, सभी को ध्यान में रखना होता है। और ये कहती है मौसम तो अच्छा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी हवाएं चल रही हैं। एंड आगे कहती हैं कि एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा हरियाणवी। बिल्कुल मैम, सुनवाएंगे आपको। कहती हैं आज दूसरे सोमवार की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन की फुहार हो, बादलों की बरसात हो, कि सावन की फुहार हो, बादलों की बरसात हो, खुशी मैम की हंसी में ऐसी मिठास हो, हर बूंद कहे आज बस यही पैगाम, खुशी मैम के नाम रहे सावन की हर शाम। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें आपने भेजी मैम, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अजीत कसाना जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावली मुरादाबाद से। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी लौट कर आती हूँ एक खूबसूरत सी गाने के उस पार। एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है रणवीर सिंह जी ने मुरादाबाद से, तो सुन लेते हैं ये खूबसूरत गीत, उसके बाद हम करेंगे आपसे भी बातचीत।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और अभी आपने धड़क टाइटल ट्रैक सुना, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक था ना एवरीवन। अजय और साथ में श्रेया घोषाल जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। एंड यू ही मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटती रहिए और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे आपसे, सी यू सून, नई बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक खास कार्यक्रम आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप उसको भी सुनिएगा और अपने फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस नंबर पर अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी सुनिएगा कुछ खास कार्यक्रम।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है हमारे बीच में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ एके सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज सर के साथ बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं स्टूडियो में और ढेर सारी जानकारियां जो है किसान भाइयों आज आपको मिलने वाली है। तो आइए सर का स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? नमस्कार।
1: मैं बहुत अच्छा हूं आनंद जी, और जो आपने स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद, और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार।
0: जी सर, आप आज जो है हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज हमारे किसान भाइयों को आप तमाम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा, हमारे किसान भाई और हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
1: आनंद जी और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मैं अपना परिचय आपको दूं। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, और जो एक जो उर्वरक कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर, उसमें मैं जो है काम करता हूं और काफी लंबे समय से काम कर रहा हूं। लगभग कह सकते हैं 36 साल का मेरा अनुभव है, और जो खेती बाड़ी से संबंधित जो काम है उन्हीं को मैं देखता हूं। और इसीलिए आज आपके समक्ष हूं कि मैं कुछ अपनी तरफ से जो खेती से संबंधित कुछ जानकारियां के साथ साझा करूं जो आपके काम आ सके।
0: बहुत बढ़िया सर, आपने ये बात बोलकर बहुत अच्छा किया। आप जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे साथी, उनको समझ में आया कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कौन और किस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। और श्रोताओं, आज का हमारा विषय है धान फसल प्रबंधन। आज इस विषय पे हम ढेर सारी बातचीत करेंगे डॉक्टर ए के जी से। तो सर आपका स्टूडियो में हमने स्वागत कर ही दिया है और हम

0: में एक आगे के लिए भी एक समरसता रही आए, जो जो उत्पादन आज हम ले रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: वो आगे भी हमारा कंटिन्यू रहे। क्योंकि खेती में क्या रहता है कि जो भी हमारे खेत हैं, ये उनकी क्षमता सीमित है। सीमित मतलब ये है कि अगर लगातार हम जो है मतलब खेती कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे जो उसके अंदर जो पोषक तत्व तो होते हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता जो कमी आने लगती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे और भी संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उनका संतुलित प्रयोग न हो तो धीरे धीरे हमारे खेतों का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हमारी जो उत्पादकता है उसमें कमी आने लगती है। तो भारत सरकार ने इसके लिए खास योजनाएं जो तैयार करी हैं, उनका उद्देश्य ये है कि जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं या और भी लोग खेती के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ आकर कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि हमारे खेतों का स्वास्थ्य टिकाऊ रहे और वो जो हम उत्पादन आज ले रहे हैं या जो हमारा जो लक्ष्य है कि हमें और उत्पादन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति अच्छे से हो सके। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए खास तरह के हमें अभियान की आवश्यकता होती है कि एक तो क्या है कि जो भी उर्वरक है उनका संतुलित प्रयोग, संतुलित से अर्थ यह है संतुलित प्रयोग से कि अगर हमें जो चीज चाहिए उसका ही हम प्रयोग करें, ऐसा न हो कि उसका ज्यादा प्रयोग करें और उसका जो हल्का प्रयोग करें, मतलब जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतना ही हम उसको इस्तेमाल करें जिससे कि जो भी फसल हम ले रहे हैं उसकी पूर्ति हो सके और जो खेतों का स्वास्थ्य उसमें कोई कमी ना आए। ठीक है जी। दूसरा एक और है कि जो हमारे अपने संसाधन है उनका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अपने संसाधन से ऐसा अच्छा है कि जैसे कि जो चीजें हमारे जो हमारा क्षेत्र है उसी में उपलब्ध है और उनसे जो खेत को पोषण मिलता है, फसल को पोषण मिलता है, उनका ज्यादा हम इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारे उर्वरक हैं उनका हम इम्पोर्ट करते हैं, अगर हम इम्पोर्ट के ऊपर ज्यादा जो डिपेंड हो गए या उनपे ही हम आश्रित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि हमारे यहाँ का जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो बाहर जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संकट भी आ सकते हैं कि समय पर हमें उस उर्वरक की उपलब्धता न हो पाए तो हमारे जो उत्पादन है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जो मतलब जो भारत सरकार ने कहा है कि भाई हम अपने जो स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करें, अपने जो स्रोत हैं उनको जागृत रखें जिससे कि हमारे अपने ही क्षेत्र में हमें हम ऐसे साधन हो जिससे कि फसल को अच्छा पोषण उपलब्ध हो सके। दूसरा टिकाऊ खेती के बारे में खास तौर से जो मतलब इसमें योजना है,
1: हाँ जी,
0: टिकाऊ
1: हाँ जी।
0: खेती का अर्थ ये है कि हम ऐसी फसलें उगाएं या इस तरह का चक्र अपनाएं जिससे कि हमारे खेत स्वतः ही स्वस्थ रहे, ऐसा न हो कि उसके लिए हमें कोई अलग से साधन लगाना पड़े। जैसे अभी हम अगर देखें तो एकल फसल हम उगाते हैं,
1: हाँ जी,
0: लगातार एक ही तरह की फसलें उगा रहे हैं तो उससे हमारी जो खेत है उनके टिकाऊपन पे असर पड़ता है। लेकिन अगर हम अदल बदल के जो मतलब फसलें बोए, जैसे उसको बोलते हैं फसल चक्र बोलते हैं
1: जी,
0: तो हम जो हमारे खेत का स्वास्थ्य है उसमें हम उसको अच्छा रख सकते हैं या जो उसका स्तर जो नीचे जा रहा है उसको रोक सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा हमारा जो खेती का सिस्टम है उसमें हम ऐसी चीजें जो मतलब ध्यान दें जिससे कि हमारे खेत के स्वास्थ्य में कमी ना आए। जैसे कि हमने सपोज इस समय पर कोई ऐसी फसल उगाई है जिसके में हम एक और फसल उगा सकते हैं जो उससे जो अलग है स्वभाव से, उसका जो मतलब भोजन लेने का ढंग अलग है, तो वो एक टिकाऊ तरीका हो सकता है। तो धीरे-धीरे जो मतलब सरकार के ये कि शैक्षणिक रूप में और जो मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनके स्तर से या जो हमारी और संस्थाएं उनसे हम ये जो मतलब इस तरह की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं और वो टिकाऊ खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और इसके अलावा आखिरी तौर पर अगर हम कहें तो सबसे अहम बात यह है कि जो उर्वरक आज हम बाहर से ला रहे हैं उन पे हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है भारत सरकार, तो भारत सरकार का पैसा हमारा अपना पैसा है, तो अपने पैसे का जो खर्च है उसको हम धीरे धीरे कम करें और हम जो अपने संसाधन है उनके आधार पर ही खेती में जो हम एक तरह से फल उगा रहे हैं उनका पोषण करेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए लंबे समय के लिए हितकारी होगा और वो एक फायदे की बात होगी। तो भारत सरकार का यही उद्देश्य पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत है कि हमारी खेती टिकाऊ हो और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, रोग बीमारियां कम से कम आए और जो बाहर से हम संसाधन लेके आ रहे हैं उनमें हम धीरे धीरे कमी करें और अपने संसाधनों का हम ज्यादा इस्तेमाल करें।
1: बहुत बढ़िया। अनिल कुमार सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और अभी मैंने अगले प्रश्न की बात करी थी तो इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
0: आनंद जी, वो जो

0: वो धन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा। अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं। उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
1: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी।
3: Hey, you're tuning to FM.
2: शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से, और इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि धान की फसल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। समय भी चल रहा है धान की रोपाई का, तो इस विषय में थोड़ा सा आप चर्चा करें।
0: धान की रोपाई भी चल रही है, धान की फसल को समय भी हो चुका है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग स्थितियां हैं।
1: जी जी।
0: और मैं तो ये कहूंगा कि धान की फसल एक खास स्थान जो रखती है भारतवर्ष में। पहले ऐसा लगता था कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहीं पे जो मतलब धान की खेती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई वर्षों से धान की खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ कुछ राजस्थान के हिस्सों में भी, जैसे कि हड़ौती का क्षेत्र है, एमपी है, हर क्षेत्र में लगभग धान की खेती होती है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अब ये जो धान है ये हमारे खाने में भी इस्तेमाल होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, और अब तो ये भी है कि एक और जो इसका उत्पाद है इसको हम इथेनॉल के बारे में बोलते हैं, जो कि एक तरह से फ्यूल है,
1: अच्छा,
0: तेल है जो कि जो हमारी कारों में इस्तेमाल हो सकता है
1: जी,
0: और बहुत सारे संयंत्रों में ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो हर चीज में इसका प्रयोग हो रहा है, और एक बड़ी पक्की खेती है, बस इसके लिए पानी चाहिए और उसके बाद ये खेती आराम से किसान उगाते हैं। पहले हर आदमी इसकी खेती करना नहीं जानता था, एक समय था, लेकिन अब सभी लोग पारंगत हो गए, अच्छे अच्छे बीज मिलते हैं और काफी लाभदायक खेती है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे लोग सीखते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें जो पारंगत हो जाते हैं और करने लगते हैं। तो धान की खेती आज के समय में हम कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष की एक मुख्य फसल है जो कि आर्थिक रूप से लाभकारी है, और एक तरह से अगर जहाँ पे लोग इसका जो खाने में इस्तेमाल करते हैं तो भोजन के रूप में भी बहुत लाभदायक है। इसके अलावा बहुत सारे उत्पाद इसके और जो कि खाने योग्य होते हैं वो जो तैयार होते हैं।
1: क्या बात है। तो किसान भाइयों धान की फसल के बारे में अभी आपने बहुत अच्छे से जो है सर से जाना, और कितने सारे उसके बेनिफिट्स हैं ये भी सर ने बताया है। अच्छा, इसी बीच मेरा सवाल रहेगा कि धान की फसल में सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन के बारे में आप बताएं थोड़ा सा।
0: बिल्कुल, सिंचाई की जहाँ पर बात आती है तो धान को बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई की आवश्यकता।
1: जी जी।
0: सिंचाई का अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए कि खेत में नमी तो रहनी ही चाहिए।
1: हाँ जी।
0: लेकिन अगर पानी भी थोड़ा कपड़ा रहा है जो कि 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा तो वो बहुत अच्छा है। तो आप जो मतलब कोशिश करें किसान भाई कि पानी की कमी धान में न रह पाए
1: जी।
0: अगर इंद्रदेव की कृपा हो रही है तो पानी वहाँ से आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी
1: बहुत
0: बात
1: अच्छी
0: है।
1: बात है।
0: अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से जब अगर आपने धान लगाया है तो कोई न कोई व्यवस्था आपने जैसे ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल है या नहर के द्वारा या किसी अन्य संसाधन से आप पानी की कमी खेत में नहीं होने दें। अगर ऊपर से पानी नहीं गिरा है तो लगभग लगता है अपना जो क्षेत्र है या कहीं पे भी है 5 से 7 दिन के अंदर पानी की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह से आप सिंचाई का ध्यान रखें और फसल की अवस्था को देखते हुए इस चीज के बारे में अगर आप हर साल धान कर रहे हैं तो आपका अनुभव है। इसके अलावा एक और चीज जो अहम होती है, हम यहाँ से आपको अपनी ओर से जो जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आप वहाँ पर कुछ ऐसे आपके जो लोग हैं जिनके धान लंबे समय से हो रहा है और आपने अगर नया किया है तो उनके अनुभव से भी आप जानकारी लेके और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो पानी की कमी न होने दें धान के खेत में, ये बहुत जरूरी है। और जहाँ तक आपने दूसरी चीज पूछी पोषण के बारे, तो पोषण के लिए ये है कि जब आपने लगाया था उस समय पर आपने फास्फोरस से संबंधित जो उर्वरक दिए होंगे जो उसके जो प्रारंभिक विकास होता है उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जब फसल 25-30 दिन की हो जाए उस समय आप 1 एकड़ में लगभग करीबन आप 25 से 30 किलो के आसपास यूरिया का इस्तेमाल करें और यूरिया का अधिक इस्तेमाल न करें। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा धान अच्छा हो जाए, उसके नुकसान तो ये हो सकते हैं कि पहले तो ये है कि यूरिया ज्यादा दे रहे हैं तो खर्चा ज्यादा होगा। दूसरा नुकसान उसका ये है कि यूरिया आप ज्यादा दे रहे हैं तो अगर फसल ने इस्तेमाल नहीं किया तो वो पानी के साथ बह के चला जाता है जो कि पर्यावरण को एक तरह से दूषित करता है ज्यादा मात्रा में। फसल ने ले लिया बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक और चीज होती है कि अगर ज्यादा मात्रा में यूरिया दे रहे हैं तो फसल ज्यादा हरी होगी तो उसमें कीट पतंगों का आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, तो यूरिया की कम मात्रा ही दें वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा देने से तो किसी एक क्षेत्र में थोड़ा कम दें और एक में जो आपने इस्तेमाल अब तक करते आ रहे उसके हिसाब से करें, अंतर देखें। मुझे लगता है आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा और अंतर फसल के हरेपन का मन देखिए, फसल के स्वास्थ्य का देखिए, स्वास्थ्य अच्छा है और आखिर में जाके अगर आपको उपज उतनी ही उपलब्ध हो रही है तो आप उपज पे ध्यान दें, उसके हरे रंग पर ज्यादा ध्यान न दें, फसल स्वस्थ रहे और अंतिम रूप में हमें अच्छा उससे उत्पादन मिल जाए उतना ही उर्वरक हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अगर देखें ये तो ये हो गया कि जब आपकी 30 दिन की फसल उस समय पे यूरिया इस्तेमाल किया, इसके बाद जब 51 दिन की हो जाए आपको लगे कि यूरिया की आवश्यकता है तो आप उस पे एक बार और यूरिया लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, मैं आपको एक और यहाँ पे सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप यूरिया घोल के स्प्रे भी करें उसके भी बहुत अच्छे परिणाम मिले। स्प्रे कैसे करना है, 100 लीटर पानी में करीब करीब यूरिया आप 2 से 2.5 किलो लें और जिंक ऐड उसमें ऐड कर सकते हैं, 1.25 किलो जिंक डालें, घोल बनाएं और उसका स्प्रे करें, उसके परिणाम देखें। क्योंकि ज्यादातर भोजन एक अवस्था आने के बाद फसल अपने पत्तों से लेती है, वो उसको सोखेंगी और उनका बहुत अच्छा विकास होगा, कम खर्चा, लागत कम और फायदा ज्यादा। तो और एक तरह से पर्यावरण के भी बहुत अनुकूल, ये प्रयोग आप अवश्य करें इस साल जब भी आपको मौका। तो ये पोषण के बारे में जानकारी रही और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए लाभदायक रहेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट खेती किसानी और किसान भाइयों। आज इस प्रोग्राम को मैं होस्ट कर रहा हूँ आपका दोस्त आनंद और आज हमारे साथ वरिष्ठ प्रबंधक AK सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ढेर सारी
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं

0: काफी लाभदायक खेती है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे लोग सीखते हैं, या तो आप अंदर जाएं, हाथ से निकालें और उनको अलग कर दें खेत। एक तो ये तरीका है
1: जी।
0: दूसरा जो है आपके रासायनिक तरीका है। रासायनिक तरीके में बहुत सारे ऐसे उत्पाद आते हैं जिनको हम बोलते हैं खरपतवार नाशी, उनका हम प्रयोग करते हैं जिससे कि जो खरपतवार हैं वो जो खत्म हो जाते हैं। उनकी भी एक तकनीकी है और उनके इस्तेमाल करने का एक समय है, वो बहुत जरूरी है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते या उसका हम एक तरह से उसके हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते तो लाभ भी नहीं होता, या लाभ हो न हो नुकसान होने की भी संभावना है, हो जाती
1: हो
0: है
1: जाती।
0: तो हम ये ध्यान रखें कि धान की जो फसल है उसमें खरपतवार न हो, और अगर है तो हम उनको निकालें और फसल से अलग करें, क्योंकि वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को कमजोर करेंगे। तो एक तरीका मैंने बताया कि हाथ से निकालिए, वो तरीका है आप अपने खेत में जाइए और लेबर के द्वारा है, या आपका कोई छोटा रकबा है तो आप खुद कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा है तो लेबर के ओर से कर सकते हैं। तो आप जो पौधे हैं उनको निकाल के और अलग कर दीजिए। एक और मैं यहाँ पे सलाह दूंगा आपको कि जब भी कोई जो आपके खेत में या मेड़ के आसपास खरपतवार है तो कोशिश ये करें कि उनकी जो बीज बनता है उससे एडवांस में ही उसको निकाल लें, बीज नहीं बनने दें, या बीज थोड़ा बहुत हो भी गया तो उसको तैयार न होने दें, क्योंकि बीज से फैल के ही फिर आपके अगले सीजन में उस खेत में खरपतवार आ जाते हैं। तो बीज तैयार हो उससे पहले, यानी फूल वाली अवस्था या उससे पहले ही आपको अपने खेत से खरपतवार निकालने हैं और खत्म करने। नंबर एक बात ये तो होगी। तो ये हो गया हाथ के द्वारा नियंत्रण, खुरपी के द्वारा, जैसा भी जो भी। आजकल बहुत सारी धान की वैरायटियां ऐसी भी हैं जिनमें हल्की सी नमी रखते हैं और धान होता है, अगर ऐसी वैरायटी लगाई है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा है रासायनिक नियंत्रण है। तो रासायनिक नियंत्रण में जैसे कि जब आपकी फसल करीब करीब जो 20 दिन के आसपास की हो जाए, मतलब जो 15 से 20 दिन के आसपास, तो उस समय पर एक खरपतवार नाशी हमारी कंपनी का आता है, उसका नाम है उत्तम फ्लिप।
1: ओके।
0: 100 ml ये दवा है, और उसके साथ एक दवा और आप ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है मोजो। ये 8 ग्राम दवा लें, ये 1 एकड़ के लिए है। तो आप अपने जो आपका क्षेत्र है वहाँ उसके हिसाब से 1 एकड़ का रकबा निकाल के ये दवा आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप पानी में घोल के छिड़काव करें, या आप कोई भी जो खेत की मिट्टी उसके साथ ऐड करके भी इसको आप अपने खेत में फेंकवा सकते हैं और इसका आप फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक और दवा है जिसका नाम है मोटो कोम्बो, जो कि 8 ग्राम लें और इसको 150 से 200 लीटर पानी में घोल के समान रूप से छिड़कें। पानी के साथ छिड़कें तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा प्रभाव रहेगा। खेत अगर आपका बड़ा है, हाथ वाले से नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे स्प्रेयर होते हैं जो कि आपके उनका जो स्प्रे है वो आगे तक जाता है और पूरे जो आपका क्षेत्र है उसको एक तरफ से सारे क्षेत्र में अच्छे से स्प्रे हो जाता है, उस तरह के यंत्र ले सकते हैं। तो ये आपको स्प्रे करना है। होता कभी कभी ये है कि आपने स्प्रे भी किया, बहुत सारे खत्म भी हो गए, लेकिन बीच बीच में कुछ छोटे पौधे छूट जाते हैं और वो आगे चल के उनमें बीज बन जाते हैं। तो आप हमेशा प्रयास करें कि कोई भी खरपतवार आपके खेत में न रहे। ऐसा नहीं अब स्प्रे कर दिया, मुझे खरपतवारों के लिए कुछ नहीं करना। अगर 50 पेड़ भी आपके एक एकड़ खेत में रह गए तो अगले साल उससे 5 लाख पौधे आपके खेत में तैयार हो जाएंगे। तो बीज न बनने दें खरपतवारों। तो ये सावधानी आप रखेंगे, और ये जो खरपतवार नाशी मैंने आपको कहे हैं, इनका प्रयोग करके आप अपने खेत से खरपतवारों का सफाया अवश्य कर सकते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि खरपतवार नाशी जो है, अक्सर क्या होता है कि हमने कहा कि भाई ये हमने स्प्रे कर दिया, अभी भी कुछ पौधे रह गए, या हम एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि भाई ये खत्म नहीं हुए।
1: बिल्कुल ऐसा हो जाता है।
0: इंतजार करें, एक आध हफ्ते में उसका असर होता है। लेकिन एक ध्यान रखें कि कभी भी जब ये स्प्रे कर रहे हैं तो कभी भी लोग बोलते हैं कि चलो इसके साथ हम कोई जैसे जिंक है या यूरिया है या कोई और चीज है वो भी घोल के डाल दें। ऐसा न करें। एक तरफ तो आप पौधे को जो है एक तरह से खत्म कर रहे हैं,
1: जी,
0: दूसरी तरफ उसको भोजन भी दे रहे हैं तो उसका उतना अच्छा असर आपको नहीं मिलेगा। पानी की मात्रा पूरी रखें
1: जी,
0: और हड़बड़ी में दोबारा स्प्रे न करें कि उससे जो आपकी मुख्य फसल है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और आपको नुकसान हो सकता है। एक तो नुकसान आपकी जो खेत है या जो फसल ले रहे हैं उस पे होगा, दूसरा ये कि आपका रुपया भी ज्यादा खर्च होगा, पैसा भी ज्यादा खर्च। तो मैं आशा करता हूँ ये सावधानियां आप जरूर रखेंगे, तो खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल पूरी तरह संज्ञान से करें। दूसरा एक चीज और होती है, जब आप भूल गए शुरू में आपने नहीं किया
1: जी जी,
0: और फसल हो गई काफी बड़ी,
1: हाँ जी,
0: फिर आप कहते हैं स्प्रे कर दूं, तो उससे आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो वहाँ आप कोशिश यही करिए कि अगर आप हाथ से निकलवा सकते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वो समय निकल गया, आप कितना भी खर्चा करें आपको सही परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि खरपतवार जो है वो इतने ताकतवर हो गए कि उस दवा का असर भी उनके ऊपर ज्यादा नहीं। ठीक है
1: डॉक्टर साहब, आपने अच्छी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। सर इसी बीच मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, धान की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: बिल्कुल,
1: ये मुझे लग रहा है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।
0: जी हाँ बिल्कुल
1: जी,
0: क्योंकि क्या है कि इस समय एक तरह से देखें कि मतलब मानसून का समय है।
1: बिल्कुल मानसून का
0: तो
1: समय,
0: तो जितने भी कीड़े हैं उनका एक ये जो खास समय होता है,
1: बिल्कुल धरती पर आने का,
0: हाँ, और वो काफी एक्टिव रहते हैं इस समय, सक्रिय रहते हैं
1: बिल्कुल,
0: और जहाँ पे भी उनको भोजन मिलता है या ऐसी कोई हरी चीज या फसल दिखाई देती है जो कि उनके लिए उपयोगी है, या उनका जो खाद्य पदार्थ है, तो वो आकर्षित होते हैं उनका, ये वो ऐसा नहीं सोचते कि आपका नुकसान हो रहा है, वो तो ये देखते हैं उनका क्या फायदा
1: हो रहा है। बिल्कुल,
0: तो हमें अपना फायदा देखना है, तो हमारी हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमने सब कुछ अच्छे से किया, फसल भी अच्छी है, पानी भी हमने दे रहे हैं, हमने उसमें अच्छा उर्वरक भी दिया है, लेकिन उसमें सब कुछ अच्छा होने के बाद कीड़े आ गए और उन्होंने फसल को खत्म कर दिया, तो आप देखिए कि जितना सब कुछ था सब एक तरह से खत्म
1: हो गया।
0: तो हमें ध्यान ये रखना है कि कीड़े आए हैं या नहीं आए, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस जानकारी के लिए ये जानकारी कैसे होगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि जब कीड़े आएंगे तो वो आपको फोन करेंगे कि जी हम आ गए।
1: बिल्कुल ऐसा ही तो है नहीं, बिल्कुल।
0: तो वो कैसे जानकारी मिलेगी, उसकी जानकारी मिलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर रोज नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के अपने खेत की तरफ एक राउंड जरूर लगाएं। जब आप राउंड लगाएंगे तो आप फसल को खेत में थोड़ा उतरिए और देखिए, हाथ से महसूस करिए कहीं कोई आपका पौधा सूख रहा है क्या, या कहीं पे कुछ सफेद सफेद सी मक्खियां, जो मतलब काली काली सी मक्खियां तो नहीं उड़ रही है, कोई आपको इल्ली जैसी तो नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपकी फसल में कीड़ों का प्रकोप नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज दिखती है
1: जी,
0: कोई एकाध दिख जाए कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर वो दिख रही है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है
1: जी।
0: सावधान होने की मतलब ये है कि उसका कोई न कोई आपको उपाय करना है
1: जी।
0: तो अब बात ये आती है कि भाई कौन कौन से ऐसे जो मतलब कीट हैं कि जो धान में आते हैं। एक तो फुदका होता है, फुदका आप देखेंगे एक कीड़ा उड़ रहा इधर से उड़ा उधर चला गया, इधर से चला उधर गया, तो सफेद फुदका होता है, सफेद भी हो सकता है काली भी हो सकता है, एक जो होता है आपका गंदी बग होता है, एक हिस्पा होता है, तो ये अलग अलग तरह के कीड़ा होते हैं। इसके अलावा इल्ली भी होती है, इल्ली क्या है कि पौधे के अंदर चली जाती है और उसको खाती है ना, तो इस तरह से अलग अलग तरह के हैं। तो एक इल्ली का जो मैं बता दूं उसको बोलते हैं तना छेदक और पत्ती मोड़क, लीफ फोल्डर भी बोल देते हैं ये है, तो ये पौधे के अंदर भी चला जाता है कि और जो उसकी शाखा है ना उनको लपेटता भी है, ये एक इल्ली होती है और वो लपेटती इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो जाके धीरे धीरे खाती रहती है और पौधे को सुखाने का काम करती है, तो उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो आप करें, एक हमारी दवा आती है ऑनविक्स के नाम से, 4 ग्राम दवा है और इसको 1 एकड़ में आपने इस्तेमाल करना है और 20 से 25 किलो मिट्टी में, जो खेत की मिट्टी हो, सूखी मिट्टी हो मतलब गीली ना, उसमें आप अच्छे से वो करें और खेत में आप एक तरह से फैला दें, जैसे कि यूरिया डालते हैं या कोई और उर्वरक हम इस्तेमाल करते
1: हैं जी जी जी,
0: उस तरह से आप उसको बखेर दें, बखेर देंगे तो धीरे धीरे उसका असर होगा। उसमें हमेशा यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आपने कीटनाशक जो इस्तेमाल किया और आपको लगा कि अरे आप 3 दिन बाद गए, अरे अभी भी थोड़े बहुत है, थोड़ा समय लगता है। एक दवा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका असर कम से कम 15 दिन रहता है
1: जी,
0: उस बीच में आप कोई दवा इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो अपना असर कर रही है,
1: कर रही है।
0: और कीड़े पे वो अपना कंट्रोल करेगी। इसके अलावा एक टियोटा नाम की दवा होती है, वो 60 ml दवा लेनी है, उसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें। दूसरी एक दवा और आती है युवोटा के नाम से होती है, ये भी 60 ml है, ये भी इतने ही पानी में लेके, इनमें से कोई एक आपने इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं है मैंने तीन नाम जो लिए तो आप तीनों डाल लें, नहीं, कोई एक दवा। और अगर आपको लगे 15 दिन बाद भी कंट्रोल नहीं, तो फिर कोई और दवा भी, इनमें से कोई एक दवा आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 15-20 दिन से पहले आप उसका प्रयोग न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर होता है आपका जो छेदक होता है, जैसे कि दीमक है, तना छेदक है, इस तरह के जो कीड़े होते हैं, उनके लिए आपने एक दवा आती है हमारे स्टेम्बो के नाम से, वो एक एकड़ में लगभग जो आपकी 10 किलो दवा जो आपने लेनी है, और ये भी आपको प्रयोग करनी है जब फसल की जो आपने रोपाई की है उसके जो है रोपाई के 25 दिन के अंदर आपने उसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अलग अलग तरह की लीफ फोल्डर का मैंने आपको कहा ही है, जो स्टेम बोरर है उसके बारे, उसके लिए एक दवा आती है स्पोनाजा, 140 से 150 ml है, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो कीड़ों के बारे, कीटनाशक का आपको इस्तेमाल करना है, कीटनाशक के अलावा और कोई दवा आप इस्तेमाल न करें। कभी कभी क्या होता है, बोल देते हैं कि इसमें ये मिला दो, इसमें ये मिला दो, इसमें ये मिला दो। प्रयास करें बहुत ज्यादा एक साथ जो दवाएं न मिलाएं। आजकल दवाएं कुछ ओरिजिनल ही इतनी अच्छी आ रही हैं कि उनमें चीजें मिक्स होती हैं आपके कीड़ों के हिसाब से, तो आप उस तरह से स्प्रे करें, पानी की मात्रा सही रखें। और एक और चीज, पानी हमेशा साफ इस्तेमाल करें। पानी के अंदर अगर थोड़ी भी धूल या मिट्टी है, उसमें अगर उसको आपने इस्तेमाल किया है, तो जो भी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका असर काफी कम हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो दवा आप इस्तेमाल करें उससे 100% असर होता, तो वो हो सकता है कि अगर जो साफ पानी नहीं उसमें मिट्टी है तो उसका असर कम हो जाए,
1: कम हो जाए।
0: दूसरा एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी टंकी से आपने जो खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है तो उसको अच्छे से धो लें, उसके बाद ही उससे जो कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा बहुत भी खरपतवार का असर है तो वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। अगर खरपतवार नाशी का असर है या वो दवा कहीं न कहीं लगी रहेगी उस टंकी में, तो और उससे फिर आप कीटनाशी का स्प्रे कर रहे हैं, तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सावधानी आप रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आनंद जी, कोई अगला और सवाल है तो?
1: जी जी बिल्कुल, आखिरी सवाल होगा, धान की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल आनंद जी
1: जी,
0: जैसा कि अभी तक हमने कि आपको कीट प्रबंधन के बारे में बताया, खरपतवार के नियंत्रण के बारे में बताया, रोग भी आते हैं धान की फसल में
1: जी।
0: और जब रोग आते हैं तो रोग के बारे में ये कहा जाता है कि रोग को एक अवस्था पर रोका तो जा सकता है
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन जो रोग से फसल में नुकसान हो गया है
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: उसको फिर लौटाया नहीं जा सकता।
1: ओके,
0: ये बड़ी अहम बात है, रोग के बारे में हम यहाँ स्पष्ट रूप से समझें। तो अभी धान जहाँ लग गया है वहाँ वो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं लगा है और आप लगाने जा रहे हैं तो आप एक चीज का अवश्य रखें कि जो धान की पौध लगा रहे हैं उसका उपचार अवश्य करें फफूंद नाशक से। कोई भी फफूंद नाशक जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपने जरूर इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, एक टैंक में साफ पानी भरें, उसमें वो फफूंद नाशक आप ऐड करें, उसमें जैसे कि M45P है, आपके अलग अलग दवाएं आती हैं, फुलकोट भी है, कोई भी दवा है, और इसके अलावा एजोल है हमारी एक दवा है, और इसके अलावा आप और लेगजोन करके हमारी दवा है, ये दवा उस पानी में आपको मिलानी है। उस पानी में जब अच्छी तरीके से ऐड हो गई, खास ध्यान वही रखना है कि पानी साफ हो, मिट्टी नहीं होनी चाहिए
1: जी, जी।
0: फिर जो पौध है उसको एक बार पानी में आप निकालें, और खास तौर से उपचार जो कौन से हिस्से का होना है, जो आपका जड़ वाला हिस्सा है थोड़ा ऊपर तक, जैसे जो जड़ें हैं और थोड़ा सा ऊपर उसका तने का भाग
1: जी,
0: उसको पहले साफ पानी में निकालें, और फिर करीब 20 मिनट के लिए जो घोल आपने तैयार किया फफूंदनाशी का उसमें आप रख दें। तो उससे जो रोग के जीवाणु उस पौध के अंदर होने की संभावना थी, हो सकते थे, क्योंकि रोग ऊपर से जो है उतना नहीं आता जितना कि पौधे के अंदर से ही आता है या जमीन से अंदर से आता है
1: जी।
0: तो वो कहीं ना कहीं उसमें से खत्म हो जाएगा। फिर आप लगाएंगे तो संभावना बहुत कम रह जाएगी कि उसमें कोई रोग आएगा। पहला तो ये काम था, लेकिन जो लोगों ने जो पौध लगा दी है, फसल खड़ी है, वो क्या करे, तो वो जैसे ही रोग के लक्षण, जैसे एक शीत ब्लाइट करके है, अंगमारी रोग बोलते हैं, ये लगभग आपके 45 रोज के आसपास आने की संभावना होती, तो उसी समय पर एक दवा है एजोल के नाम से, 200 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें। दूसरा फूलकोट के नाम से हमारी दवा 150 ml है, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी एक दवा हमारी लेगजोन है, 300 ml है, 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप इस्तेमाल करें। ये फफूंद नाशक लगभग सभी तरह की जो बीमारियां हैं उनको रोकने में कामयाब हो जाते हैं। आप एक स्प्रे करीब करीब 40 से 50 दिन के बीच में इसका आप अवश्य कर लें, जिससे कि फसल हमारी सुरक्षित हो जाए। और एक और चीज है कि ध्यान रखें कि रोग फैलता है, एक खेत में आ गया तो दूसरे खेत में भी अगर हवा चलती है तो उसके जीवाणु वहां तक जाते हैं, तो कोशिश करिए कि अगर वहां और लोगों के भी खेत हैं उनको भी सलाह दीजिए कि वो भी इस तरह का उपचार करके अपनी जो धान की फसल है उसको सुरक्षित कर सके। एक और बहुत सा जो मैंने अपने अनुभव से जाना है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अगर जैसे धान लगाया, धान की हाइट सपोज मान के चले कि 2 फीट है या 4 फीट है, तो खेत के चारों ओर हम ऐसी फसल लगाएं जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, जैसे मक्का के लगा सकते हैं, जैसे 4-4 फूट मक्का के, बाजरा के, ज्वार के आपने लगा दिए, तो वो एक तरह से आपके खेत का एक सुरक्षा की ढाल बन जाते हैं। दूसरे खेत में अगर कीट है, जो कीड़ा है, जैसे मैंने कहा था ना सफेद मक्खी है, फुटका है, वो नहीं आएगा। दूसरा रोग भी जो हवा के द्वारा फैल सकता था उससे भी काफी रुकावट, आपकी फसल स्वस्थ बनी रहेगी। तो ऐसी ये बहुत सारी जानकारियां हैं आनंद जी, विषय तो इतना ज्यादा लंबा होता है खेती का कि बात निकलती है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में ये कुछ मैंने आपके सवालों का जो उत्तर देने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ कि उचित रहेगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगा और किसान भाइयों आपको जरूर पसंद आया होगा आज का ये विषय और आज का ये कार्यक्रम। आप सुन रहे थे FM मुरादाबाद 89.6 पर खेती किसानी, आपका बेहतरीन प्रोग्राम, और आज हमारे साथ अनिल कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे। सर, चलते चलते हमारे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी ओर से क्या एक सलाह देना चाहेंगे जाते जाते?
0: संदेश तो क्या मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सलाह कह लीजिए या मेरा एक अपनी तरफ से सोच है जो मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूँ
1: जी,
0: कि खेती कोई 1-2 साल की चीज नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: और ये एक तरह से प्राकृतिक चीज है।
1: बिल्कुल,
0: ये पूरी तरह से जो आव हवा है या जीव है उनके द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसमें हमें सबका सहयोग लेके ही काम करना होगा, यानी सहयोग से अर्थ है कि जो प्रकृति है
1: जी
0: उसका चलना होगा। हमें अपने के जो संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, जिससे हमारा खर्चा कम होगा, खेती स्वस्थ रहेगी, मिट्टी स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ फसलें भी हमें प्राप्त होंगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी खेत को भी आराम देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो प्रयास कीजिए। इन्हीं जो है मतलब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, जल्द ही मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में फिर से कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और इसे ही सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: खांसी हो लगातार, मत करना इंतजार, समय पे जांच करवाओ, टीवी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद कि हम पहले भी टीवी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीवी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। मैंने कई बार गांव में लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे टीवी तो पहले भी हुआ करती थी, अब कहाँ जाता है, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीवी कैसे हो सकती है, और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं मौसम बदल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या टीवी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीवी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीवी की जांच के बारे में, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, और अगर सही समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमारे कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझा देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
3: धन्यवाद आरजे खुशी, और मेरे सभी श्रोताओं भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीवी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा थकान बनी रहती थी, घर के लोग पूछते थे क्या हुआ, तो वे हंसकर कह देती अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था। शाम होते होते हल्का बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुए, बलगम की जांच हुई, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
2: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीवी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीवी है क्या?
3: देखिए खुशी, टीवी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसीलिए टीवी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
2: लेकिन भाभी, लोग तो टीवी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या हर बार टीवी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाते हैं?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीवी दो तरह की हो सकती है। एक लेटेस्ट टीवी, जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते, वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीवी, जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों को एक्टिव टीवी दूसरों तक फैल सकती है।
2: तो ये फैलती कैसे है?
3: जब फेफड़ों की टीवी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इससे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
2: गांव में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीवी फैल जाती है।
3: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीवी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
2: इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
3: अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बलगम में खून आए तो तुरंत टीबी की जाँच करानी चाहिए।
2: क्या भारत में आज भी टीवी बड़ी समस्या है?
3: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं। इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहतर जरूरी है।
2: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
3: जी हाँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोग, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
2: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
3: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTIP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
2: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
3: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच, बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी की जीवाणु मौजूद है या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी महत्वपूर्ण है।
2: CBN, AAT और TuneIn जैसे नाम भी सुनते हैं, कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होता है।
3: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत यही है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कई बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रजिस्टेंट तो नहीं। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
2: और एक्सरे की क्या भूमिका होती है? क्यों जब भी लोग लंबे समय तक खांसते हैं, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं?
3: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की जांच में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसी बदलाव दिखाई देती है जैसे टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांच की जरूरत होती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावित होगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
2: साथियों, बात बिल्कुल साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी तो घरेलू नुस्खों में महीनों ना उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। दो हफ्तों की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करवाती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
3: नहीं आरजे खुशी, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसमें हम पेसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँव बस्तियों दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
2: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है।
3: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
2: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्यों अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को ही क्या जरूरत है?
3: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है, तो बाकी सदस्यों को भी जांच करवाना बेहतर जरूरी है। इससे संपर्क जांच या कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग की जांच जरूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
2: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर है और शर्म। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं करवाते और दूसरों को भी बताते नहीं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह कोई पाप नहीं, यह कोई चरित्र की कमी नहीं, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं?
3: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाएं। दूसरी बात, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच करवाइए। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ा

0: उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच करवाइए, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब लेते हैं मिलकर सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई,
1: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार, जांच करवाना है समझदार, टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करा के ही रुकेंगे।
0: श्रोताओं मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रीना। साथियों पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
3: धन्यवाद आरजे रीना और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटी कोटी धन्यवाद। आरजे रीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
2: बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
3: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी, यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
2: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है, यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
3: देखिए अर्जरीना, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
2: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, क्यों?
3: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
2: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
2: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
3: निक्षय वास्तव में टीबी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
2: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
3: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीबी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना, ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और न ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
4: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
3: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
4: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
3: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
4: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
3: रीना, MDR TB यानी दवा प्रतिरोधी TB में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
4: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
3: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकते हैं, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
4: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
3: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
4: तो अगर आज के चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
3: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले टीबी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षेप और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR टीवी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
2: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हां श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद
1: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तो बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
2: नाम तो बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
1: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें? अभी क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
1: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बारी होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
2: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
1: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में, ना?
2: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटल की तरफ पड़ा है।
1: करेक्ट। तो श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालो, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदलें, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
0: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कहीं हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
0: एब्सोल्युटली। तो श्रोताओं, हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: ये पर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। तो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत? प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर ले कि वो जो कंपनी है वो सीपी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। मतलब भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें। ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: कभी कभी बदलाव की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, ना उनमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कोई चमकदार मंच, बस एक परिवार होता है, कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों के बीच एक मदद का हाथ।
1: किसी के लिए वह मदद बनती है एक सुरक्षित छत, किसी के लिए परिवार के भोजन का सहारा और किसी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है।

0: कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर जिंदगी में बदलाव की वजह बने।
1: आज विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर चल रहे हैं देवरिया, जहां हम सुनेंगे विकास की कोई बड़ी घोषणा नहीं, बल्कि एक आम इंसान की अपनी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसके जीवन में बदलाव आया है।
0: हमारी मुलाकात एक ऐसे लाभार्थी से है जिन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच सरकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है। अब कहानी हमारी नहीं, उनकी अपनी जुबानी।
2: आज हम उपस्थित हैं देवरिया के अगस्त पार्क गांव में, और यहां पर हम लोग ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो किन लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाएं। तो हमारे साथ एक ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
3: चंद्रिका प्रसाद।
2: कहाँ के रहने वाले हैं?
3: अगस्त पास पचमतला।
2: जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और विकलांगता के आधार पर आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
3: हमको यही विकलांगता के आधार पे आवास मिला है सरकार की तरफ से।
2: जी,
3: अभी बनना थोड़ा बाकी है, छत लगाना है।
2: जी,
3: और ये मिला है।
2: जी, ये कब मिला आपको?
3: अभी हो गया 2-4-5 महीने हो गया।
2: जी, अभी हम लोग देख सकते हैं इसका ढलैया कराना, लिंटर कराना बाकी है।
3: बाकी है
2: जी,
3: अब कराएंगे इसको, ढलैया भी 1-2 महीने में करा देंगे।
2: इसके अलावा और कौन कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं आप?
3: राशन कार्ड में है, नाम है, राशन मिलता है।
2: जी, तो आपको आवास मिला हुआ है और राशन कार्ड बना हुआ है जिसके तहत आपको राशन मिल रहा है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा है आपके लिए?
3: सरकार को धन्यवाद देना चाहूँ, अच्छा है, मिल रहा है राशन, नहीं तो पहले नहीं मिलता था।
2: जी,
3: बढ़िया है, मिल रहा है, अभी क्या करेंगे।
2: पहले क्या दिक्कत होती थी घर नहीं बनने से?
3: पहले दिक्कत थी, घर नहीं बनना तो कहाँ रहेंगे, मड़ई टाटू में रहते थे और क्या।
2: जी,
3: जैसे मड़ई टाटू में जी रहे थे और कुछ।
2: जी, और ये राशन मिलने से क्या फायदा?
3: राशन मिलने से क्या फायदा, रोटी रोजी पेट भरता है और क्या। पहले दिक्कत बहुत थी, बहुत दिक्कत बोले तो दिक्कत, रोजगार नहीं, कुछ नहीं तो क्या करेंगे।
2: तो अभी आपने देखा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, इसके तहत हम लोग अगस्त पार गांव में पहुंचे हुए थे और यहाँ पे इन भैया से हम लोग ने जाना कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले रहे हैं ये, जो विकलांगता के आधार पर मिला हुआ है, और पेंशन भी मिल रहा है और राशन कार्ड के तहत इनको राशन भी मिल रहा है, तो इन सभी योजनाओं का ये लाभ ले रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
1: किसी कहानी में सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वह कहानी खुद उसी इंसान की आवाज में सुनाई दे जिसने उसे जिया है, और यही वजह है कि लाभार्थी की आवाज किसी भी सरकारी योजना का सबसे मानवीय चेहरा बन जाती है।
0: दिव्यांग जन के लिए सहायता केवल आर्थिक मदद का विषय नहीं, ये उनके जीवन में सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भरता की संभावना से भी जुड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, और जब ये सहायता किसी जरूरतमंद तक पहुंचती है तो उसके मायने सिर्फ एक सरकारी लाभ तक सीमित नहीं रहते।
1: लेकिन किसी योजना का लाभ जमीन पर कैसे पहुँचता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, लाभार्थियों तक पहुँचने में प्रशासन की क्या भूमिका है, और पात्र व्यक्ति अगर अभी तक योजना से नहीं जुड़ा है तो वो क्या करे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं देवरिया के जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह से।
4: सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक गणराज्य, अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा में खाने पीने रहने और विकास के लिए सभी को समान और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा आप देखेंगे ICDS डिपार्टमेंट द्वारा पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, और लोग बेशक हो जाते हैं तो उनके लिए मनरेगा है, आवास दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जा रहा है, और भी जैसे कृषि सम्मान निधि है, कामधेनु योजना है, नंदनी योजना है, जिसके लाभ उठा के लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। अब जैसे जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका अप्रत्यक्ष लाभ आप देखेंगे लोगों के रोजगार में मिलता है। जैसे आप कोई व्यक्ति आवास बनाता है, लगभग 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, शहरी क्षेत्र में यह 2 लाख, यह धनराशि 2 लाख रुपये से अधिक हो जाती है। तो आप देखेंगे तो उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है, छड़ की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है और मजदूर की जरूरत पड़ती है। तो इस इन कार्यों के लिए और सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार अपने नागरिकों के लिए, हर एक विकास के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है। बस देवरिया के लोगों को आपका सहयोग चाहिए प्रशासन के साथ। आप कोई भी समस्या हो जो जायज हो, और यदि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटा हो, तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने वार्ड मेंबर से, ईओ से, बीडीओ से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, वहाँ उचित जानकारी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि आप अपना सशक्तिकरण कर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।
0: सोचिए, एक परिवार के लिए अपना घर क्या होता है? सिर्फ ईंट, सीमेंट और 4 दीवारी? नहीं, घर होता है सुरक्षा, घर होता है सुकून और सबसे बढ़कर अपने होने का एहसास।
1: इसी सोच के साथ पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास योजना जैसी पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां जरूरतमंद परिवारों को पक्के और सुरक्षित आवास की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
0: और जब किसी परिवार को अपने घर का सहारा मिलता है तो उसके साथ बदलती है उस परिवार की उम्मीद।
1: हमारे साथ मौजूद लाभार्थियों की कहानी में भी आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूँ हेमा। आज हम उपस्थित हैं देवरिया के महाराजपुर गांव में और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस महाराजपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ एक भैया उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: जितेंद्र
2: जी, कौन से गांव से हैं?
5: महाराजपुर गांव से।
2: जी, आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है?
5: एक घर मिला है, हमारी पेंशन आता है सरकार की तरफ से।
2: राशन कार्ड में आपका नाम है क्या?
5: जी
2: जी और जॉब कार्ड भी है?
5: जॉब कार्ड भी है
2: जी। अच्छा, घर बनने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: हम घर बनने से हमको बहुत लाभ मिल गया है, अरे आराम मिलता है, मतलब हमारा घर बहुत अच्छा बन गया है, नहीं तो हम लोग पलान में रहते थे।
2: जी, विकलांग के आधार पर आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: पहले स्थिति थी कि हम लोग बारिश से भीग जाते थे, रहने का कोई सुविधा नहीं था, तो अब सरकार द्वारा मिला है
2: जी।
5: अब हमारा घर बन गया है, अब घर में हम रहते हैं
2: जी। और राशन कार्ड में भी आपका नाम है?
5: जी नाम जी। है सरकार की तरफ से, काम भी मिलता है तो पापा हमारे करते हैं।
2: अच्छा, सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो पहले जो है क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हुए हैं?
5: पहले हम लोग के पास गरीबी था, अब सरकार की तरफ से मिलता है तो थोड़ा हम लोग खा पी लेते हैं
2: जी। अब अच्छी स्थिति हो गई?
5: हाँ, अच्छी स्थिति हो गई है मुख्यमंत्री योजना के लिए
2: जी। अच्छा, आपके गांव में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उन लोग को क्या बताएंगे?
5: हम यही बतलाएंगे कि कागज पत्र बनवा लीजिए और जाकर भर दीजिए, मिल जाएगा आप लोग को भी। जैसे हमको मिला है, हमको रहने के लिए सुविधा मिला है, हम उन लोग को भी बतलाएंगे जाकर।
2: इन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
5: सबसे ज्यादा जोगी जी को धन्यवाद देंगे। और हमको पहले अनाज उनाज खरीदना पड़ता था, राशन खरीदना पड़ता था, अब उतना नहीं खरीदना पड़ता है। अब सब्जी उब्जी खाली खरीद कर खाते हैं हम लोग। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, हमारे जैसे विकलांग आदमी को लोग सुविधा दिए हैं।
2: तो अभी आपने देखा कि हम लोग देवरिया के महाराजपुर गांव में आए हुए हैं और भैया से बातचीत हुई और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया और क्या क्या योजना का लाभ इनको मिल रहा है, जैसे कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना जो विकलांगता के तहत मिला हुआ है और इनका राशन कार्ड है और जॉब कार्ड बना हुआ है, तो इन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और ये बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये जो हम लोग कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी के तहत, हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए थे और भैया के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी योजनाओं का ये लाभ उठा रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
0: किसी के लिए पक्का घर शायद हमारे लिए सामान्य बात हो, लेकिन जिस परिवार ने वर्षों तक असुरक्षा या अभाव के बीच जीवन बिताया हो, उसके लिए अपना घर मिलना एक नई शुरुआत जैसा होता है।
1: और यही वह जगह है जहां सरकारी योजना और आम नागरिक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती हैं। विकास की एक और बुनियादी जरूरत है भोजन, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली चिंता होती है घर की रसोई चलती रहे।
0: इस दिशा में राशन कार्ड पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सरकार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के जरिए पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
1: और इस योजना का महत्व शायद वही बेहतर समझ सकता है जिसके घर की रसोई तक इसका सीधा असर पहुंचता है।
0: एक कार्ड एक व्यवस्था, लेकिन किसी परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी सहारा।
1: और यही वजह है कि विकास को केवल बड़े निर्माण कार्यों से नहीं बल्कि इस बात से भी समझना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम परिवार के जीवन में कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंच रहा है।
0: दिव्यांग जन की सहायता हो, आवास का सहारा हो या फिर राशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, इन सभी योजनाओं के पीछे एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है, जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना।
1: उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने, उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
0: और इन योजनाओं की सबसे खूबसूरत तस्वीर किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि लाभार्थी के चेहरे पर दिखाई देती है। किसी के लिए सरकार की योजना एक सुविधा है, लेकिन किसी और के लिए वही सुविधा जिंदगी का सहारा बन जाती है। एक घर, एक राशन कार्ड, एक सहायता, सुनने में शायद छोटी चीजें लगे, लेकिन जब यही छोटी छोटी मदद किसी परिवार की जरूरत पूरी करती है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है।
1: किसी के लिए यह आत्मसम्मान की ओर एक
6: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
7: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
8: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
7: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
9: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। यही मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
7: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
10: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
7: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
11: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों JPSC सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
7: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
12: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश

0: भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
5: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूं महिला मंच, जहां पर हम बात करते हैं महिलाओं के संघर्ष की। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी की। यहाँ दोस्तों, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और यादगार फिल्मों की कहानी। बचपन और संघर्ष।
3: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं। उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। उस दौर में उन्हें अक्सर भीड़ वाले दृश्यों या छोटी गांव तक ही सीमित रखा जाता था। कई बार उन्हें यह कहकर भी ठुकरा दिया कि वह मुख्य अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटे अवसर को पूरी मेहनत से निभाया।
2: दारा सिंह के साथ सफर। साथियों, जब बड़े बैनर उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, तब अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के साथ उन्होंने स्टंट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन उन्हें स्टंट फिल्मों की हीरोइन का टैग भी मिला। इसके बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा।
3: 1969 में फिल्म दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें लगातार सुपरहिट फिल्में दी। यादगार फिल्में दो रास्ते, खिलौना, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, बंधन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी, कहानी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना जी के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई।
2: मुमताज जी की खास बातें, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अभिनेत्री, शानदार डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। निजी जीवन।
3: 1974 में मुमताज ने व्यवसायी मौर्य माधवनी से विवाह किया। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली। परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला भी लोगों ने खूब सराहा।
2: प्रेरणा। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी प्रेरणा की। मुमताज जी की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, मुमताज जी का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, इसलिए

0: ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में लाजवंती जो 1958 में आई थी और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे और कई बार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ा।
1: साल 1963 की फिल्म गहरा दाग से उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मांग वाली और कामयाब अभिनेत्री में शामिल हो गईं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने दो रास्ते, अपना देश और रोटी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ की। फिल्म खिलौना 1971 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
0: क्या बात है परी, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा जिक्र किया है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते, और इस मूवी में एक गाना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
1: जी जी खुशी जी, आपने काजल लगाया और ये दिन में रात हो गई।
0: अरे यार, पता है आपको मुमताज जी ने जो ड्रेस पहना था येलो कलर का, कितना ब्यूटीफुल था ना यार।
1: बहुत सुंदर, वो ड्रेस बनाने की मैंने भी कोशिश करी थी पर वो मेरे से बन ही नहीं पाई और मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब भाई हर कोई मुमताज जी जैसा खूबसूरत नहीं हो सकता।
0: एग्जैक्टली राइट। और क्या खूब लगते थे ना राजेश खन्ना जी और मुमताज जी,
1: उन दोनों की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर है पर्दे पे, और मेरे हिसाब से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये जोड़ी बहुत पसंद आने वाली।
0: बिल्कुल पसंद करेगी हमारी जनरेशन भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड।
1: यस बिल्कुल।
0: तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र हमने किया है और इस गाने की भी हमने अभी लाइनें आपको कुछ बोलकर सुनाई है, तो क्यों ना इस गाने को सुन लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आएगा हमारी तरह। तो चलिए लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
2: छुप गए

0: श्रोताओ, इतना प्यारा गाना आपने सुना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा, क्योंकि आप जो हमें इतना मिस करते हैं, तो फिर हम चले आए आपके पास, आप ही के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम जिक्र कर मुमताज जी का, एंड आज हम जानने वाले हैं उनकी हॉबीज के बारे में भी, उनकी क्या हॉबीज रही है, तो ये हमें बताने वाली है परी। तो परी बताएगा मुमताज जी क्या उनकी हॉबीज है।
1: मुमताज जी को सबसे ज्यादा डांस करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, और उनको अपने परिवार के संग समय बिताना पसंद था, और वो तरह तरह की नई डिशेस बनाती थी, अपने परिवार वालों को खिलाती थी, और उनको खूब शौक था किताबों पढ़ने का और फिल्में देखने का, वो फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। तो भाई अब हमने जब अभिनेत्री के बारे में जाना है कि वो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी हमें चाहिए। तो अब मैं खुशी मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, अब आप बताइए दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या हैं।
0: अरे मेरी हॉबीज तो मुझे यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्रैवल करती हूँ अक्सर। नेक्स्ट उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, और सिंगिंग के साथ साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है, अपने मम्मी पापा जी का। ये मेरी हॉबीज है। बाकी परी अभी आपने कुछ जिक्र किया था ना गानों का, जरा उनके गानों के बारे में भी बताइए, उनके सुपरहिट गानों के बारे में आपने बात जिक्र किया था अभी, आप मुझसे बता रही थी कुछ गानों का जिक्र कर रही थी, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताइए यार कौन कौन से वो गाने हैं।
1: मुमताज जी के गाने हैं कोई सहरी बाबू कोई लहरी बाबू,
0: आय रे पग बांध गया घुंगरू मैं छम छम नचती फिरा,
1: गोरे रंग पे इतना
0: गोरे रंग पे ना इतना घुमाने कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: और ये वाला तो मेरा फेवरेट है,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, आपको भी खबर हो गई ना कि हम दोनों लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी और ऐसी ही हमारी बातें चटपटी बातों को आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो अभी मिलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। तो आज हम बात ही कर रहे हैं मुमताज जी के बारे में, और भी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प बातें हैं अभी बाकी हैं, वो भी आकर हम करने वाले हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस

एंड वंस अगेन वेलकम बैक महिला मंच शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, हमारे श्रोताओं को भी तो पता होना चाहिए ना। दोस्तों 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री की बात होती है तो मुमताज जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज भी जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो लोग यही कहते हैं आखिर इतनी उम्र में भी ये इतनी फिट और ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं। तो जानते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का असली राज। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन डिसिप्लिन की। मुमताज जी का मानना रहा है कि फिटनेस किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज अच्छी आदतों का परिणाम है। वे हमेशा संतुलन भोजन पर जोर देती रही। ज्यादा तला भुना या बहुत अधिक मीठा खाने की बजाय वे घर का बना ताजा और हल्का भोजन पसंद करती थी। उनका मानना था कि शरीर को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं उनकी दिनचर्या में जाना। उनका कहना था कि अगर आप रोज कुछ देर पैदल चलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मुमताज जी ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि खुश रहना और तनाव कम लेना खूबसूरती का बड़ा राज है। चेहरे की असली चमक महंगे मेकअप

0: हमें भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, हमें भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और अपने घर का बना हुआ फूड ही हमें लेना चाहिए।
1: खाना समय खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना खाएं, ज्यादा ना खाएं, और वॉक करें और अपना सेहत पे ध्यान दें।
0: सुबह सुबह मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो बॉडी हमारी है ना ये भी एक मशीन है, आप इसको जितना चलाओगे ये उतना स्वस्थ रहेगी और आप जितना इसको आलसी बनाओगे ना तो ये उतनी ही बेकार हो जाएगी। और कहते भी है ना कि जो फिट है वो हिट है।
1: बिल्कुल सही बात। और आज अक्षय कुमार भी हिट है और मुमताज मैम भी फिट है।
0: अरे वाह क्या बात है यार। चलो दोस्तों मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया ना दोस्तों तो हमें अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइएगा जरूर आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, सुनते रहिएगा FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी

निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: दोस्तों गुड आफ्टरनून आदाब सस्त्रीकाल मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश शो और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। यह है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आपकी फरमाइशें बनती हैं हमारी पसंद और आपकी मुस्कान बनती है शो की सबसे खूबसूरत आवाज। दोस्तों कुछ गीत जो दिल के बहुत करीब होते हैं, कुछ रिश्ते बेहद नसीब होते हैं और जब आपकी फरमाइश पर बजे कोई प्यारा सा गीत तो ये पल और भी हसीन होते हैं। तो चलिए आज इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं शानदार गाना तो मैं सुनाने वाली थी लेकिन हमारे जो लिसनर हैं उनका भी कॉल आ गया है। देखिए एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 3:06 और 10 अगस्त की तारीख है, सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपने फर्स्ट कॉलर से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: जय श्री महाकाल।
0: क्या नाम है आपका?
1: शिवा लोहट, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम आपसे। आपको और आपकी पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी शिवा, बताएगा कैसा मौसम है एमपी का?
1: जी मैम, यहाँ पे तो अभी सुबह से बारिश लगी हुई थी, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पर अब सामान्य है स्थिति।
0: अच्छा ओके, तो सावन के दूसरे सोमवार में भी आपने बारिश में थोड़ा सा नहाए या नहीं नहाए? आप बारिश में थोड़ा भीगे?
1: जी भोलेनाथ जी, अगर इंसान का जल अभिषेक करेंगे तो वो करवाना पड़ता है।
0: हाँ जी एग्जैक्टली राइट, बताएगा आप क्या सुनेंगे आशिवा?
1: मैम देखिए मेरा कॉल लगा है तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सावन की, तो भोलेनाथ का ये गाना है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर।
0: ओके ठीक है, सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा से गाना। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम शिवा। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी आपकी कसम, जो 1974 में आई थी, किशोर कुमार जी और साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज और राजेश खन्ना साथ में मुमताज जी पर ये फिल्माया गया प्यारा सा ट्रैक, सुनते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए, शायद आपका भी कॉल लग जाए। नंबर हमारा रहेगा 9837896896।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी आपकी कसम से, जो 1974 में आई थी. और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार.
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार. क्या नाम है आपका?
1: जी मैं तीरथ सिंह बात कर रहा हूँ, गांव फरेडी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश.
0: जी जी बताइए, कैसे कैसे हैं आप?
1: जी ठीक है मैम, ऐसा मुरादाबाद में सभी लोग किस प्रकार से भी ठीक ठाक.
0: हाँ जी हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं सर. आप बताइएगा, आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: जी ये छुपा रुस्तम मूवी का गाना सुनना है, गाड़ी बंगला.
0: गाड़ी बंगला, ओके चलिए सुनवा देते हैं.
1: और कुछ मैम हमारे घर वालों के नाम है ये भी?
0: सर दो ही नाम लेना चाहेंगे आप? दो ही नाम ले लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा परमिशन नहीं होती हमें.
1: जी भाई, हमारे मम्मी पापा चंद्रपाल सिंह और हमारी माता सरोज देवी, हमारी बारिश राखी, वो हमारे दो बेटे हैं अमित प्रसाद.
0: ठीक है सर, ओके सुनवाते थे सभी के साथ ये गाना. एंड एवरीवन, मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मचाइएगा, बस यूं ही मुस्कुराइए और मुझे कॉल लगाइए. मुझे उम्मीद है कि आपका कॉल जल्द ही लग जाएगा. तो चलिए सुनते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी छुपा रुस्तम. बहुत ही प्यारा सा गाना है छुपा रुस्तम का ये गाना. एंड सुनवा देते हैं अपने प्यारे से सभी श्रोताओं को.

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी छुपा रुस्तम से एंड अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज और हमारे साथ में जुड़ गई है हमारी नेक्स्ट कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हाँ जी हेलो, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं आपका भीगनपुर जिला मुरादाबाद से रुकी है, फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दी, और बताया दी आज मुझे बहुत खुशी हो रही।
0: अच्छा ये खुशी का रीजन क्या है जरा बताइएगा हमें।
1: दी खुशी का रीजन ये है कि पहली बात तो मेरी खुशी से बात हो रही है।
0: हाँ सेकेंड।
1: और दूसरी बात ये है कि दी मैंने आज अपने हाथ से कॉल लगाई है।
0: और फर्स्ट टाइम कॉल लगाई और फर्स्ट टाइम लगाई राइट?
1: हाँ दी, एक ही बारी में कॉल मेरी लग गई।
0: हाँ समझ सकते हैं आपकी खुशी का जो ये रीजन है। अच्छा लगता है जब हम खुद से मेहनत करते हैं और कॉल लगाते हैं और उसमें हमें जब कामयाबी मिलती है, चाहे लाइफ में कोई भी काम हो जब हम खुद से करते हैं ना एंड उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। डियर
1: हाँ दी
0: प्रयास करना चाहिए। बताएगा और सब खैरियत से हैं आपके यहाँ पर?
1: हाँ दी सभी बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आपके वहाँ सब भी कैसे हैं?
0: हाँ जी स्टूडियो में सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: दी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ मेरी दोस्त दक्षा फातिमा के लिए।
0: जी बताइएगा।
1: हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे।
0: ओके सच में?
1: अच्छा तो बसा रखा है दी।
0: हाँ ये तो है। अच्छा ये बताइएगा हाँ। आज का मौसम अभी बाहर का कैसा है राइट नाउ?
1: बाहर का मौसम तो अच्छा हो रहा है दी, बहुत बस इतने बादल हैं छाए हुए और फिर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी।
0: अच्छा तो अभी बूंदाबांदी बंद हो गई है?
1: धूप निकल रही है दी।
0: अच्छा हल्की फुल्की धूप निकल रही है। ओके
1: हाँ।
0: तो ये गाना आप किनको डेडिकेट करना चाहती हैं या किन बताइए?
1: दी मैं अपनी दोस्त वृक्ष फातिमा को ही ये डेडिकेट करना चाहूंगी। और अच्छा। कुछ नाम है दी?
0: हाँ बताइएगा।
1: जैसे कि मेरी दोस्त है फातिमा रामपुर से
0: जी,
1: और जी मेरी सिस्टर है अफरोज फातिमा, नजमा अप्पी और राबिया अप्पी, आसिया अप्पी और लाइबा काजमी।
0: ओके
1: और आप और सभी सुनने वाले।
0: ठीक है सुनवाते हैं पहले से गाना सभी के साथ। शुक्रिया कॉल करने के लिए डियर।
1: थैंक यू दी, बाय।
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक उदित नारायण जी साथ में श्रेया घोषाल जी की बहुत ही मधुर आवाज एंड गाना भी बहुत प्यारा है, तो सुन लेते हैं हम फिर लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं नहीं जाने हैं आपको, हाँ बने रहना है हमारे साथ और साथ साथ कॉल भी लगाती रहिएगा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने पहले, जी हाँ, अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना दो इतना नारायण जी, साथ में श्रेया घोषाल जी की बड़ी प्यारी सी आवाज, और इस गाने में खूबसूरत नजर आए एक्टर एंड एक्ट्रेस सलमान खान और साथ में शिल्पा शेट्टी जी। तो अभी कनेक्ट करते हैं अपने अगले कॉलर से, बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो।
1: मंदिर सामने हो तो रास्ता ना मुड़ना, मंदिर सामने हो तो रास्ता ना मुड़ना, मुश्किलें आए तो हिम्मत ना हारना, मुश्किलें आए ही आती रहेंगी, सितारा को पाने के लिए जमीन ना छोड़ना। नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम कमराम रफीक, डिस्ट्रिक्ट सिवान। मैं पहली बार जुड़ा आवाज।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं
1: आप? बिहार।
0: अच्छा, बिहार से बात कर रहे हैं
1: जी।
0: ओके ओके सर, बिहार से बात कर रहे हैं, बताएगा।
1: पहली बार जुड़ा आवाज आपके शो में
0: जी।
1: उमा शंकर भाई बताए थे उत्तराखंड वाले।
0: अच्छा अच्छा, उमा शंकर जी ने आपको बताया था फिर मुरादाबाद के बारे में, राइट?
1: हाँ, मुरादाबाद रेडियो में शो चलता है, खुशी में काफी है।
0: जी जी जी,
1: आप जुड़ी है, मैंने कहा नंबर दीजिए भाई।
0: तो आपने नंबर लिया और कोशिश की, देखिए आपको कॉल लग गया। कितना टाइम लगा आपको कॉल लगाने में?
1: ज्यादा टाइम नहीं लगा।
0: ओके, जल्दी कॉल लग गया आपका, राइट?
1: हाँ, जल्दी लग गया
0: जी। तो बताइएगा सर, आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए थोड़ा।
1: मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट है मेरा।
0: हम्म।
1: और मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: दिल्ली में
0: हूँ। ओके,
1: और जॉब की तैयारी कर रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: सरकारी जॉब।
0: ओके सर, हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, आपकी जल्दी से जॉब लग जाए। एंड बताएगा क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मोहम्मद रफी का आवाज में गाना है, फिल्म का नाम उनको याद नहीं है। इनका सोना सा तराना ढूंढेगा, मेरे बाद मुझको जमाना ढूंढेगा।
0: अरे वाह, ये शायद एक रानी दो रूप से है, ये इनो फिल्म का नाम यही है। मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुनवा देते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए विवन, सुनते हैं प्यारा सा गाना। एक नारी दो रूप से, प्यारा सा गाना आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। हम आते हैं वापस, आप तब तक कॉल लगाइए। देखिए सर ने फर्स्ट टाइम कॉल लगाया और उनका लग गया, तो आप भी ट्राई कीजिए, आपका कॉल भी लग जाएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने कितना खूबसूरत गीत सुना ना एवरीवन, मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी एक नारी दो रूप। और पुराने गाने भी बड़े प्यारे होते हैं एंड जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे हमसे बड़े हैं, वो भी सुनते हैं रेडियो। एंड जब वो रेडियो सुनते हैं तो उनको भी पुराने गीत पसंद आते हैं। एक बारी आई रिमेम्बर मैं वहाँ पर गई थी वृद्ध आश्रम, तो वहाँ पर बहुत सारे सीनियर सिटीजन मुझे सुनते हैं एवरी डे। तो वो कहते हैं कि खुशी जी हम ना हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनते हैं। मैंने बोला सर उसकी खास वजह क्या है, तो कहते हैं कि वो उसकी जो खास वजह है उसमें हर तरह के गाने हमें सुनने को मिलते हैं, चाहे पुराने हों या फिर न्यू गाने हों, तो अच्छा लगता है। और दूर दूर से कॉल्स आते हैं एंड सब अपने बारे में बताते हैं, वहाँ के बारे में आप जान मतलब उनसे मालूम करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप भी कोई भी ट्रैक अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं, शायद आपकी पसंद किसी और को भी पसंद आ जाए, तो उसके लिए कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी,
0: हेलो, आई एम गुड, आप बताइएगा आप कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ दी।
0: जी अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ।
0: जी दरक्षा बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम मैं जिला मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: ओके, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो आप।
1: हाँ जी मैम, क्योंकि बहुत खुशी है ना मुझे इसलिए।
0: अच्छा, हम मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब ना ऑलवेज खुश रहें, और जब भी आप मुझसे बात करती हो तो हमेशा मुस्कुराती हो, इसका रीजन बताइए।
1: इसका रीजन ये है मैम कि हमारी जिंदगी में जीजू आ गए हैं।
0: ओ वाओ, बहुत बहुत मुबारक है आपको और आपकी दीदी को भी।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो बताइएगा आज इस खुशी में क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैं इस खुशी में सुनना चाहती हूँ मूवी का नाम है राजा हिंदुस्तानी।
0: हाँ।
1: और सॉन्ग के बोले आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
0: ओके, तो ये ट्रैक हम सुनवाते हैं, और कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: हाँ जी मैम, मेरी दोस्त है रुकैया फातिमा
0: जी,
1: और स्पेशली इसी के लिए और जीजू के लिए और मेरी सिस्टर के लिए।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक।
1: और मैम और सिस्टर के नाम लेना चाहती हूँ।
0: हाँ, दो ही ले लीजिएगा।
1: अफरोज फातिमा है, लाइबा काजमी है, नजमा आपकी और आप सभी सुनने वाले।
0: ओके चलिए, हम सब भी सुन लेते हैं आपका गाना। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं उदित नारायण जी की आवाज में बहुत ही प्यारा ट्रैक आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। और सच में जब हम आपसे बातचीत करते हैं ना, तो खुशी की खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि बहुत प्यारे हैं आप सब।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो गए और हमारे साथ जुड़े हैं एक लिसनर, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार सर।
1: खुशी जी कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप अपना नाम बताइएगा, योर गुड नेम।
1: हम वैसे तो हमें लोग राजे देव के नाम से जानते हैं खुशी जी, आई होप कि आप भी जानते होंगे और सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सभी दोस्तों को शुक्रिया।
0: जी आपको भी नमस्कार सर। आई रिमेम्बर, मुझे याद आया, हमें बताया था शबनम जी ने आपका नाम देव, राइट? या जी बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी हम मुंबई से।
0: अच्छा बॉम्बे से बात कर रहे हैं?
1: जी मुंबई में रहते हैं। ओके। और काम काज यहाँ कर रहे हैं। ओके। और आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं जी। हालांकि आई थिंक आप भूल गई हैं, हमने आपको बहुत पहले मैसेज दिया था आपके लाइव कार्यक्रम में।
0: हाँ नहीं नहीं, मैं भूल ही नहीं हूँ सर, सॉरी भूल ही नहीं हूँ, अभी आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया।
1: जी
0: या और बताइएगा
1: जी
0: बताइएगा सर, आप कैसे हैं एंड मुंबई का मौसम कैसा है?
1: मुंबई का मौसम तो इस समय ज्यादा मतलब ठंड भी नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं है। हाँ एक बात बताना चाहेंगे कि अभी अभी हम गए थे मुंबई से बाहर, महाबलेश्वर घूम करके आए हैं।
0: हाँ जी।
1: और वहाँ का मौसम मतलब समझ लीजिए ठंड से भी ज्यादा ठंड।
0: ओके।
1: और बहुत ही प्यारा नजारा रहा है, 5 दिन का टूर था, घूम करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा।
0: कैसा लगा आपको?
1: पहाड़ों का नजारा देखने में तो कुछ अलग ही आनंद आता है।
0: हाँ जी सर।
1: हालांकि महाराष्ट्र में तो आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे।
0: ओके। एक्चुअली ना सर, जब हम ऐसी खूबसूरत जगह जाते हैं ना तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो कहना चाहेंगे, हम तो वीडियो डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर।
0: हाँ जी।
1: और वहाँ पे भी लोग देख सकते हैं और सच में कहते नहीं कि जो चीजें जो जगह पर है बगैर वहाँ पर जाए वो देखने को नहीं मिलता है। और महाराष्ट्र का तो मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पहाड़ का नजारा होता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके।
1: एक सुकून मिलता है देख करके।
0: आपकी बातें सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें भी वहाँ जाना चाहिए। जी तो बताइएगा सर, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: हम तो सुनना चाहेंगे जो है साथ में हो आप के साथ बातें करने जा रही हैं आज सबने मंदाती जी।
0: ओके। पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर भी हो रहा है
2: जी। दीदी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते शबनम जी, आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कभी बच्चे चिल्ला रहे हैं तो कभी कुछ।
2: नहीं दीदी मैं तो सुनसान जगह पर बैठी हूँ।
0: ओके। लेकिन पता नहीं
2: बच्चे रो रहा हूँ,
0: पीछे से साउंड आ रही है बहुत ज्यादा।
1: खुशी जी सभी श्रोताओं के बीच में कहना चाहेंगे हालांकि हम तो मस्ती के बादशाह ही है और एक्चुअली क्या है कि आज शबनम बाकी जी शायद फूले नहीं समा रही है
0: ओके वो बहुत ज्यादा खुश है राइट।
1: कहना चाहेंगे जो भी साथी हमें सुन रहे हैं वैसे इस पल का एंजॉय करें और आज खुशी के साथ सुन रहे हैं।
0: थैंक यू।
2: हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया कर पैगाम आना है, हम आपको दीदी दिल से याद किया करते हैं।
0: शुक्रिया शबनम जी, थैंक यू सो मच इतने प्यार करने के लिए।
2: जी दीदी आप हमसे प्यार करती है तभी तो हम भी आपसे प्यार करते हैं।
0: हाँ ये तो है, देखिए कहते हैं ना कि जो हम देते हैं रिटर्न में वही मिलता है, अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमें वैसे ही व्यवहार करेगा हमारे साथ, राइट ना?
2: जी दीदी हम प्यार दे रहे हैं तो हमें सब प्यार कर भी रहे हैं।
0: हाँ एग्जैक्टली राइट। तो बताइएगा शिवनम जी आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल जी, अगर आपके पास 2 मिनट समय है तो मैं इस बात पे बोलना चाहूंगा कुछ।
0: जी जी बिल्कुल दीप सर, आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल।
1: लोग कहते हैं कि जो इंसान प्यार करते हैं उसी से प्यार करना चाहिए और हम कहते हैं कि कभी किसी से एक तरफा यानी मोहब्बत करके देखते हो कि जिंदगी क्या जिंदगी होती है।
0: राइट,
2: क्या बात है, थैंक यू
0: बहुत।
1: और आज किसी की आपके लिए दो लाइनें हम भी लाए हैं
0: जी,
1: के नाम पे ही दोस्ती ही जरूर। दोस्ती वो शख्स होता है जो कहते हैं कि मरने के बाद भी नहीं टूटता है। किसी ने कहा है कि हम रूठे तो किसके भरोसे,
2: मेरे
1: कहता है कि हम रूठे हैं तो किसके भरोसे, और कौन आएगा हमें मनाने के लिए।
2: हम आएंगे।
1: अभी अभी आपके बीच में हमने कहा कि एक तरफा जब दोस्ती होती है तो विषय पर है कि हम रूठे तो किसके भरोसे है, कौन आएगा हमें मनाने के लिए, और हो सकता है तरफ आ भी जाए आपको, हो सकता है तरफ आ भी जाए आपको, पर दिल कहाँ से लाए आपसे रू भिगाने के लिए।
0: क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आपकी।
2: जितनी खूबसूरत लाइनें हैं इतनी खूबसूरत ये खुद भी हैं, इनका दिल भी
0: है। हाँ जी, शबनम जी बहुत ज्यादा तारीफें कर रही हैं, तारीफ के काबिल हैं।
2: तारीफ के लायक हैं।
0: हाँ, तारीफ के काबिल हैं, तभी हमने कहा ना कि इतनी तारीफ कर रहे हैं आप।
2: जी बात सही है।
0: हाँ जी,
1: हमें तारीफ करवाना तो कोई मतलब टॉक नहीं है, हम इतना जानते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े रहे, जो भी हमारे संपर्क में आए, जो भी हमारे जीवन के साथ मिले, जो भी हमारे कार्यभार में कार्य के साथ दें, वो सब हमसे खुशी रहे, बस हमारी यही आखिरी तमन्ना रहती है।
0: और
1: सभी दोस्तों के भी बीच में यही तमन्ना है कि सब लोग खुश रहे, खुशहाल हों, और खुशी की तो बात ही नहीं रही है। अब खुशी की
2: बाकी
1: आता है कि जो कहते नहीं, हर किसी के जीवन में खुशी का इंतजार होता है, और
2: बाकी मैं खुशी आ रही हूँ।
1: और गम कहते नहीं, गम तो आज तक मैंने किसी का नाम नहीं सुना होगा, शायद कि गम किसी का नाम हो, गम के पास
2: खुशी
1: नहीं चाहता,
2: और खुशी के पास सब जाना चाहते हैं।
1: और खुशी जी अब आपसे हम इजाजत मिलेंगे क्योंकि हम काम में थोड़ा बिजी हैं, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा खुशी जी।
0: थैंक यू सो मच सर, एंड सेम पिंच, नाइस टॉकिंग टू यू, अपना ख्याल रखिएगा। और शबनम जी, आपने बताया नहीं है कि गाना कौन सा सुनेंगी आप, बस मुस्कुराए जा रही हैं।
2: फिल्म का नाम है जुदाई।
0: हाँ जी,
2: दीदी फिल्म का नाम है जुदाई, और गाने के बोल हैं मैं तुझसे ऐसे मिलूं।
0: अच्छा ठीक है, सुनवा देते हैं गाना। ठीक है मैम, थैंक यू कॉल करने के लिए। जी देव सर,
1: जी हम कहना चाहेंगे कि ये गाना हमारे तरफ से सभी श्रोताओं के लिए भेजे गए थे, ये थे मुरादाबाद पर, यानी रेडियो पर जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सब साथी मित्र इस गाने में शामिल हैं।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक एंड लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कहीं मत जाइएगा, हमें कॉल लगाइए। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837 8968 96।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.4। खुशी है आपके साथ। और देखिए, समय हुआ है 4:05, अपनी घड़ियां मिला लीजिए। और हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना नाम बताइएगा आप।
1: मैम, जिला रामपुर, ग्राम जहांगीरपुर से आपका नीम सौदा मोहम्मद इशरत आप बात कर रहा हूँ। कैसी हो आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ इशरत जी, आप बताइएगा।
1: जी मैम, बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छे हो जाते हैं। मैम, प्रोग्राम सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था काफी, सोचा कॉल लगा लिया। मैम कॉल लग गई, अच्छा लग रहा आपसे बात करके।
0: जी आप तो बहुत जल्दी कॉल लगाते हो, बस कार्यक्रम शुरू ही होता कि आपके कॉल शुरू हो जाते हैं।
1: मैम एक प्रोग्राम में 10 कॉल लगा।
0: वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे ही 3 बजते हैं, पता नहीं आपको नींद आती है नहीं आती, आई डोंट नो। लेकिन
1: मुरादाबाद।
0: अच्छा, तो मतलब आप पूरे दिन एफएम नहीं सुनते हो?
1: मैम मैं सुनता हूँ सुबह के 10 से 12 और 3 से 5 और रात को 9 से 10।
0: ओके, आप मुझे लगता है कि आपको फोन इन कार्यक्रम ज्यादा पसंद है, ऐसा है?
1: मैम बिल्कुल।
0: ओके, ये कार्यक्रम क्यों पसंद है आपको, बताइए रीजन।
1: मैम ऐसा है, प्रोग्राम जो आप पेश करती हो मैसेज के दायरे के सुबह में, यानी के 10 से 12, वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं मैसेज करता हूँ, सुनता भी हूँ, मुझे सभी अच्छे लगते हैं मैम।
0: ओके, तो बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम आज मूवी का नाम है इम्तिहान। मैम बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे। मैम आज के अलग फरमाइश में यारा सॉन्ग प्ले कर देना, कुछ सुनने वाले हैं
0: जी, बताइएगा।
1: मैम सबसे पहले ये है स्वार्थ से विजय राठौर और बीबी फोर्ट से मकसूद भाई, साथ में परम।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना। शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: थैंक यू। नमस्कार,
0: मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं इशरत जी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद आते हैं अभी लौट कर।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना इम्तिहान मूवी का ही प्यारा से गाना, विनोद राठौर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, और म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी। फैज अनवर जी का उन्होंने इस गीत को लिखा था, बहुत ही खूबसूरत गाना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत अच्छे दीदी, आज हमारे इधर बारिश बहुत अच्छी हुई है दीदी। आज रात के 12 बजे से लेके अभी तक बारिश हुई, आज नदी नाले सब उफान पर रहे दीदी।
0: अच्छा, तो अभी बारिश बंद हो गई या अभी कंटिन्यू है?
1: हाँ दीदी, अभी 1 घंटे से बंद हुई है।
0: अच्छा, 1 घंटे से बंद हो गई है। जी बताइए, कैसे हो आप, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: दीदी फिल्म का नाम है शिव महिमा और गाने के बोले चल रहे कावड़िया शिव के धाम। और जो अभी दोस्त लाइव सुन रहे हैं, सभी दोस्तों को डेडिकेट रहेगा दीदी।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको सावन के पावन महीने में। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मजा आएगा।

0: मेरी मेरी माँ है न्यारी सबकी नैया तूने तारी तुझे माने दुनिया सारी बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले बोल बम बम बम बम बोले।
1: दादू

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी शुभ महिमा से। हरिहरन जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: जय श्री राम।
0: क्या नाम है आपका?
1: मैं गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी, रेगुलर आपके मैसेज तो आते हैं, आज फाइनली बात भी हो रही है। बताइएगा कैसा लग रहा है आज आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, कुछ कह नहीं सकते, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
0: अच्छा, शब्द ही गायब हो गए हैं। हाँ,
1: शब्द ही गायब, कम हो पड़ गए।
0: अच्छा, तो मतलब आपने सोच के रखा था कि आज कॉल लगाना है या फिर रैंडमली आपने ट्राई किया?
1: कोशिश तो रोज ही करते हैं मैम, मगर ये कि आज किस्मत साथ देगी जो आपसे बात होगी।
0: अच्छा, ओके। आपकी मेहनत भी है और लक ने भी साथ दिया, राइट?
1: जी।
0: और बताइएगा कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: बस सब बढ़िया हैं, ऊपर वाले का करम है।
0: जी बिल्कुल, बताइएगा आज गौरव सर क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम मुझे गाना सुनना है जो तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: ओके, और ये ब्यूटीफुल ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप? कौन है वो जो आपका दिल ले गई है चुनरिया वाली?
1: चुनरिया वाली दिल ले गई, वो तो घर पे है हमारे।
0: ओके मैम, भी सुन रही होंगी आपको।
1: बाकी जितने लोग सुनने वाले हैं वो सभी से प्यार करते हैं, पूरी एफएम टीम से प्यार करते हैं।
0: जी, ऐसा होना भी चाहिए सर, क्योंकि एफएम जितने भी श्रोता सुनते हैं वो सब एक परिवार ही तो है। और जी, जब अपनी फैमिली में होते हैं तो हम सभी से प्यार करते हैं, राइट? हाँ जी, तो अच्छा लगा आपसे गौरव जी बात करके। सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको। मोस्ट वेलकम। तो चलिए गौरव जी की पसंद पर सुनते हैं ये शानदार गाना, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। जल्दी से कॉल लगाइए आप, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है आरजी खुशी आपके अपने पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, तेरी चुनरिया दिल ले गई, हेलो ब्रदर, फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से. एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था कुमार सानू और साथ में अलका याग्निक जी ने. तो अभी हम करने वाले हैं अगले कॉलर से बातचीत. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर, नमस्कार, अपना नाम बताइएगा.
1: नमस्ते मैडम जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमद्री तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे मैडम जी.
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, खेत में थे अभी जा रहे घर को. आप
0: अच्छा,
1: 4 बज रहे को आ रहे आप?
0: चार नहीं बजने वाले, अब 4:30 बज चुके हैं, 4:32.
1: हाँ जी, बहुत भूख लगी है ना, दिन भर रोटी नहीं है, दिन घर को रोटी है, भैंसों के पीछे रोटी नहीं लाते तो भूख लगी आप जा रहे.
0: अच्छा अच्छा, तो खाना आप लाया कीजिए ना, आपको पता है कि टाइम लग जाता है.
1: वो क्या है, वो की आदत से गिरी है मैडम जी, 2:30 बजे कुछ भूख नहीं लगती, कुछ नहीं, मेल थोड़ी देर होती है, कभी कम ज्यादा, कभी जल्दी भी आते. आज थोड़ी देर हो गई
0: जी. बताइएगा क्या सुनना चाहेंगे सर आप?
1: बॉर्डर का है जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो जरा ठहरो.
0: ओके ठीक है सर,
1: की आवाज है,
0: सुनवाते हैं गीत आपको. धन्यवाद कॉल करने के लिए.
1: धन्यवाद मैडम जी.
0: जी तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक. हम भी यही कहते हैं वक्त को कि थोड़ा सा ठहर जाओ, लेकिन वक्त बहुत स्पीड में चलता है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी हमें कॉल लगा लीजिएगा. मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837898986.

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और मुझे पता है अभी आप ऑन द वे कार में हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक में भी है ना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी ट्रैफिक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा बट आप घर पहुंच जाएंगे सेफली। एंड इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए एंड केयरफुली गाड़ी चलाइए, ठीक है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: अनु पांडे, गोंडा से।
0: अनु पांडे गोंडा से बात कर रही हैं, बताइए अनु कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस आप बताइए आप कैसे हो?
0: आई एम फाइन एंड हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, सारे प्रेजेंटर्स। आप बताएगा गोंडा का मौसम कैसा है?
1: गोंडा का मौसम तो अभी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हल्की हल्की सी धूप है, हल्की बदली है।
0: ओके, तो आपको सावन की दूसरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
0: आज व्रत रखा है आपने?
1: मैंने नहीं रखा, मम्मी और सिस्टर ने रखा है।
0: अच्छा, आप छोटे हो घर में?
1: नहीं, हम तो सिस्टर में बड़े हैं।
0: अच्छा, सिस्टर में बड़े हो। ओके,
1: तो लेकिन पूजा तो क्या था, मंदिर गई थी, व्रत नहीं रखा है आज।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताइएगा आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया, कैसे लग रहे हैं अनु?
1: आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है मुझको।
0: थैंक यू सो मच। आपने फर्स्ट टाइम सुना खुशी को, राइट?
1: हाँ, फर्स्ट टाइम सुना और आपसे मुझे जोड़ा है भगवान की परमार और अपने अकेले।
0: हाँ जी, उनका कॉल भी आया था, आई रिमेम्बर, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही।
1: हाँ, अभी हम थोड़ा काम कर रहे थे, अभी पता है कि नंबर मैंने लिया, फिर हमने कहा अभी नंबर दो, अभी हम भी जुड़ेंगे आज।
0: अरे वाह, तो आपने कॉल किया, देखिए कॉल लग गया है, कैसे लग रहे हैं अनु पहले ये बताओ हमें।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज तो जुड़ के इधर। आज का दिन समझ लो मेरे लिए बहुत लकी दिन है।
0: हाँ, और आप पूरे दिन यही सोचते रहेंगे, अब नाइट में भी आज मेरा कॉल लगा था एफएम मुरादाबाद में, पता है मेरी बात हुई थी वहाँ पर, ऐसा ना?
1: हाँ, तो मैं भी बताएंगे, फिर बताएंगे और ये भी बताएंगे, वहाँ जो मैम थे ना उनका नाम खुशी और एकदम वो खुशी जैसे भी है, एकदम आवाज सुन के खुश हो जाते हैं जो लोग उनकी आवाज सुनते हैं।
0: थैंक यू सो मच। आप बताओ अनु, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मुझे गाना सुनना है तेरे नाम मूवी से, तुमसे मिलना बातें करना, और ये गाना स्पेशली आपके लिए है, बाकी जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए।
0: थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा ट्रैक मेरे को डेडिकेट किया, वैसे मुझे ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है।
1: पता है ना, हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा तो हमने सोचा आज हम ये गाना सुनेंगे कि आपसे बातें करना, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, क्या है क्यों है क्या खबर, हाँ मगर फिर भी बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, आपने बातों बातों में इतने प्यारे से गाने को भी जाहिर कर दिया है, तो चलिए सुनवा देते हैं अनु, अपना ख्याल रखना एंड यूं ही मुस्कुराती रहो आप।
1: आपकी आवाज जब भी याद करूंगी ना तो मैं भी मुस्कुराना चाहूंगी, टेंशन में रहूंगी तो भी मुस्कान आ जाएगी।
0: हाँ,
1: आज एक हमको बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है और उनकी आवाज भी, वॉइस भी बहुत अच्छी है और बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू सो मच अनु पांडे, आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है और आप भी मुस्कुराती हुई बहुत क्यूट लग रही हैं, ऐसे ही मुस्कुराती रहा कीजिए।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर।
1: ओके, बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं अनु पांडे जी की रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा ट्रैक, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्यों है ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं शानदार सा ट्रैक उदित नारायण जी की बहुत प्यारी सी आवाज में, बहुत प्यारा सा गाना। मैं बस अभी वापस आती हूँ, आप कहीं मत जाइए और मुझे पता है कि आप भी ट्राई कर रहे हैं, तो वैसे ही ट्राई करते रहिए, आपका कॉल भी लग जाएगा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन्स वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड इवनिंग टू माय ऑल एवरी लिसनर्स, वेलकम मी आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी नटखट सी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी तेरी नाम, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक उदित नारायण साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। लिरिक्स थे समीर जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया जी। और बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से आज अफार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आपके और आपके स्टूडियो में क्या हाल?
0: जी सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं, आप बताइएगा आपके वहाँ सब खैरियत से है ना?
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है।
0: जी मौसम अच्छा ही होना चाहिए, बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप सब?
1: मूवी का नाम है पुरानी वाली मजबूर।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोल हैं, देख सकता हूँ कुछ होते हुए, दे नहीं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है किशोर कुमार जी की आवाज में।
1: जी कुछ सुनने वालों के नाम
0: जी बताइएगा।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, शहनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रईसुल अंसारी, शानूर अंसारी, मकसूद हुसैन, शारिक अली, इरशाद अली, लाल मोहम्मद अंसारी, यही सब सुनना चाहिए।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं सर की पसंद का ये शानदार से गाना, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी कॉल लगाइए, आपके पास ये मौका है अभी।

0: तो दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज में, और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो हमेशा मुस्कुराएं, उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आए बिना परेशानी तो वो जल्दी ही दूर हो जाए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर अपना नाम बताएगा?
1: मैडम जी नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, नाम बताएगा अपना?
1: मैं जिला मुरादाबाद चुराहा गोविंदपुर खुर्द से राजा हुसैन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, और कैसी आप, कैसे हो खुशी मैम?
0: हाँ जी मैं ठीक हूँ सर, बताएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: फिल्म रहेगी रात गाने की बोल रहे हैं, मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो, इस तरह से बोले मैम।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं गाना। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राज, उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा गाना, और इसी गाने के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। साथ में उदित नारायण जी के शारिका कपूर भी दे रही हैं साथ, और मैं अभी चलती हूँ, लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 से 12। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, एंड मुस्कुराने के साथ साथ अपना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब परिवार खुश होता है ना, तो अपने चेहरे पर ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है ना? तो बस सभी का ख्याल रखूं, बाकी खुश रहो, जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा बेस्ट होगा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: कभी कभी बदलाव की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, ना उनमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कोई चमकदार मंच, बस एक परिवार होता है, कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों के बीच एक मदद का हाथ।
1: किसी के लिए वह मदद बनती है एक सुरक्षित छत, किसी के लिए परिवार के भोजन का सहारा और किसी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर जिंदगी में बदलाव की वजह बने।
1: आज विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर चल रहे हैं देवरिया, जहां हम सुनेंगे विकास की कोई बड़ी घोषणा नहीं बल्कि एक आम इंसान की अपनी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसके जीवन में बदलाव आया है।
0: हमारी मुलाकात एक ऐसे लाभार्थी से है जिन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच सरकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है। अब कहानी हमारी नहीं, उनकी अपनी जुबानी।
1: आज हम उपस्थित हैं देवरिया के अगस्त पार्क गांव में और यहां पर हम लोग ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो किन लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाएं, तो हमारे साथ एक ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: चंद्रिका प्रसाद।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अगस्त पास पश्चिम तरफ।
1: जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही है और विकलांगता के आधार पर आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: हमको यही विकलांगता के आधार पे आवास मिला है सरकार की तरफ से
1: जी,
2: अभी बनना थोड़ा बाकी है, छत लगाना है
1: जी,
2: और ये मिला है
1: जी। ये कब मिला आपको?
2: अभी हो गया 2-4-5 महीने हो गया
1: जी। अभी हम लोग देख सकते हैं इसका ढलैया कराना, लिंटर कराना बाकी है।
2: बाकी है
1: जी,
2: अब कराएंगे इसको ढलैया, अभी 1-2 महीने में करा देंगे
1: जी। इसके अलावा और कौन कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं आप?
2: हाँ, राशन कार्ड में है नाम है, राशन मिलता है
1: जी। तो आपको आवास मिला हुआ है और राशन कार्ड बना हुआ है जिसके तहत आपको राशन मिल रहा है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा है आपके लिए?
2: सरकार को धन्यवाद देना चाहूँ, अच्छा है, मिल रहा है राशन, नहीं तो पहले नहीं मिलता था
1: जी,
2: बढ़िया है, मिल रहा है, अभी क्या करेंगे।
1: पहले क्या दिक्कत होती थी घर नहीं बनने से?
2: पहले दिक्कत थी घर नहीं बनना तो कहाँ रहेंगे, मड़ई टाटू में रहते थे और क्या
1: जी,
2: जैसे मड़ई टाटू में जी रहे थे और कुछ
1: जी। और ये राशन मिलने से क्या फायदा?
2: राशन मिलने से क्या फायदा, रोटी रोजी पेट भरता है और क्या है। पहले दिक्कत बहुत थी, बहुत दिक्कत बोले तो दिक्कत, रोजगार नहीं कुछ नहीं तो क्या करेंगे।
1: तो अभी आपने देखा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, इसके तहत हम लोग अगस्त पार गाँव में पहुंचे हुए थे और यहाँ पे इन भैया से हम लोग ने जाना कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले रहे हैं ये, जो विकलांगता के आधार पर मिला हुआ है और पेंशन भी मिल रहा है और राशन कार्ड के तहत इनको राशन भी मिल रहा है, तो इन सभी योजनाओं

0: का ये लाभ ले रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
1: किसी कहानी में सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वह कहानी खुद उसी इंसान की आवाज में सुनाई दे जिसने उसे जिया है, और यही वजह है कि लाभार्थी की आवाज किसी भी सरकारी योजना का सबसे मानवीय चेहरा बन जाती है।
2: दिव्यांग जन के लिए सहायता केवल आर्थिक मदद का विषय नहीं, ये उनके जीवन में सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भरता की संभावना से भी जुड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जन के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, और जब ये सहायता किसी जरूरतमंद तक पहुंचती है तो उसके मायने सिर्फ एक सरकारी लाभ तक सीमित नहीं रहते।
1: लेकिन किसी योजना का लाभ जमीन पर कैसे पहुंचता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, लाभार्थियों तक पहुंचने में प्रशासन की क्या भूमिका है, और पात्र व्यक्ति अगर अभी तक योजना से नहीं जुड़ा है तो वो क्या करे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं देवरिया के जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह से।
3: सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक गणराज्य, अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा में खाने पीने रहने और विकास के लिए सभी को समान और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा आप देखेंगे ICDS डिपार्टमेंट द्वारा पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, और लोग बेशक हो जाते हैं तो उनके लिए मनरेगा है, आवास दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जा रहा है, और भी जैसे कृषि सम्मान निधि है, कामधेनु योजना है, नंदनी योजना है जिसके लाभ उठा के लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। अब जैसे जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका अप्रत्यक्ष लाभ आप देखेंगे लोगों के रोजगार में मिलता है। जैसे आप कोई व्यक्ति आवास बनाता है, लगभग 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, शहरी क्षेत्र में यह धनराशि 2 लाख रुपये से अधिक हो जाती है। तो आप देखेंगे तो उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है, छड़ की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है और मजदूर की जरूरत पड़ती है। तो इन कार्यों के लिए और सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार अपने नागरिकों के लिए हर एक विकास के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है। बस देवरिया के लोगों को आपका सहयोग चाहिए प्रशासन के साथ। आप कोई भी समस्या हो जो जायज हो, और यदि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटा हो, तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने वार्ड मेंबर से, EO से, BDO से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, वहां उचित जानकारी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि आप अपना सशक्तिकरण कर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।
2: सोचिए एक परिवार के लिए अपना घर क्या होता है, सिर्फ ईंट, सीमेंट और 4 दीवारें? नहीं, घर होता है सुरक्षा, घर होता है सुकून, और सबसे बढ़कर अपने होने का एहसास।
1: इसी सोच के साथ पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास योजना जैसी पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां जरूरतमंद परिवारों को पक्के और सुरक्षित आवास की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
2: और जब किसी परिवार को अपने घर का सहारा मिलता है तो उसके साथ बदलती है उस परिवार की उम्मीद।
1: हमारे साथ मौजूद लाभार्थियों की कहानी में भी आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में।
0: नमस्कार, मैं हूँ हेमा। आज हम उपस्थित हैं देवरिया के महाराजपुर गांव में और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस महाराजपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ एक भैया उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
4: जितेंद्र
0: जी, कौन से गांव से हैं?
4: महाराजपुर गांव से।
0: जी, आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है?
4: एक घर मिला है, हमारी पेंशन आता है सरकार की तरफ से।
0: राशन कार्ड में आपका नाम है क्या?
4: जी
0: जी। और जॉब कार्ड भी है?
4: जॉब कार्ड भी है
0: जी। अच्छा, घर बनने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
4: घर बनने से हमको बहुत लाभ मिल गया है, अरे आराम मिलता है, मतलब हमारा घर बहुत अच्छा बन गया है, नहीं तो हम लोग पलान में रहते थे।
0: जी जी। विकलांग के आधार पर आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
4: पहले स्थिति थी कि हम लोग बारिश से भीग जाते थे, रहने का कोई सुविधा नहीं था, तो अब सरकार द्वारा मिला है
0: जी।
4: अब हमारा घर बन गया, अब घर में हम रहते हैं
0: जी। और राशन कार्ड में भी आपका नाम है?
4: जी नाम है। सरकार की तरफ से काम भी मिलता है तो पापा हमारे करते हैं।
0: अच्छा, सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो पहले जो है क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हुए हैं?
4: पहले हम लोग के पास गरीबी था, अब सरकार की तरफ से मिलता है तो थोड़ा हम लोग खा पी लेते हैं
0: जी। अब अच्छी स्थिति हो गई
4: है? अच्छी स्थिति हो गई है मुख्यमंत्री योजना के लिए
0: जी। अच्छा, आपके गांव में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उन लोग को क्या बताएंगे?
4: हम यही बतलाएंगे कि कागज पत्र बनवा लीजिए और जाकर भर दीजिए, मिल जाएगा आप लोग को भी। जैसे हमको मिला है, हमको रहने के लिए सुविधा मिला है, हम उन लोग को भी बतलाएंगे जाकर
0: जी। इन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
4: सबसे ज्यादा जोगी जी को धन्यवाद देंगे। और हमको पहले अनाज उनाज खरीदना पड़ता था, राशन खरीदना पड़ता था, अब उतना नहीं खरीदना पड़ता है, सब्जी उब्जी खाली खरीद कर खाते हैं हम लोग। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, हमारे जैसे विकलांग आदमी को लोग सुविधा दिए हैं।
0: तो अभी आपने देखा कि हम लोग देवरिया के महाराजपुर गांव में आए हुए हैं और भैया से बातचीत हुई और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया और क्या क्या योजना का लाभ इनको मिल रहा है, जैसे कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना जो विकलांगता के तहत मिला हुआ है और इनका राशन कार्ड है और जॉब कार्ड बना हुआ है, तो इन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और ये बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये जो हम लोग कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए थे और भैया के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी योजनाओं का ये लाभ उठा रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
2: किसी के लिए पक्का घर शायद हमारे लिए सामान्य बात हो, लेकिन जिस परिवार ने वर्षों तक असुरक्षा या अभाव के बीच जीवन बिताया हो, उसके लिए अपना घर मिलना एक नई शुरुआत जैसा होता है।
1: और यही वह जगह है जहां सरकारी योजना और आम नागरिक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती हैं। विकास की एक और बुनियादी जरूरत है भोजन, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली चिंता होती है घर की रसोई चलती रहे।
2: इस दिशा में राशन कार्ड पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सरकार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के जरिए पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
1: और इस योजना का महत्व शायद वही बेहतर समझ सकता है जिसके घर की रसोई तक इसका सीधा असर पहुँचता है।
2: एक कार्ड एक व्यवस्था, लेकिन किसी परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी सहारा।
1: और यही वजह है कि विकास को केवल बड़े निर्माण कार्यों से नहीं बल्कि इस बात से भी समझना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम परिवार के जीवन में कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंच रहा है।
2: दिव्यांग जन की सहायता हो, आवास का सहारा हो या फिर राशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, इन सभी योजनाओं के पीछे एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है, जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना।
1: उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने, उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
2: और इन योजनाओं की सबसे खूबसूरत तस्वीर किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि लाभार्थी के चेहरे पर दिखाई देती है। किसी के लिए सरकार की योजना एक सुविधा है, लेकिन किसी और के लिए वही सुविधा जिंदगी का सहारा बन जाती है। एक घर, एक राशन कार्ड, एक सहायता, सुनने में शायद छोटी चीजें लगे, लेकिन जब यही छोटी छोटी मदद किसी परिवार की जरूरत पूरी करती है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है।
1: किसी के लिए यह आत्मसम्मान की ओर एक कदम है, किसी के लिए सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है और किसी के लिए मुश्किल वक्त में मिला एक जरूरी सहारा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य इसी तरह समाज के जरूरतमंद वर्गों को योजनाओं से जोड़ना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना है।
1: और विकास की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी कहानी किसी एक की नहीं होती, हर लाभार्थी के साथ इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है।
2: आज देवरिया से सुनाई गई ये आवाजें हमें यही याद दिलाती है कि विकास तब पूरा होता है जब उसका लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
1: और जब किसी की जिंदगी में सरकारी योजना एक नई उम्मीद जगाती है तो वह सिर्फ एक लाभार्थी नहीं रहता, वह विकास की कहानी का हिस्सा बन जाता है।
2: इन्हीं कहानियों को आपके सामने लाता रहेगा
1: आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: मैं हूं आपका सुमंत कुमार।
1: और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हेमा।
2: मिलते हैं फिर विकास की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने भोलेनाथ जी का भजन एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:24 हो चुके हैं आज रीना के साथ आप कनेक्ट इवनिंग मस्ती शो में, और समय हो चुका है यानी कि 5:24 श्रोताओं। तो अब आज रीना आप सभी के साथ यानी कि 2 घंटे के लिए कनेक्ट हो गई हैं, जहां पर करने वाली है ढेर सारी बात। और आज सावन का दूसरा सोमवार है और आप सभी को दूसरे सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ कल है महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि की भी आप सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं और भोले बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। या कल का जो सड़कों पर रश होगा ना, वो मतलब देखने के लायक होगा, इतनी भीड़ होगी। साथ ही साथ मंदिरों की जो यात्रा है सुबह 4-3 बजे से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जल अभिषेक करने के लिए जो कांवड़िए हैं वो कल मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। और कल का जो नजारा है ना, वो एक अलग ही अद्भुत होने वाला है, बड़ा सुंदर बड़ा ही खूबसूरत नजारा होने वाला है कल का। तो कल मतलब मंदिर जरूर जाइए, अगर आप आज नहीं गए तो अगर आप चाहते कि भैया वो नजारा हमें देखना है तो कल जरूर विजिट करिए मंदिर और कांवड़ियों की सेवा जरूर करिए। और आज हम बात करेंगे क्योंकि आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त को क्या स्पेशल डे मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे श्रोताओं, और क्या खास चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बस आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन FM 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेदर भी आज का ओहो क्या बात है, देखिए गर्मी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है ना, उसका अलग ही अनुभूति है, अलग ही आनंद है। सो चलिए यानी कि टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं मुरादाबाद की, तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं और करेंगे आप सभी के साथ ढेर सारी बातें। फिलहाल ये गाना बहुत ही शानदार है, एकदम झकास वाला। तो इस गाने को सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: का जादू। आय हाय, हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में आज रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 5:32 हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं जरा लोकल फॉर वोकल के बारे में, यानी कि अपने मुरादाबाद शहर के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है।
1: सारी कट जानी है मैं ता तेरे नाल,
0: क्योंकि मुरादाबाद में देखिए आज सावन का देखिए दूसरा सोमवार है, साथ ही साथ बच्चों की जो छुट्टियां है यानी कि कल तक घोषित कर दी गई हैं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, यानी कि बच्चों की छुट्टियां आज से ही कल तक छुट्टियां ही रहेंगी, और साथ ही साथ 12 अगस्त को उनकी फिर से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। वो इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि कल और आज का जो मतलब कल जो इतना रस रहने वाला है ना सड़कों पर कि भाई साहब कुछ कह ही नहीं सकते। साथ ही साथ एक तरफ की जो सड़कें हैं सिर्फ और सिर्फ कांवरियों के लिए होगा, और दूसरी तरफ जो हम सब हैं इनके लिए है, ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, और दूसरे की मतलब उधर से कोई और जाए जिनको ट्रैफिक में आने जाने से रुकावट ना हो, इसीलिए एक जो दो सड़क सड़क एक साइड यानी कि कांवड़ियों के लिए, दूसरे साइड यानी कि आम जनता के लिए है, आप आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन कल का जो रस रहने वाला है ना बहुत ज्यादा रहने वाला है, इसी के चलते यानी कि मुरादाबाद में भी आज और कल बच्चों की जो छुट्टियां है वो घोषित कर दी गई है। तो भाई देखो सच में जब स्कूल के टाइम जब पढ़ते थे हम तो यही सोचते कि भाई छुट्टी होनी चाहिए कांवड़ के टाइम ना, क्योंकि हम कांवड़ियों को बड़े प्यार से देखते थे कि वाह क्या भगवा कलर में ऊपर से कांवड़ लेकर बम हर हर महादेव बम भोले का नारा लगाते हुए जो पूरी गली में ना मतलब सुबह से इतनी गूंज मच जाती है ना कि बस कानों में एक अलग ही स्वर्ग सा मतलब ऐसा लगता है कि क्या मधुर आवाज कानों के अंदर जाती है। और साथ ही साथ भोले बाबा के जो गाने होते हैं वो भी अनोखे ही होते हैं। तो देखिए आज शाम को भी आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, कल की तो बात ही छोड़िए, कल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो अभी ऑन द वे है आप और कहीं पर आप ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9823789689। और बच्चों की भैया बल्ले बल्ले हो जाती है सच में, क्योंकि जब सुबह मंदिर जाओ ना तो उनकी भी जिद होती है कि मम्मी पापा हम भी चलेंगे आपके साथ मंदिर के लिए, मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और जब छुट्टी हो तो और ही अलग ही मजा आ जाता है कि वाह छुट्टी है, ना कोई डांट ना कुछ ना होमवर्क, बस आराम से एंजॉय करो। तो चलिए श्रोताओ एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के साथ और फिर करेंगे ढेर सारी बातें।

0: not be good looking, I may not be too quick. I know I laugh funnily. In fact, I am a bit of a dick. And nothing ever will change it if you be mine forevermore. Like Beckham, I will bend it.
1: हेलो हेलो जी, फलक तक तो साथ चलेंगे ही चलेंगे. अगर जब आप सफर में हैं और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सच बताओ इन गानों का भी आपको अलग ही आनंद, अलग ही अनुभूति होगी, अलग ही मजा आएगा. और आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की बात करूं तो 5:39 हो चुके हैं और इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्टेड. और अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई के बारे में. यानी कि पहले ये कहा जा रहा था कि यूपीआई से अगर 2000 से आप ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको उसके लिए पेमेंट यानी कि अलग से पैसे लगने वाले थे. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. आप चाहे 2000 से ऊपर के पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं कटने वाला है. चाहे वो दुकानदार है, छोटे छोटे शॉपकीपर है, सब्जी बेचने वाले हैं, जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 2000 तक पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे. आप बिंदास होकर, बेधड़क होकर पैसे पेमेंट यानी कि कर सकते हैं. क्योंकि हम पहले यही सुन रहे थे काफी दिन पहले कि अब अलग से पैसे लगेंगे अगर आप 2000 से ज्यादा पेमेंट करते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. बिंदास होकर, बेधड़क होकर पेमेंट करिए और यूं ही एंजॉय करते रहिए. क्योंकि हम सब है आप सभी तक अपडेट पहुंचाने के लिए श्रोताओं. लेकिन उसके लिए आपको देखिए आरजे रीना के साथ बने रहना पड़ेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, तभी आप अपडेट जान पाएंगे. साथ ही साथ बात करेंगे वेदर की, तो देखिए हम बात करेंगे साथ साथ आज का जो आज 10 अगस्त और 10 अगस्त को कौन सा डेज मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: क्या बात है जी। हेलो, गुड वाली इवनिंग है जी। आरजे रीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोता हूँ। समय की बात करूँ तो 5:48 और आज का दिन बेहद खास है। जंगल का राजा कौन है? अरे भाई, नाम सुनते ही डर कानों में गूंजने लगती है। शेर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के इस राजा को भी हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है? हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे, यानी विश्व शेर दिवस। इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों को शेरों के संरक्षण, उनकी घटती जनसंख्या और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये डे यानी कि मनाया जाता है 10 अगस्त को। क्योंकि शेर सिर्फ जंगल के शान नहीं है, बल्कि वो जंगल के राजा के साथ साथ प्रकृति की यानी कि सुरक्षा भी करता है। तो इसका मतलब है कि पूरा जंगल और उसका प्राकृतिक संतुलन और बेहद तरीके से सुरक्षित रहती है। तो ये आज वर्ल्ड लायन डे पर एक छोटा सा, देखिए, हमें संकल्प लेना चाहिए। शेर को सिर्फ तस्वीरों, फिल्मों और कहानियों में नहीं, बल्कि उसकी असली घर यानी जंगल में सुरक्षित रहने दीजिए। क्योंकि देखा जाए तो हम जंगलों को काट रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण की बात करूँ तो भाई हर किसी को सांस लेने में भी आजकल दिक्कत हो रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। और रीजन यही है कि पेड़ कटते जा रहे हैं, ऊपर से गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। जंगल के राजा से दूर रहिए। देखिए, जंगल का जो राजा है उसे दूर जरूर रहना है। उनकी दहाड़ सुनते ही रोम जो रोम होते ना खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्हें परेशान भी मत कीजिए, ठीक है जी। शेर बचेगा, जंगल बचेगा, और जंगल बचेगा तभी हमारा कल बचेगा। चलिए, फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि इनका हमारे पास क्या मैसेज आ गया है।
1: गल सुन ललारी आवे
0: हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। विकी सागर जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि गर्मी बहुत हो रही है, बारिश करवा दीजिए। रीना जी, देखिए कल तो बारिश
1: चाहिए
0: आएगी,
1: यार
0: जरूर
1: वो
0: आएगी, जरूर आएगी। फिलहाल आज भी कई राज्यों में बारिश है, तो मुरादाबाद में भी कल आई जाएगी बारिश, क्योंकि कल है शिवरात्रि। और शिवरात्रि को ऐसा ना हो कि बारिश ना आए, चाहे बूंदा बांदी हो, पर आएगी जरूर कल बारिश। और देखिए हवाएं चल रही, गर्मी है, क्या ही कह सकते हैं। हर टेम्परेचर में खुद को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ सफर को और भी आसान बनाना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि गर्मी थोड़ी सी हमें हल्की लगे, तो देखिए उसके लिए आप गाना सुनेंगे तब मजा आएगा। उसके लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपके रेडियो को, चाहे आप घर पर सुन रहे हैं, चाहे आप ट्रैफिक में हैं, चाहे आप खेत में हैं, कहीं भी हैं, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए तभी मजा आएगा। गानों के साथ साथ गर्मी भी छू मंतर हो जाएगी आपकी।
1: हौली हौली गिद्दे भी
0: और इसके
1: नच।
0: बाद हम बात करने वाले हैं, यानी कि 15 अगस्त शनिवार को है, बहुत ही नजदीक आ चुका है। 15 अगस्त पर आखिरकार क्या किया जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं।
2: Abra los ojos, open your eyes.
1: ओए हौली हौली गिद्दे भी

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: खेलों का आईना

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है।

0: विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात जी, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। मतलब ये गाने सुनकर एक अलग ही सा जुनून, एक अलग ही सा जोश भर जाता है इंसान के अंदर ना। आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। समय की बात करूं तो 6:09। सुबह के वक्त स्कूल की घंटी बजने से पहले ही गलियों में गूंजे देशभक्त के नारे, हाथों में तिरंगा और कदमों में जोश। जब नन्हे नन्हे बच्चे तिरंगा लेकर निकले और जब पूरा शहर उनके साथ एक ही नारा बोले, भारत माता की जय, तो मोहल्ला और भी जगमगा जाता। और साथ ही साथ अपने मुरादाबाद में भी, यानी कि 15 अगस्त को लेकर बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, यानी कि ये अपील कर दी गई है कि हर घर तिरंगा फहराना चाहिए। साथ ही साथ ये, यानी कि 13 अगस्त से आपने शुरू कर देना है अपने घरों पर, यानी कि तिरंगा, हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा ही प्यारा आंदोलन है, हर घर तिरंगा, यानी कि उनका अब की बार का लक्ष्य है 5 करोड़ घरों में, यानी कि तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य रखा है उन्होंने, और ये सक्सेस भी होएगा, क्योंकि अपने देश के लिए हमें, देखिए, तिरंगा भी ना फहरा सके तो फिर क्या ही। तो इसीलिए हर घर तिरंगा जरूर फहराइए और अपने देश के लिए। देखिए, उन जवानों की अगर मैं बात करूं तो जिंदगी तो असली उन्होंने जी है कि वो तो देश के लिए लड़े और मिट गए। हम क्या करते हैं, आपस में लड़कर मिट जाते हैं। उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया, लेकिन हमने लोगों के दिलों में भी अपना दर्ज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि जाने के बाद भी इंसान बस 2-3 दिन कहता है, हाँ इंसान वो अच्छा था, ये ऐसा था, ये वो, उसके बाद को भी कोई याद नहीं करता है। उन वीरों को हमेशा याद किया जाता जो देश के लिए कुर्बान हुए, आजाद कराया है देश को, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में बस एक ही भाव था कि बस कुछ भी हो जाए, यानी कि जो अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया था उसके ऊपर परेशान हो गए थे सब, और सब ने सोचा कि बस अपना देश आजाद होना चाहिए। और क्या वाकई में ही जो अंग्रेज थे वो देश में रहने आए थे? नहीं, वो एक व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार के माध्यम से वो कैसे देश पर अपना राज, अपना हुकूमत चलाने लगे, उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से 15 अगस्त को इसी शो में करने वाले हैं। ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, बताएंगे आप सभी को, यानी कि पिछले के जर्नी के बारे में याद करेंगे और साथ ही साथ उन महान वीरों को भी याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया और आज इतिहास के पन्ने में। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, महसूस करिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। आपसी लड़ाई से निकलिए, देश के लिए लड़िए, देश के लिए कुछ करिए। और चलिए इसी के साथ एक और बहुत ही प्यारा गाना, यानी कि देशभक्ति गाना है, तो इस गाने को सुनते हैं और लौट कर आते हैं श्रोताओं और करेंगे फिर ढेर सारी बातें। सच में ये गाना ना बहुत प्यारा है, ओल्ड इज गोल्ड है, सदाबहार गाने हैं, लेकिन बहुत प्यारा है। मैसेज भी आ गए हैं, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये गाना

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए ने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

इवनिंग है जी आर्जेरीना के साथ, और आप सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती शो। उस समय की बात करूं तो 6:17 हो चुके हैं और 15 अगस्त को 80 साल हो जाएंगे देश को आजाद हुए। और साथ ही साथ इस 15 अगस्त को, यानी कि पहली बार लाल किले में गूंजेगी वंदे मातरम। जी, यानी कि 15 अगस्त के मौके पर इस बार लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में यह पहली बार होगा जब लाल किले में प्राचीर से राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति दी जाएगी। इस खास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय गान के साथ साथ वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वतंत्र दिवस के जश्न में भी यानी कि ये गीत गाया जाएगा। और इसके लिए तैयारियां भाई लाल किले में सच बताऊं तो रेड फोर्ट पर यानी कि बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और साथ ही साथ आप सभी के मैसेज भी आ गए हैं, आई नो। चलिए देखते हैं आप सभी के क्या मैसेज आए हैं भैया, वो भी शामिल करना बहुत जरूरी है। तो चलिए गान देखते हैं किन क्या क्या मैसेज आए हमारे पास। और आप सभी से बस यही कहेंगे कि आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.5। हेलो रीना मैम, गज वाली इवनिंग है, क्या बात है। मॉर्निंग के जगह आप इवनिंग की जगह आपने मॉर्निंग कर दी है आज तो। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। हम बिंदास है और ये हमारे साथ ललिता जी कनेक्ट हो गई हैं नवीन नगर मुरादाबाद से। इनका कहना है कि मैडम चाय पी लीजिए। बिल्कुल पी लेंगे जी लेकिन आज फास्ट हुई है ना, बहुतों का आज फास्ट है और कल भी रहेगा और पर संडे को भी था है ना, यानी कि एकादशी, फिर सोमवार का फास्ट और कल है शिवरात्रि का भी फास्ट है ना। तो चलिए इनका कहना है कि मैम आज ये इनका कहना है कि अगर आपके छत पर कपड़े हैं तो उतार लीजिए, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और काले बादल छा गए हैं। इन्होंने फोटो भेज दिया बकायदा। और आगे कहती है मौसम बहुत अच्छा है, बाबा भोलेनाथ की जो कृपा है वो बरसने वाली है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ एफएम

सावन की फुहार है, मौसम के बहार है, आरजे रीना की आवाज में अलग ही खुशनुमा है। आए हैं बादल गरजे, बिजली चमके, झूमे पेड़ हजार, रीना मैम आपकी शायरी सुनते ही बोले पूरा शहर, वाह रीना जी क्या बात है, सावन भी आपके साथ है। जय भोले की, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर घर महादेव जी, हर घर महादेव के साथ साथ हर घर तिरंगा भी कह रही है। और इनका कहना है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, और साथ ही साथ दूसरे सोमवार की बहुत

बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी, इनका कहना है कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल हैं। गुड इवनिंग रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एफएम परिवार को दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी भाइयों, जितने भी भाइयों हैं सुनने वालों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, और भोलेनाथ का गाना सुना देना। बिल्कुल जी सुना देंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ सोनू जी, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं। रीना मैडम जी हेलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। ये देश है वीर जवानों का, ये गाना आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये गाना तो डेफिनेटली बनता है, यानी कि हमारे देश के वीरों के लिए गाना है। दौलतबाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं, समीर इनके साथ कनेक्ट होते हैं, समीर मलिक जी, रीना जी। और बहुत अच्छे गाने प्ले हो रहे हैं रेडियो पर, थैंक यू सो मच। और सभी देश के वीरों की आपने जो कहा अच्छी बातें बता रही हैं, बिल्कुल जी, वो तो हमारा फर्ज है सर आप सभी तक बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं और इसी के साथ फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करेंगे। बस बिंदास आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए आप, और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब हम जो आप सभी को गाना सुनाने वाले हैं, मेरी मिट्टी, हर होम की विश, अक्षय पाज जी की मूवी है, बीपरा की आवाज में ये गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं। इसके बाद और भी ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी के लिए, कड़क सवाल भी लेकर आना है।

क्या बात है जी। इसी के बीच हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं केसरिया मूवी से। आपने बहुत ही शानदार, आपने बेपरा की आवाज में ये गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 6:47 हो चुके हैं। गज वाली इवनिंग है आप सभी को। और इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ क्या कड़क सवाल, जो कि बहुत आसान होने वाला है, बहुत ही मतलब आपके जुबान पर है।

0: तो श्रोताओं, आज का हमारा सवाल बहुत ही आसान है। आपने बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद मुझे पता है कि आप आसानी से बता पाएंगे। यानी कि जो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत है किसने लिखा है? बस इसका आंसर देना है आपने। हमारा मैजिकल नंबर है 9823789689 896 पर आपने मैसेज करके सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है मैसेज करिए और विनर बन जाइए। चलिए फिलहाल एक और गाना के साथ साथ कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओं, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। और फिलहाल आपने थोड़ा सा सोचना है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है और मैसेज करना है। और लौट कर आते हैं इसी रेडियो स्टेशन पर।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम स्वतंत्र बंधानी, जिला उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। मैं जो खेती करती हूँ जिसमें सारे मिलेट्स है, हमारे बीमा करना इसलिए जरूरी है, जो किसान बीमा करते हैं, हम लोगों ने खुद बीमा किया है। पिछले साल हमने 40,000 प्रीमियम जमा करा और उसका हमें 4 गुना मिला।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल

0: तेज रफ्तार के साथ साथ श्रोताओं, तो देखिए कल 11 अगस्त है और 11 अगस्त को बारिश की संभावना जताई जा रही है दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी इलाकों में। तो बस एंजॉय करिए मौसम को। और कल शिवरात्रि है, भोले भंडारी की जो कृपा है वो बरसने वाली है हम सभी के ऊपर। और जैसे आज का वेदर था, कल इससे थोड़ा और कूल वेदर होगा। तो और आज का मैंने आप सभी से क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा पूछा है। देखिए समय की पूरी अपनी कगार पर है और आप सभी जितना जल्दी मैसेज भेजेंगे उतना ही मैसेज शामिल करेंगे, क्योंकि राइट आंसर आ भी चुके हैं और बहुत थोड़ा सा भी कंफ्यूज है कि भैया गाया इसने है लेकिन लिखा किसने है। अब यही पूछना है जी आपने। देखिए सिंगर तो बहुत होते हैं, हर कोई अपनी अपनी अंदाज में, हर सिंगर अपने अपने अंदाज में गाता है, लेकिन गाना गाता अलग है, लेकिन गाने गाने के साथ साथ लिखता कौन है इस गाने को। गाना तो तभी गाया जाता है ना जब इसको इसकी रचना होती है, इसकी सुंदरता को और भी सुंदर तरीके से ढाला जाता है।
1: तो फिर गाने लगे
0: तो वो आपने बताना है, यानी कि सारे जहां से अच्छा गीत है वो किसने लिखा है। सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है श्रोताओं कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है। चलिए फिलहाल गाने सुनते हैं। हाय हाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और देखिए, अभी आपके पास ना, सच बताओ तो गोल्डन चांस है ये सोचने के लिए कि आज का जो कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा है भैया, वो लिखने वाला जो सिंगर है उसका क्या नाम है। पर देखिए, थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा, अगर दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज तो भाई क्या ही कह सकते हैं, फिर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो आज मैंने आप सभी से कड़क सवाल पूछा है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है, वो आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की ही है। चलिए जी, इस गाने के बाद लौट कर आती हैं और सभी के मैसेज शामिल करते हैं। सोचिए कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है।

चलिए जी अब देखते हैं किन का हमारे पास राइट आंसर आता है। और इसी के साथ रीना लेगी आप सभी से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले प्यारी प्यारी मैसेज भी तो शामिल करने हैं जी। चलिए देखते हैं किन का हमारे पास राइट आंसर आया है, यानी कि आज का कड़क सवाल है, सॉरी जो से अच्छा ये वाला गीत है किसने लिखा है।

0: बबलू सैनी जी कनेक्ट होते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना लिखा है मोहम्मद इकबाल जी ने। ओके बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी का कहना है कि राइट आंसर होता है मोहम्मद इकबाल। यूपी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं रणवीर जेठालाल जी, और इनका कहना है कि प्रसिद्ध देशभक्ति की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, महान कवि और शायर यानी कि मोहम्मद इकबाल जी ने ये गाना 1904 में लिखा था।
1: भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ।
0: अंसार हुसैन जी का मैसेज आता है और इन

मोहम्मद इकबाल जी और साथ ही साथ ललिता जी का कहना है भैया ये तो थोड़ी कंफ्यूज हो गई हैं, क्या बात है। इनका कहना है कि सिंगर है यानी कि लता मंगेशकर जी। अब देखिए जी, हर कोई अपनी आवाज में सिंगर की तो बात ही क्या करे। मोहम्मद इकबाल जी इन्होंने बाद में बोल दिया सोच समझ कर। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारिक अली जी, गुड इवनिंग। रीना जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपके शो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और आज आप देशभक्ति गाने चला रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, थैंक यू। और राइट आंसर होता है मोहम्मद इकबाल साहब ने देशभक्ति यानी कि तराना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। रीना जी जय श्री राम। गौरव टेलर नबी नगर मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। रीना जी वेरी गुड इवनिंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हूं और जानकारी भी बहुत अच्छी अमेजिंग लग रही है, थैंक यू सो मच जी। और ये लाइनें लिखते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे बड़ी सुरक्षा विश्वास और सबसे बड़ी दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी निशुल्क है, क्या बात है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास राइट आंसर सबसे पहले पहुंचाया है, लेकिन और भी मैसेज है, उनको भी देखना जरूरी है श्रोताओं। यानी कि दीपक जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल जी ने, यानी कि सारे जहां से अच्छा जो गीत है वो लिखा है उन्होंने। साथ ही साथ बात करूं तो रूपाली जी का मैसेज आया है, इनका भी राइट आंसर आता है। अगले पूनम जी की मैसेज की बात करूं तो ये दिल्ली से कनेक्ट होती है और इनका भी राइट आंसर है। और हमारे शो के विनर होते हैं यानी कि बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट हुए थे और ये आज शो के विनर बनते हैं इवनिंग मस्ती शो के। इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत श्रोताओं, कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम जगह करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और यूं ही अपनी जिंदगी में एंजॉय करते रहिए, रोक मचाते रहिए। वंस अगेन एक बार और आप सभी को यानी कि शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। बाय बाय जी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: कभी कभी बदलाव की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, ना उनमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कोई चमकदार मंच, बस एक परिवार होता है, कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों के बीच एक मदद का हाथ।
1: किसी के लिए वह मदद बनती है एक सुरक्षित छत, किसी के लिए परिवार के भोजन का सहारा और किसी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर जिंदगी में बदलाव की वजह बने।
1: आज विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर चल रहे हैं देवरिया, जहां हम सुनेंगे विकास की कोई बड़ी घोषणा नहीं, बल्कि एक आम इंसान की अपनी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसके जीवन में बदलाव आया है।
0: हमारी मुलाकात एक ऐसे लाभार्थी से है जिन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच सरकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है। अब कहानी हमारी नहीं, उनकी अपनी जुबानी।
1: आज हम उपस्थित हैं देवरिया के अगस्त पार गांव में और यहां पर हम लोग ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो किन लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाएं, तो हमारे साथ एक ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: चंद्रिका प्रसाद।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अगस्त पास पश्चिम तरफ।
1: जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और विकलांगता के आधार पर आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: हमको यही विकलांगता के आधार पे आवास मिला है सरकार की तरफ से।
1: जी,
2: अभी बनना थोड़ा बाकी है, छत लगाना है
1: जी।
2: और ये मिला है
1: जी। ये कब मिला आपको?
2: अभी हो गया 2-4-5 महीने हो गया
1: जी। अभी हम लोग देख सकते हैं इसका ढलैया कराना, लिंटर कराना बाकी है।
2: बाकी है
1: जी,
2: अब कराएंगे इसको, ढलैया भी 1-2 महीने में करा देंगे
1: जी। इसके अलावा और कौन कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं आप?
2: राशन कार्ड में है, नाम है, राशन मिलता है
1: जी। तो आपको

0: आवास मिला हुआ है और राशन कार्ड बना हुआ है जिसके तहत आपको राशन मिल रहा है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा है आपके लिए?
1: सरकार को धन्यवाद देना चाहूँ, अच्छा है, मिल रहा है राशन, नहीं तो पहले नहीं मिलता था।
0: जी
1: सर, बढ़िया है, मिल रहा है, अभी क्या करेंगे।
0: पहले क्या दिक्कत होती थी घर नहीं बनने से?
1: पहले दिक्कत थी, घर नहीं बना तो कहाँ रहेंगे, मड़ई टाटू में रहते थे और क्या।
0: जी
1: जैसे मड़ई टाटू में जी रहे थे और कुछ।
0: जी, और ये राशन मिलने से क्या फायदा?
1: राशन मिलने से क्या फायदा, रोटी रोजी पेट भरता है और क्या है। पहले दिक्कत बहुत थी, बहुत दिक्कत बोले तो दिक्कत, रोजगार नहीं कुछ नहीं तो क्या करेंगे।
0: तो अभी आपने देखा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, इसके तहत हम लोग अगस्त पार गांव में पहुंचे हुए थे और यहां पे इन भैया से हम लोग ने जाना कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, ये जो विकलांगता के आधार पर मिला हुआ है और पेंशन भी मिल रहा है और राशन कार्ड के तहत इनको राशन भी मिल रहा है, तो इन सभी योजनाओं का ये लाभ ले रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
2: किसी कहानी में सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वह कहानी खुद उसी इंसान की आवाज में सुनाई दे जिसने उसे जिया है, और यही वजह है कि लाभार्थी की आवाज किसी भी सरकारी योजना का सबसे मानवीय चेहरा बन जाती है।
3: दिव्यांग जन के लिए सहायता केवल आर्थिक मदद का विषय नहीं, ये उनके जीवन में सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भरता की संभावना से भी जुड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, और जब ये सहायता किसी जरूरतमंद तक पहुंचती है तो उसके मायने सिर्फ एक सरकारी लाभ तक सीमित नहीं रहते।
2: लेकिन किसी योजना का लाभ जमीन पर कैसे पहुंचता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, लाभार्थियों तक पहुँचने में प्रशासन की क्या भूमिका है, और पात्र व्यक्ति अगर अभी तक योजना से नहीं जुड़ा है तो वो क्या करे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं देवरिया के जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह से।
4: सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक गणराज्य, अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा में खाने पीने रहने और विकास के लिए सभी को समान और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा आप देखेंगे ICDS डिपार्टमेंट द्वारा पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, और लोग बेशक हो जाते हैं तो उनके लिए मनरेगा है, आवास दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जा रहा है, और भी जैसे कृषि सम्मान निधि है, कामधेनु योजना है, नंदनी योजना है जिसके लाभ उठा के लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। अब जैसे जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका अप्रत्यक्ष लाभ आप देखेंगे लोगों के रोजगार में मिलता है। जैसे आप कोई व्यक्ति आवास बनाता है, लगभग 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, शहरी क्षेत्र में यह धनराशि 2 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो आप देखेंगे तो उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है, छड़ की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है और मजदूर की जरूरत पड़ती है। तो इन कार्यों के लिए और सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार अपने नागरिकों के लिए हर एक विकास के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है, बस देवरिया के लोगों को आपका सहयोग चाहिए प्रशासन के साथ। आप कोई भी समस्या हो जो जायज हो, और यदि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटा हो तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने वार्ड मेंबर से, EO से, BDO से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, वहां उचित जानकारी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि आप अपना सशक्तिकरण कर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।
3: सोचिए एक परिवार के लिए अपना घर क्या होता है, सिर्फ ईंट, सीमेंट और चार दीवारी? नहीं, घर होता है सुरक्षा, घर होता है सुकून और सबसे बढ़कर अपने होने का एहसास।
2: इसी सोच के साथ पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास योजना जैसी पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां जरूरतमंद परिवारों को पक्के और सुरक्षित आवास की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
3: और जब किसी परिवार को अपने घर का सहारा मिलता है तो उसके साथ बदलती है उस परिवार की उम्मीद।
2: हमारे साथ मौजूद लाभार्थियों की कहानी में भी आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में।
0: नमस्कार, मैं हूँ हेमा। आज हम उपस्थित हैं देवरिया के महाराजपुर गांव में और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस महाराजपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ एक भैया उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: जितेंद्र
0: जी, कौन से गांव से हैं?
5: महाराजपुर गांव से।
0: जी, आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है?
5: एक घर मिला है, हमारी सरकार की तरफ से।
0: राशन कार्ड में आपका नाम है क्या?
5: जी
0: जी। और जॉब कार्ड भी है?
5: जॉब कार्ड भी है
0: जी। अच्छा, घर बनने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: हम घर बनने से हमको बहुत लाभ मिल गया है, अरे आराम मिलता है, मतलब हमारा घर बहुत अच्छा बन गया है, नहीं तो हम लोग पलान में रहते थे।
0: जी जी। विकलांग के आधार पर आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: पहले स्थिति थी कि हम लोग बारिश से भीग जाते थे, रहने का कोई सुविधा नहीं था, तो अब सरकार द्वारा मिला है
0: जी।
5: अब हमारा घर बन गया, अब घर में हम रहते हैं
0: जी। और राशन कार्ड में भी आपका नाम है?
5: जी नाम जी। है सरकार की तरफ से काम भी मिलता है, तो पापा हमारे करते हैं।
0: अच्छा, सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो पहले जो है क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हुए हैं?
5: पहले हम लोग के पास गरीबी था, अब सरकार की तरफ से मिलता है तो थोड़ा हम लोग खा पी लेते हैं
0: जी। अब अच्छी स्थिति हो गई
5: है? अच्छी स्थिति हो गई है मुख्यमंत्री योजना के लिए
0: जी। अच्छा, आपके गांव में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उन लोग को क्या बताएंगे?
5: हम यही बतलाएंगे कि कागज पत्र बनवा लीजिए और जाकर भर दीजिए, मिल जाएगा आप लोग को भी, जैसे हमको मिला है, हमको रहने के लिए सुविधा मिला है, हम उन लोग को भी बतलाएंगे जाकर
0: जी। इन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
5: सबसे ज्यादा जोगी जी को धन्यवाद देंगे। और हमको पहले अनाज उनाज खरीदना पड़ता था, राशन खरीदना पड़ता था, अब उतना नहीं खरीदना पड़ता है, सब्जी उब्जी खाली खरीद कर खाते हैं हम लोग। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, हमारे जैसे विकलांग आदमी को लोग सुविधा दिए हैं।
0: तो अभी आपने देखा कि हम लोग देवरिया के महाराजपुर गांव में आए हुए हैं और भैया से बातचीत हुई और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया और क्या क्या योजना का लाभ इनको मिल रहा है, जैसे कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना जो विकलांगता के तहत मिला हुआ है और इनका राशन कार्ड है और जॉब कार्ड बना हुआ है, तो इन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और ये बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये जो हम लोग कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए थे और भैया के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी योजनाओं का ये लाभ उठा रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
3: किसी के लिए पक्का घर शायद हमारे लिए सामान्य बात हो, लेकिन जिस परिवार ने वर्षों तक असुरक्षा या अभाव के बीच जीवन बिताया हो, उसके लिए अपना घर मिलना एक नई शुरुआत जैसा होता है।
2: और यही वह जगह है जहां सरकारी योजना और आम नागरिक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती हैं। विकास की एक और बुनियादी जरूरत है भोजन, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली चिंता होती है घर की रसोई चलती रहे।
3: इस दिशा में राशन कार्ड पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सरकार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के जरिए पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
2: और इस योजना का महत्व शायद वही बेहतर समझ सकता है जिसके घर की रसोई तक इसका सीधा असर पहुंचता है।
3: एक कार्ड एक व्यवस्था, लेकिन किसी परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी सहारा।
2: और यही वजह है कि विकास को केवल बड़े निर्माण कार्यों से नहीं बल्कि इस बात से भी समझना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम परिवार के जीवन में कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंच रहा है।
3: दिव्यांग जन की सहायता हो, आवास का सहारा हो या फिर राशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, इन सभी योजनाओं के पीछे एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है, जरूरतमंद तक मदद पहुँचाना।
2: उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने, उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
3: और इन योजनाओं की सबसे खूबसूरत तस्वीर किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि लाभार्थी के चेहरे पर दिखाई देती है। किसी के लिए सरकार की योजना एक सुविधा है, लेकिन किसी और के लिए वही सुविधा जिंदगी का सहारा बन जाती है। एक घर, एक राशन कार्ड, एक सहायता, सुनने में शायद छोटी चीजें लगे, लेकिन जब यही छोटी छोटी मदद किसी परिवार की जरूरत पूरी करती है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है।
2: किसी के लिए यह आत्मसम्मान की ओर एक कदम है, किसी के लिए सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है और किसी के लिए मुश्किल वक्त में मिला एक जरूरी सहारा।
3: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य इसी तरह समाज के जरूरतमंद वर्गों को योजनाओं से जोड़ना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना है।
2: और विकास की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी कहानी किसी एक की नहीं होती, हर लाभार्थी के साथ इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है।
3: आज देवरिया से सुनाई गई ये आवाजें हमें यही याद दिलाती है कि विकास तब पूरा होता है जब उसका लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
2: और जब किसी की जिंदगी में सरकारी योजना एक नई उम्मीद जगाती है तो वह सिर्फ एक लाभार्थी नहीं रहता, वह विकास की कहानी का हिस्सा बन जाता है।
3: इन्हीं कहानियों को आपके सामने लाता रहेगा
2: आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: मैं हूँ आपका सुमंत कुमार।
2: और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हेमा।
3: मिलते हैं फिर विकास की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी। नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहां हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेड बाइक चलाने पर सिर्फ चालान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इन्वाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: हम भी वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है, और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है। तो लिहाजा जो है, अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18 प्लस होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18 प्लस होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए एटलीस्ट।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इशू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
0: हाँ,
1: वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो,
1: हाँ,
0: गाड़ी हो,
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन
1: पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन उसका डॉक्यूमेंट, पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है। डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चाहे स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने आप उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था। तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने, अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका डीएल है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर वो चीज ऑथेंटिक है सही है तो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है, तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दें, या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दें, इंश्योरेंस की कॉपी दें, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका डीएल बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी डीएल होना चाहिए। अगर आपने डीएल उसका नहीं बना हुआ है, पेपर आपके पूरे हैं, डीएल आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास डीएल
0: नहीं है
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते ही हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: चाहते।
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी एक मैंडेटरी है, लिहाजा आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने बोलते कि अरे 2 मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, 2 कदम पर ही जाना है।
1: 2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर ज्यादा कोई मिसहैपनिंग हो गई 2 मिनट के अंदर ही तो आप क्या करेंगे।
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया, पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो,
1: सीट बेल्ट
0: दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटीज डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग भी है, कुछ होती है, तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए। तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए
1: अनिवार्य है, सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है, तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए, आप ये सोचिए कि भाई ठीक है, मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चलान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए। जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव करना।
0: आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
1: हाँ, तो जो ई चलान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चलान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, हाँ। तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर होगी, आपका चलान कट जाएगा उसमें,
0: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
1: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चलान कट जाएगा आपका उसमें। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चलान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए कि मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
1: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, ये गंभीर अपराध है, इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअलिटी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी, उसने शराब पी रखी थी, इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
0: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है, अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको, तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं, एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
0: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है, अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए, आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
0: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
1: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस, उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
0: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
1: देखिए, बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है, पेनल्टी, वो भी पड़ सकती है, तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: था हुए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? आपके परिवार को। असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे दो कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात बहुत जरूरी है। आजकल के जो जेंजी है या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है, ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा है, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वेव में चलाते हैं। हाँ।
1: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए, वो इतनी हाई स्पीड में, ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिग-जैग गाड़ी नहीं चलानी है आपको, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते हैं ना, तो एक बार हैंड फ्री होकर चलाते हैं।
1: हाँ, तो वो सब चीजें गलत है। वो एक स्टैंड जो ये आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टैंड वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है। और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टैंड मारते
1: हैं। हाँ, ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटिल होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
1: देखिए, मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
0: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला लेंगे, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ।
1: इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
0: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
1: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक जेन्युइन से आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए। अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं कागज अवेलेबल कराइए, और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
0: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
1: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है। उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
0: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
1: देखिए, घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके, जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं। तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
0: सर, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है, क्या सीसीटीवी फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते
1: हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है, जो हमने देखा है, डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोलेंगे कि भाई मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पर डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जो जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
0: सर, डैश कैम है क्या?
1: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
0: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है।
1: हाँ पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
0: अच्छा,
1: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है, आजकल गाड़ियां ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट

0: रास्ता है ऐसा, तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
1: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे
0: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके सीसीटीवी कैमरे लगे।
2: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।

0: टीम में भी पुरस्कार पाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा कंसिडर्ड व्यू है। हम खर्चा बच्चों को एम्पावर करने में करेंगे, फुल पेज विज्ञापन में नहीं करेंगे।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण दिल्ली सरकार के प्रति महिलाओं के उत्साह और भरोसे को दिखाता है। उन्होंने पिंक सहेली कार्ड योजना पर बल देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ राजधानी की हर महिला को मिलेगा, चाहे वो मूल रूप से किसी भी राज्य की रहने वाली हो।
2: दिल्ली राज्य में रहने वाली एक एक बहन, चाहे वो किसी और राज्य की भी है परंतु दिल्ली की निवासी है, हर बहन को पिंक कार्ड मिलेगा, क्योंकि दिल्ली राज्य का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली राज्य के लोगों की सुविधाओं के लिए ही खर्च कर सकी है। तो पिंक कार्ड लगातार बन रहे हैं और दिल्ली की हर बहन के लिए है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक निजी मीडिया चैनल द्वारा आयोजित शक्ति अवार्ड 2026 में शामिल हुई। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यम से नई पहचान बना रही महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की सोच को नई दिशा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मेरठ, गाजियाबाद और जयपुर से साइबर अपराध कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर इस गिरोह से संबंधित करीब 19 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा सहित कई राज्यों से मिली हैं। इन मामलों में करीब 65 लाख रुपए की ठगी की गई है। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, करीब 52 मोबाइल फोन, 70 डेबिट कार्ड, 145 सिम कार्ड, 6 POS मशीन, 13 बैंक पासबुक और 4 लाख रुपए नकद बरामद किए। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि आरोपी विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से बिना सिम कार्ड का इस्तेमाल किए बैंक खातों तक पहुंचकर लेनदेन कर रहे थे। पुलिस इस तकनीकी पहलों की आगे जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश के बहाने लगभग 5 लाख की धोखाधड़ी कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के अंतर्गत रोहिणी क्षेत्र से लगभग 41 मामले दर्ज किए हैं और 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में अपर पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों पर रोक लगाना, सड़क पर होने वाले अपराधों को कम करना और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को जेल भेजना है।
4: ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य है अवैध हथियारों पर अंकुश लगाना, सड़क अपराध को रोकना और जो भी इलीगल गतिविधियों में शामिल हैं उनको जेल के भीतर करना। टोटल हमारी जो रिकवरी है वो 15 फायरआर्म हमने रिकवर किए हैं, 10 चाकू, 26 लाइव कार्ट्रिज, 18,000 क्वार्टर इलिसिट लिकर, 15 किलोग्राम गांजा और 800 ग्राम हेरोइन। तो हमने आर्म्स एक्ट ही नहीं, एक्साइज एक्ट के तहत भी एक्शन लिया है, NDPS एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत भी।
1: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में दिल्ली भाजपा द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। चांदनी चौक के टाउन हॉल से हौज गाजी तक निकली इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि तिरंगा भारत का सम्मान और गौरव है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि और नमन है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी।
5: ये जो तिरंगा यात्रा है ये स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: Joker.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: हालचाल है, नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आरजे आनंद के साथ मतलब अखिल भाई भी मौजूद हैं। तो अखिल भाई, हेलो हेलो, कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूं आनंद, और आप बताइए क्या?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज का ये जो सेगमेंट है बहुत अच्छा होने वाला है। जब मैं अखिल भाई के साथ आता हूं तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। आज भी हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। स्पेशल हम लेकर नहीं आए, किसी स्पेशल पर्सनालिटी को ही लेकर आए, क्यों अखिल भाई?
3: बिल्कुल सही कहा।
2: एंड आज का ये जो शो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है कि जिंदगी जीने के लिए ना बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक सही लाइफ कोच मिल जाए तो लाइफ जीने का मजा आ जाता है।
3: बिल्कुल सही कहा,
2: है ना?
3: और कोच भी ऐसा जो आपको उस वक्त पे आपका साथ दे जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत
2: है। एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है यार कि जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे साथ हो। ऐसा होता नहीं है, हम इंडियंस के साथ तो बहुत कम ऐसा होता है। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे ही कमाल के पर्सन होने वाले हैं जिनसे हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। एंटरप्रेन्योर हैं एंड लाइफ कोच हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी उनकी यू नो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो वो करते हैं, और कुछ लिखते लिखाते भी है अखिल भाई, है ना?
3: और खाते भी अच्छे हैं। सोनू निगम के भाई नहीं है मगर हैं पूरे निगम।
2: क्या बात है, जैसे मैं डांस करने में शाहरुख खान का भतीजा हूँ, वैसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो सोनू निगम के भाई नहीं है।
3: मगर
2: भतीजे मत बोलो यार, वो मेरा टैग है, चाचा भतीजा है। एनीवेज, थोड़ा भी बताओ यार अखिल भाई उनके बारे में, बाकी तो फिर हम उनको ऑन एयर करने ही वाले हैं अभी।
3: उनके बारे में मैं चाहूंगा कि उन्हीं से ज्यादा अच्छे से पता चले।
2: ये तो यार आपने बहुत अच्छा बोला है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगर किसी अच्छी पर्सनालिटी को हमने बुलाया तो उनका वार्म वेलकम करने के लिए उनसे जानना बहुत जरूरी है ना। तो आइए मुरादाबाद आपको मिलवाते हैं अमेजिंग लाइफ कोच
3: शोधम निगम जी।
2: निगम जी, क्या बात है। हेलो सर, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, कैसे हैं आप?
4: बिल्कुल बढ़िया आनंद एंड अखिल, इतनी सारी बढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज बताना चाहूंगा
2: जी, जी
4: अपने सारे मुरादाबादी भाइयों को कि मुरादाबाद मेरी ससुराल है और अरे, बहुत करीब है।
3: इन्होंने पहले ही बम फेंक दिया है, बोले भाई साहब कोई कुछ मेरे लिए कह मत देना, तुम मेरा ससुराल है ये।
4: हाँ जी, और अखिल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं।
2: अच्छा जी, क्या बात है, तो ये दोस्त को क्रेडिट देना तो बनता है
4: जी।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिल और आनंद के साथ। मुरादाबाद की जनता आपको सुन रही है, सबसे पहले अपने हालचाल जरा साझा करें हमारे सुनने वालों के साथ।
4: बिल्कुल बढ़िया हूँ, और मैं सभी मुरादाबादियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत तरक्की मिले उनके करियर में, उनके बिजनेस में, जैसा वो चाहते हैं वैसा मिले उन्हें।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, नो डाउट।
4: क्यों अखिल, गाना भी गाते हैं भाई?
2: मुझे पता लगा, वो तो डेफिनेटली आपसे फिर सुनेंगे ही,
3: जाते जाते इनसे एक आध नगमा तो जरूर।
2: एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा पुरुषोत्तम जी आपके बारे में, हमारी जनता को थोड़ा सा अपने बारे में आप प्लीज बताएं।
4: सिंपली बताऊं भाई तो बड़ा सीधा साधा जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ।
2: क्या बात है,
4: एक ही मोटिव है मेरी लाइफ का कि जो कुछ भी मैं सीखता हूँ वो मैं दूसरों को सिखा दूँ, लोगों की हेल्प करूँ। और एक मिशन लिया है मैंने अपना लाइफ टाइम, जिसमें मैं 10 मिलियन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। और मिशन आप जानते हो आजीवन होता है।
2: बिल्कुल,
4: जब सांस चलेगी तब तक किसी ना किसी की हेल्प जरूर करता रहूँ।
2: और
4: आप जैसे लोगों की इसका साथ मिल जाए उसके थ्रू ये कारवा बढ़ता रहेगा, क्योंकि अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत सारे लोग चाहिए अपने साथ।
3: जरूर जरूर,
2: बिल्कुल ऑलवेज सर। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लेते हो तो उसमें बिल्कुल बहुत मैटर करता है आपके लिए, आपके साथ वो लोग जो आपको एक टीम की तरह कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट दे, और मिलके वो चीज को किया जाए तभी वो सफलता भी मिलती है।
4: जी बिल्कुल
2: बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया एंटरप्रेन्योर, उससे भी इम्पोर्टेंट बात हमने लाइफ कोच का जिक्र किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे।
4: देखिए, मेरा मानना ये है कि इंसान जो है बहुत ही अनमोल क्रिएचर है, भगवान की जो कहते हैं ना सबसे खूबसूरत जो उन्होंने रचना करी वो इंसान की करी। इंसान करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, दुनियादारी में बहुत उलझा हुआ है, जो मैं देख पा रहा हूँ आज के टाइम पे कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, आपस में ही झगड़े कर रहे हैं, और पैसों के लिए, और कभी कभी तरक्की के लिए, कभी कभी खुशियों के लिए।
2: करेक्ट करेक्ट,
4: लोग परेशान हैं, किसी के पास बहुत पैसा है वो खुश नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए वो खुश

0: मोटिव है और इसी में मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैंने बुक भी लिखी है।
1: अरे वाह
0: जी,
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम जी, अभी तक आपने जो भी बातें बोली है बड़ी रिलेटेबल है और मुझे लगता है कि रेडियो सुनने वाला हर दूसरा इंसान अपने आप को रिलेट करेगा। एंड आई एम श्योर ये सबकी लाइफ का पार्ट है कि किसी के पास बहुत कुछ है फिर भी वो परेशान है, जिसके पास बहुत कुछ नहीं है वो भी परेशान है। अब परेशानी तो दोनों तरफ है, लेकिन अब ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन कैसे लेकर आए जो एक्चुअली उसे चाहिए।
0: एक छोटी सी टिप दूंगा।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब भी परेशान हो फोन स्विच ऑफ करिए, घर में बता दीजिए कि थोड़ी देर के लिए कोई मुझे तंग ना करे।
1: बहुत बढ़िया।
0: एक पेपर और पेन

0: वहाँ जाइए, अगर आप अपने शहर में हैं तो वहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, सोचिए अपने बारे में यार मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरा लाइफ का जो गोल है वो क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुशी देती है। अगर वो दोस्तों का साथ है पर वो नहीं मिल पा रहा है तो अपने दोस्तों को फोन करिए, उनसे बात करिए, अपना दुख साझा करिए। कई बार होता है आप अपनी पत्नी को नहीं बता पाते लेकिन अपने दोस्तों को बता देते हो।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट।
2: तो पुरुषोत्तम जी, जो आपने किताब लिखी है ले ऑफ करके,
0: हाँ जी,
2: एज अ डिजास्टर और अपॉर्चुनिटी, तो कृपया एक तो होता है ना क्या, जैसे कभी कभी एक मैसेज आ जाता है या एक मेल आ जाता है आपके पास कि नाउ यू आर लेड ऑफ, तो जैसे ये शब्द आ जाते हैं तो एकदम कहते हैं ना दूसरे बंदे की तो दुनिया हिल जाती
1: है। एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल, उसके तो रातों रात उसे दिन में तारे दिख जाते हैं।
2: हाँ, तो ये जब ये चीज होती है तो क्या किसी घटना ने आपको प्रेरित किया ऐसा कुछ लिखने के लिए, या कुछ था आपके पास, ये आपको मोटिव कहाँ से मिला कि इस तरह का जो आपने लिखा और इतना अच्छा लिखा?
0: तो बताना चाहूंगा अखिल भाई और आनंद भाई,
2: हाँ जी,
0: जो आपने बोला वो मेरे साथ 3 बार हुआ है,
2: ओके,
0: मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जितनी बार भी मेरे साथ में ले ऑफ हुआ उतनी बार फॉर श्योर कहीं ना कहीं झटका लगता है कि यार आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो कई बारी कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं केपेबल नहीं हूँ इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन 99.9% आपकी गलती नहीं होती है। कई बार ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन छटनी कर रहा है क्योंकि उसको अपने

0: मुझे अवार्ड दिया था उसी कंपनी ने मेरे को बोला कि अब आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। ध्यान से जब मैंने सोचा, क्योंकि पिछले जो 20 साल है, 20 साल में 3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हर बार पुरुषोत्तम आपने बाउंस बैक किया है, हर बार ही उस एडवर्सिटी से, उस प्रॉब्लम से आप निकले और एक उभर के निकले हर बारी, तो आपने अपने लिए जो काम किया, आपने अपने को इम्प्रूव किया और आपने अपनी हेल्प करी, तो व्हाई नॉट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से मैंने किताब लिखनी शुरू करी कि जिन लोगों का भी ले ऑफ हो रहा है उनकी मेंटल स्टेट क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है और उनको कैसे वहां से उभरना है, कैसे वो उस एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने इसीलिए टाइटल डाला ले ऑफ डिजास्टर और अपॉर्चुनिटी। आप कैसे देखते हो उसको, आप उसको डिजास्टर में देखते हो या आप उसको अपॉर्चुनिटी में देखते हो? और इस पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप सब लोग मुरादाबादी हैं तो क्रिकेट के शौकीन होंगे आई बिलीव।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
0: तो अपने एक बड़े घातक बैट्समैन हुए हैं वीरू पाजी।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: वीरू पाजी जो थे, वीरू पाजी से पूछा गया कि यार आपसे कैसे मार लो यार इन लोगों को, बॉलर्स को। टेस्ट मैच में भी आप वैसे ही खेलते हो, आप T20 भी वैसे ही खेलते हो, क्या राज है आपका? तो वीरू पाजी कहते हैं कि देखो भाई, जब टेस्ट मैच में बॉल नहीं होती है, मैं हूँ ओपनर, ठीक है, मैं बॉल को दो तरह से पुराना कर सकता हूँ, या तो मैं उसे छोड़ता जाऊँ या फिर मैं उसे पीट पीट के पुराना कर दूँ। तो उन्होंने बोला मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, आप जब टेस्ट मैच में नई बॉल खेलने आते हो तो बॉलर जो होता है स्विंग करा रहा होता है दोनों साइड, इन स्विंग आउट स्विंग, ठीक है, पीछे आपके स्लिप लगी होती है ढेर सारी, ठीक, और वो चाहते हैं कि बॉल आप मारो जिससे कि बॉल आपके बैट पे लगे और पीछे जाए, कैच हो जाओ या बोल्ड हो जाओ। वीरू पाजी ने बोला कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, आपने सारे प्लेयर पीछे लगा रखे हैं, सामने खाली छोड़ा हुआ है, मैं मारूंगा।
2: बिल्कुल सही।
0: और उन्होंने सामने मारना चालू किया और मार मार के उन्होंने जब रन बनाने शुरू किए तो बॉलर परेशान हुआ। बॉलर ने बोला यार अब तो ये सामने मारा है, अब मैं सामने लगा देता हूँ। उन्होंने जैसे ही सामने प्लेयर लगाया, उन्होंने बोला वेरी गुड, मेरे लिए अब पीछे मारने की अपॉर्चुनिटी है, अब मैं पीछे अपर कट मारूंगा। तो उन्होंने पीछे मार के उसकी पिटाई करी। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हो। नई बॉल से अगर आप डर रहे हो कि कहीं एज ना लग जाए, कैच आउट ना हो जाओ, तो आप डरते रह जाओगे। पर अगर वीरू पाजी वाला एटीट्यूड ले लोगे कि नहीं मारूंगा मैं, देखी जाएगी,
2: मैं तो फ्रंट पे आके खेलूंगा,
0: यस, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी बना लोगे। अब मैं देखो, मैंने बेस्ट सेलिंग बुक लिख ली, बेस्ट सेलर बन गई अमेजोन पे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक इंसान जिसका ले ऑफ हो जाएगा वो किताब लिख देगा और आज वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, लोगों की हेल्प करेगा। शायद एक टाइम को मैंने भी नहीं सोचा था, बट पैक लेना शुरू किया और हो गया।
2: नहीं नहीं, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि क्या कहते हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं या फिर उसे आप ऐसी छोड़ से डर के आप पीछे हट जा रहे हैं। तो इसी के साथ एक दूसरा सवाल और है हमारे साथ आपके लिए कि ये है कि ये जो आपने किताब लिखी थी, या क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी नौकरी चली गई है, या हर वर्किंग प्रोफेशनल को भी इसे पढ़ना चाहिए?
0: ये किताब हर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, इवन स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें एक चैप्टर मैंने डाला है कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। अगर आप किसी बीमारी को, किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करते जाते हैं तो वो बढ़ती जाती है।
1: करेक्ट करेक्ट राइट,
0: है ना। तो ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ को, अपने करियर को संवारना चाहता है। अगर प्रॉब्लम में है, ले ऑफ होने वाला है या ले ऑफ हो चुका है, तो भी पढ़ ले। और गारंटी है मेरी इस बात की, जिसको जिसको मैंने किताब दी है, किताब खत्म होने से पहले उसकी नौकरी लग गई है।
2: क्या बात है साहब, तो ये तो मैं सोच रहा हूं।
1: अखिल भाई और मैं प्लान कर रहे हैं कि इस किताब को हमें पढ़ लेना चाहिए और खरीद लेना चाहिए, अखिल भाई, है ना। और मुझे लगता है कि हमारा भी लक काम कर जाए।
2: नहीं, तुम इस पे वो वाला गाना चला सकते हो, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर
1: ये जो पुरुषोत्तम जी ने लिखी है ना, ये वाली नहीं पढ़ी होगी, इसे पढ़ लिया तो लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। वेरी नाइस।
0: आप एड्रेस भेज दो भाई, मैं भिजवा दूंगा।
1: ठीक है, एड्रेस बहुत सिंपल है, आपकी ससुराल में आप आते हैं तो यहाँ रामलीला ग्राउंड तो आपने देखा ही होगा, FM मुरादाबाद तो फिर आपको पता चल ही जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सो थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अखिल भाई आपसे ढेर सारे क्वेश्चन की बारिश कर रहे हैं, एंड एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ ना सर?
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: ठीक है, मैं एक्चुअली ये आजकल आपको पता है लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा लोगों का बिजी है, एंड इसी बीच लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है जॉब का। जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी दिमाग में ये रहता है यार कहीं जॉब ना चली जाए, जॉब चलेगी तो मैं क्या करूंगा, कैसे अपने आप को फिर मैं मतलब दोबारा से खड़ा करूंगा, बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं। इनसिक्योरनेस, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी की मतलब किसी के पास जॉब तो है बट वो फिर भी अभी भी सुरक्षित है या नहीं आपको, और अगर उसकी जॉब चली जाती है तो ऐसे में वो क्या करे?
0: देखिए भाई, जॉब सिक्योरिटी आजकल बिल्कुल खत्म हो गई, जॉब सिक्योरिटी जैसा कोई वर्ड रहा नहीं है। हमारे पापा लोगों के टाइम पे होता था, वो लोग बोलते थे कि यार सरकारी नौकरी लग गई, अब तो मैं यहीं से रिटायर होऊंगा।
1: राइट राइट राइट।
0: अनफॉर्चुनेटली सरकारी नौकरियां बची नहीं है, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी तो आप भूल जाओ. जो मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को, एक वर्ड है आई.
1: ओके, आई
0: का मतलब होता है मैं. ठीक है, आप ये सोच के चलो कि अपनी लाइफ का मैं सीईओ हूँ. आई एम द सीईओ ऑफ माई लाइफ. ये मेरी लाइफ है. और जब आप जॉब करते हो ना यार, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हो किसी को.
1: राइट.
0: आप अपना टाइम बेच रहे होते हो, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं. ठीक है, तो आपको सोचना ये है कि मैं अपना टाइम, जो 8 घंटे का टाइम बेच रहा हूँ, इस टाइम को मैं कैसे वैल्यूएबल बनाऊ, मैं खुद कैसे इतनी वैल्यू क्रिएट कर दूं कि या तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कमा के दे ढेर सारा पैसा, या मैं उसको बचा के दे दूं. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो काम, जितने भी रिपीटेटिव काम है, जैसे कोई इंसान क्लर्क है, क्लर्क का काम AI कर सकता है. अगर वो दिन भर एंट्री कर रहा है तो वो एंट्री AI से भी कराई जा सकती है. अगर कोई कस्टमर के है और वो कॉलिंग कर रहा है, तो उसको हटा के आप वॉइस वाला, आप चैटबॉट लगा सकते हो,
2: वॉइस मॉड्यूल
0: लगा सकते हो, जिसमें वो बिल्कुल आपकी आवाज में बात करेगा और वो थकेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं. उससे 24/7 365 आप काम करा सकते हो उससे. ठीक है, तो आदमी को तो आपने रिप्लेस कर दिया AI से. तो आदमी अपनी वैल्यू कैसे दिखाए, वैल्यू वो ऐसे दिखाए कि जो काम AI नहीं कर सकता, वो काम वो करे, और वो काम ऐसा करे जिससे कि वो कंपनी को कमा के दे या फिर बचा के दे. और मेरा जो सजेशन रहता है प्रोफेशनल्स को कि किसी भी कंपनी में 2-3 साल से ज्यादा मत रुको. रुकने लग गए तो आदमी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा, बोलेगा यार ये तो कहीं नहीं जाने वाला, इसको पैसे भी मत बढ़ाओ, ये कम्फर्ट में है, पढ़ा रहे हैं तो इसे.
1: राइट, एब्सोल्युटली सही कहा आपने. जी अखिल भाई, आप तो पूछने वाले हैं.
2: ये बात तो आपने बहुत सही कही कि अगर कहीं भी आप 2-3 साल काम कर रहे हो तो उसे आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, मतलब कहीं और दूसरी जगह लोकेशन अपनी बदली, अपनी वर्क प्रोफाइल बदली. मगर क्या पता कि वो 2-3 साल काम करते करते उसे भी एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि चलो यार इस कंपनी में मेरी तो कुछ वैल्यू है और मैं जो है यहाँ से और भी ग्रोथ ले सकता हूँ.
0: अब इसमें आता है एक वर्ड, विजिबिलिटी. का मतलब ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने विजिबल हैं. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 1000 लोगों का है और टॉप 3 लोग बैठे हुए हैं जो की चला रहे हैं ऊपर से, क्या आपकी विजिबिलिटी उन 3 जनों तक है? अगर आपको लग रहा है आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या वो सही लोगों के कानों में पहुंच रही है वैल्यू की? ये इंसान अखिल आनंद पुरुषोत्तम, ये इस टाइप के लोग हैं जो कंपनी के लिए बड़े वैल्यूएबल रिसोर्स हैं. इनको हटाने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा.
1: राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने.
0: ये करना पड़ेगा आपको. अगर आप रुकना चाहते हैं किसी कंपनी में, लॉन्ग टर्म में करियर बनाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी विजिबिलिटी है और जहाँ से आपने शुरू किया था उस सीढ़ी पे आप नहीं है, उस पायदान से आप कई स्टेप ऊपर जा चुके हैं, तब आप समझिए कि आप ग्रोथ पाथ में हैं. अगर आप नहीं फंसे हुए हैं, भले ही सैलरी बढ़ रही है, डेजिग्नेशन नहीं चेंज हो रहा, आपका CEO आपको नहीं जानता, तो भाई किसी भी दिन भी साफ कर दिया जाएगा, ऊपर से एक मेल आएगी और कौन पुरुषोत्तम, कौन आनंद, कौन अखिल, कोई नहीं जानता.
1: राइट, एब्सोल्युटली सही कहा आपने.
2: तो ये बात तो रही कि अगर हमें अपने आप को कम से कम एक तो कंपनी में, उस प्रोफेशनल में अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा कि कम से कम जो टॉप नॉच है वहाँ के लोग, तो वो हमें अपने उसमें उनकी नजर में हम हमेशा रहें. दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आज नौकरी खो चुका है, ठीक है, या अपने करियर में खूब स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो क्या कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसे वो फॉलो करके वापस उसी मुकाम पे पहुंचे या वापस अपने आप को स्टेबल करे?
0: बिल्कुल है अखिल भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है.
1: जी
0: ठीक है, आप मुरादाबाद में बैठे हो.
2: हाँ.
0: आपको अगर दिल्ली आना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए?
2: हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम होना चाहिए जिससे हम दिल्ली पहुंच सके.
0: वेरी गुड, प्लस आपको दिल्ली पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए.
2: हाँ, ये तो जरूरी है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है. है ना,
0: और आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ और दिल्ली कितनी दूर है.
1: राइट.
0: ठीक, अब मैं कौन सा ट्रांसपोर्ट ले सकता हूँ जिससे मैं बिल्कुल फास्ट पहुँचूँ? तो अगर मुरादाबाद से दिल्ली की फ्लाइट उड़ती है कोई, तो उस फ्लाइट में आप फास्टेस्ट तरीके से पहुँच सकते हैं. ठीक है,
2: बिल्कुल सही.
0: तो जो सिंपल 3 स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे दर्शकों के लिए भी है. सबसे पहला काम करिए, एक पेपर लीजिए, पेपर में आप बनाइए 3 गोले.
2: ठीक है,
0: एक गोला अंदर, उसके ऊपर एक गोला, उसके ऊपर एक गोला. तो 3 गोले बना लिए, सबसे अंदर वाले गोले में लिखिए अपना गोल. मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली. ठीक है, उसके बाद लिखिए असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, मतलब मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ. और थर्ड गोले में आप बनाइए एक्शन, कि मुझे एक्शन क्या लेना है. तो सेटिंग द गोल नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट नंबर 2, टेकिंग द एक्शन, स्टार्ट टेकिंग द एक्शन, दिस इज नंबर 3. किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए, अपना गोल डिसाइड कर लीजिए मेरे को कहाँ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी कहता है कि मुझे ना 2,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी चाहिए, वो एक ये गोल बनाता है, ठीक है। और वहीं दूसरा इंसान बोलता है कि मुझे 2,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी चाहिए जो कि मैं 6 महीने में करूंगा और मेरी डेजिग्नेशन XYZ होगी। मान लो सॉफ्टवेयर बना रहा है तो सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, मुझे 5 लोगों की टीम रिपोर्ट करेगी। इस गोल में क्लियर कट आपने टाइमलाइन सेट करी है, कितना पैसा कमाना चाहते हो वो सेट किया है आपने, और इसके साथ में आपने ये सेट किया है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे होगे आप, ठीक है।
2: तो
0: गोल सेटिंग जब आप करते हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता करना चाहिए आप कहाँ खड़े हो, अभी वहां तक जाने के लिए आप में गैप्स कितने हैं, क्या सीखना पड़ेगा आपको, क्या लर्निंग है, और उसके लिए जो भी सीखना है आपको उसके लिए क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि अगर फ्लाइट से उड़ना है तो आपको फ्लाइट देखनी पड़ेगी, कौन सी फ्लाइट को पकड़ूं जो जल्दी से पहुंचा दे। आप जाने को साइकिल से भी जा सकते हो, रिक्शा से भी जा सकते हो, और स्कूटी से और कार से भी जा सकते हो, बट अगर फास्टेस्ट वे चाहिए तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी जिसने कई लोगों को ट्रांसफॉर्म किया हो, ऐसे ही लोगों को वहां से उठा के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया हो और बहुत कम टाइम में पहुंचाया हो, क्योंकि आप अपने आप भी कर सकते हो सारी चीजें, लेकिन अगर गाइड मिल जाता है तो आपको स्पीड मिल जाता है। तो ये है।
2: ओके तो जरूर मतलब यही होता ना कि गुरु का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पता चलता है कि हाँ एक लाइफ में गुरु तो ऐसा होना ही चाहिए जो कम से कम आपको इतना तो गाइड करे कि हाँ भाई आप किस स्पीड से और कहाँ तक पहुँच रहे हो।
1: बहुत बहुत सही कहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है अभी तक जितनी आपने बातें कही है ना पुरुषोत्तम जी, उसमें से मुझे लगता है कि 99% हर वो बात है जो हर दूसरा इंसान रेडियो के बाहर सुन के रिलेट कर रहा है आपकी बातों से। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो आपने ऐसे भी बोल दी है इसमें जो मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान दिमाग में सोचता है, कभी वो अपने जहन में सोचता रहता है जुबान पे नहीं ला पाता है। जैसे अभी जॉब के बारे में आपने ढेर सारी बातें बता दी, आपने लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। अच्छा, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, बहुत सारा स्ट्रेस है लोगों की जिंदगी में, है ना। लोग खुश तो है लेकिन खुश होके भी खुश नहीं है। जो लोग बेवजह की ओवर थिंकिंग करते हैं, बेवजह का टेंशन स्ट्रेस लेते हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे?
0: भाई बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल सा टिप है।
1: आपके पास हर चीज के प्रैक्टिकल और सिंपल ही टिप्स कैसे होते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये भी जानना है आपसे कहाँ से आ रहे हैं।
0: मैं बड़ा सिंपल इंसान हूँ, मैंने जब पढ़ना शुरू किया था
1: हाँ जी
0: मुझे बड़ी पिटाई पड़ती थी यार घर पे, मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती थी उन्हें समझ नहीं पाता था। तो पापा कई बार होता था, एक दो बार जमा देते थे, कानानों को मेट दिए जाते थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: मैं सोचता था कि यार मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर मुझे ये समझ आया कि यार तुमको सिंपल चीजें समझ में आती हैं, तो तुम चीजों को स्टोरी के फॉर्म में या कोई सिंपल से एग्जांपल्स के फॉर्म में रिलेट करके समझ लो और वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तो वही चीजें मैंने अपने अंदर एक तरह से अडेप्ट कर ली और वैसे ही मैं समझा भी देता हूँ लोगों को, किस वजह से लोग रिलेट कर पाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि स्ट्रेस बहुत है और ये सारी समस्याएं हैं, भाई स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यू आर अ कंटेंट कंज्यूमर। दिन भर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, फोन आपका आपके साथ में है, दिन भर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसमें 80% 90% थिंग्स आर नेगेटिव, वो आप कंज्यूम किए जा रहे हो और उससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। आप इसका उल्टा कर दो, आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो। अब अखिल है और आरजे आनंद है, अखिल आरजे आनंद कंटेंट कंज्यूम करने से ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल राइट।
0: तो अखिल और आनंद अपना पैशन जी रहे हैं।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: ठीक है
1: करेक्ट।
0: इसमें उनको मजा आ रहा है, वो लाइफ में हैप्पीनेस है उनके।
1: ट्रू,
0: ठीक है
1: बिल्कुल। तो लाइफ जीने का बेसिकली एक मोटिव है हमारे पास, यू नो कह सकते हैं।
0: खुशी आपको तब मिलेगी जब वो इंटरनली आए। कुछ आप ऐसे काम करें जिसमें आपको आपका मन कहे कि हाँ ये काम मैं बिना रुके बिना थके कंटिन्यूस कर सकता हूँ, इसमें मुझे बहुत मजा आता है।
1: राइट राइट।
0: और ऐसे ही आप बिजनेस बनाते, कोई भी बिजनेस आप देखो तभी सक्सेसफुल होगा जब उसमें फाउंडर जो है ना बिल्कुल ऐसे इन्वॉल्व है जैसे बिल्कुल उसने एक दिल एक जान कर दिया है सारी चीजों।
2: ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। अच्छा निगम जी, एक आखिरी सवाल, मतलब हम चलते चलते ये सवाल और पूछना चाहेंगे कि आपका जो विजन है एज एन एंटरप्रेनर के रूप में और कहते हैं मिशन है आपका, तो उसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप किस रूप में उसे बताना मतलब रखना चाहते हैं।
0: जी, तो दो चीजें हैं। मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जो अपने करियर में स्टूडेंट हैं, पास आउट होने वाले हैं अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनकी भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। उनको राइट स्किल्स देके उनकी नौकरियां लगवा रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में भी कनेक्टेड हूँ। तो मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, मैंने कहा कि लोग तैयार नहीं है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर से पूछो, वो कहते हैं कि यार अच्छे लोग नहीं मिल रहे।

0: ही नहीं रहा है। एम्प्लॉयर चाहता है जैसे आप होता है ना रील रील इंस्टेंट चल जाती है, एक बटन दबाओ चल जाती है, वैसे ही आजकल नौकरियों में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मांग रहे हैं प्लग एंड प्ले टैलेंट, इंस्टेंट। आप आओ, आप आके तुरंत परफॉर्म करना शुरू करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा सिखाऊंगा नहीं। अब वो काम कोई तो करेगा ना भाई, तो वो काम करने के लिए एलिवेट्स है जो मेरा फाउंडेशन है। एलिवेट फाउंडेशन जो है एलिवेट बच्चों को सिखाता है, उनको इस लायक बनाता है कि उनको नौकरियां मिले, और हम नौकरी तक पहुंचाते हैं, उन्हें इंटरव्यू कराते हैं और नौकरियां दिलवाते हैं। ये तो हम करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। अब इसी में जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनमें भी गैप होते हैं, बिकॉज जो रुका हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी हमेशा गंदा हो जाता है। आप एक लेवल पे सीखना छोड़ देते हो इसलिए आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो हम उन्हें हेल्प करते हैं। इसके साथ में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेशनल अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो हम उनके साथ बैठ एनालाइज करते हैं कि वो जिस बिजनेस में हाथ डालने की सोच रहे हैं क्या वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वो रेवेन्यू कैसे लाएंगे, उसमें वो सेल्स कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सारा ज्ञान हम उन्हें देते हैं। और अगर उन्हें और हमारी हेल्प लगी है तो उसमें हम उनको पूरा सपोर्ट कर देते हैं, उन्हें जो टूल्स चाहिए होते हैं, जो स्किल्स चाहिए होते हैं, वो भी हम दे देते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि वो लोग अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए। तो इस तरह से हम लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की।
1: क्या शानदार सोच है आपकी। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि ले ऑफ जो है आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान है आपकी सोच, आपकी मेहनत और दोबारा उठ खड़े होने का साहस। तो निगम जी, चलने से पहले एक छोटा सा नगमा तो आपने जो कहा था हमने शुरुआत में कि आप सुनाएंगे,
2: तो फिर हम जाने भी नहीं देंगे ना फिर ऐसे। बिना सुने हम भी तो सुने। हमारे जो निगम साहब है वो मुरादाबाद में उनकी ससुराल है, कितना मुरादाबाद को जो है वो आज नचा के जाएंगे या फिर उनको एंटरटेन करके जाएंगे।
0: बिल्कुल जी
2: जी जी,
0: दो गाने सुना देंगे, ऐसी क्या बात है
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप एक सुनाइए पहले, हम चेक करेंगे,
0: आप मना नहीं कर पाएंगे दूसरे।
2: अरे वाह, क्या बात है सर, बिल्कुल
0: चलिए। अभी ना जाओ छोड़ कर।

0: बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया आज तो,
0: बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, वाह वाह वाह वाह,
2: क्या बात है।
0: तो बहुत मजा आया प्रस्तुति आपसे बातचीत करके, मतलब हमें लग रहा है कि हमें और लाइफ के फंडे जानने चाहिए और मंत्रा लेना चाहिए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है हमें। सो वेल, बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगता है अखिल भाई कुछ चीजें बात के लिए भी बचा के रखनी चाहिए,
1: और जरूर हम जो है एक और दोबारा एक सेशन करेंगे अपने निगम पुरुषोत्तम जी के साथ,
0: डेफिनेटली। अच्छा पुरुषोत्तम जी, बहुत सारे लोग जो किताब के बारे में जिक्र कर रहे थे, जो मैं आपसे मैजिकल किताब लेने की बात कर रहा हूँ, जिससे पढ़ने के बाद लाइफ सेट होने की बात हो रही थी अभी, बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे ये हम भी लें, हमें भी मिले, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस बुक को, कैसे वो पकड़ सकते हैं अपने हाथों में?
2: आप अमेजोन पे जाइए, उस पे लिखिए ले ऑफ, लिख दीजिए मेरा नाम आ जाएगा, बुक आ जाएगी।
0: हाँ हाँ,
2: और बेस्ट सेलिंग बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हम जो है बाकी लिसनर्स को हम इसके सर से लिंक लेंगे एंड उसको शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे, एंड जिसको भी चाहिए होगा वो वहाँ से जाके भी कर सकता है कनेक्ट। बाकी अगर कोई सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट होना चाहे, किसी को अपनी लाइफ में कुछ जानना हो, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो कैसे वो लाइफ कोच पुरुषोत्तम जी से संपर्क कर सकता है?
2: आप मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट कर लीजिए।
0: ओके,
2: फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली,
2: शेयर कर दीजिए और कभी भी वो लोग रीच आउट कर सकते हैं।
0: परफेक्ट परफेक्ट, लवली टॉकिंग टू यू सर, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, एंड सीरियसली ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही कमाल की और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, एंड आई एम श्योर आगे भी आप हमारे साथ ऐसी बीच बीच में हमारे लिसनर्स को ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताते रहेंगे, लाते रहेंगे
1: और गाइड भी करते रहेंगे।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली,
2: बिल्कुल जी, कभी भी किसी को कोई भी हेल्प लगे, पुरुषोत्तम उनका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझ लो खड़ा हुआ है उनके लिए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, लवली टॉकिंग टू यू सर वंस अगेन।
2: टीम ईयर भाई, थैंक यू, बहुत बहुत कामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खुद तरक्की करिए, इसी तरह से लोगों की हेल्प करिए।
0: चलिए, हमारा क्रेडिट आपने फाइनली दे दिया, हम बहुत खुश हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलते चलते बहुत मजा आया और आपने बहुत अच्छा गाया, एंड आगे कभी आप मुरादाबाद अपनी ससुराल आए तो हमारे स्टूडियो भी आए गाना गाना,
1: स्टूडियो आके दर्शन जरूर दें।
0: हाँ हाँ, जरूर जरूर दर्शन दें। चलिए सर, फिर जरूर आपसे मुलाकात करेंगे सर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच गाइस। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, मैं और अखिल भाई आपको मिलते रहेंगे ऐसी मजेदार बातों के साथ, बीच बीच में मतलब आते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, क्यों अखिल भाई चले अभी?
1: हाँ, अब तो चलने का टाइम।
0: चलिए गाइस, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, बाय बाय।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: Permits authentication through manual, digital and इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
6: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
7: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
8: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
9: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
10: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद

0: नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आज खूब सारी बातें होंगी दिल की। वो मैं बताऊंगा क्या क्या करेंगे आज हम दिल की बात। पूरी उम्मीद है आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे इस समय। कोई जा रहा होगा घर तो कोई जा रहा होगा दोस्तों से मिलने। क्या क्या मस्ती हुई है साहब आज हमें बताइएगा। और 9837896896 पे ट्रैफिक अपडेट ज़रूर दीजिएगा। अगर स्टेशन के आसपास कहीं हो आप या फिर हो MDA में या फिर चल रहे हो आप दिल्ली रोड, तो कहीं हो जाम या कोई भी ऐसा अपडेट जो मिले दूसरे को सहायता दे तो ज़रूर हमें आप बताइएगा। क्योंकि होता क्या है ना, ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसे हमें प्लान नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही हो जाती हैं। या एकदम कहते हैं ना, कभी कभी दोस्त का भी अचानक फ़ोन आ जाता है, भाई आज रात मिल रहा है, या कभी फैमिली वाले बोलते हैं चलो आज बाहर चल के खाना खाएंगे, तो कभी बॉस कह देता है ऑफिस से निकलने से पहले एक काम और है भाई जरूर अभी करना है बिल्कुल अर्जेंट, तो कभी ज़िंदगी खुद से कह देती है सरप्राइज। तो आज हम बात करेंगे अचानक वाली बातों की, मतलब अचानक जो हमें प्लानिंग करनी पड़ जाती है या कुछ प्लान जो बिल्कुल ही एकदम अचानक हमारे पास आ जाते हैं। और अगर प्लान में कुछ खराबी हो जाए ना, जैसे अचानक वाले प्लान में, तो वो पूरा स्पॉइल कर देता है, सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। मगर करेंगे खूब सारी बातें, देखेंगे कौन किसकी अचानक प्लानिंग में क्या क्या हुआ, किसने एंजॉय किया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए अगर ऐसी भी कोई अचानक प्लानिंग आ जाए। शायरी के साथ शुरू करते हैं शो की। कुछ सफ़र मंजिल से नहीं, अचानक बने फैसलों से खूबसूरत होते हैं। जो लोग हर पल को जीना जानते हैं उनके लिए छोटे छोटे पल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे साथ एक लिसनर कनेक्ट हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: सर, आपका नाम?
1: जी मैं वसीम अकरम बोल रहा हूँ, रामपुर उत्तर प्रदेश से।
0: रामपुर उत्तर प्रदेश से वसीम अकरम जी, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: एकदम अच्छे सर, और रेस्टोरेंट चलाते हैं गुरुग्राम के अंदर।
0: कहाँ पे? गुड़गांव में।
1: जी जी।
0: किस नाम से चलाते हैं आप रेस्टोरेंट वसीम साहब?
1: अपना A1 चिकन का अंदर का नाम से है गुड़गांव का।
0: A1 चिकन। तो इस समय कहाँ, गुड़गांव में किस साइड है?
1: गुड़गांव में आते हैं साउथ सिटी वन।
0: साउथ सिटी वन। तो आज क्या स्पेशल बना है, कुछ बना है स्पेशल?
1: देखिए सर, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, इस समय वेजी आइटम चल रहे हैं सर। में
0: तो वेज में क्या स्पेशल बनाया आपने?
1: वेज में स्पेशल शाही पनीर है, मटर पनीर है, शाही कढ़ाई पनीर होता है।
0: तो जो इस समय डिनर करने जा रहे हैं या फिर डिनर करने की तैयारी में बैठे हैं ना, उनका सबका टेस्ट बदल जाएगा साहब आपकी आवाज से।
1: जी जी, काफी पुराने लिसनर थे हम, FM मुरादाबाद 89.6 के। एक लंबे अंतराल के बाद आज बात हो रही है आपसे, पहली मरतबा बात हो रही है।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो साहब लिसनर तो आप हमेशा ही रहेंगे, चाहे आप समय निकाल पाए या नहीं, मगर हमेशा है ना कहीं आपके जहन में 89.6 FM जो है आता ही रहेगा।
1: जी जी, हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन हेलो मुरादाबाद कार्यक्रम में एक लंबे अंतराल के बाद राज जी होते थे पहले प्रोग्राम में, उनसे लगातार बात होती थी। उसके बाद में जो सर प्रोग्राम थोड़ा कॉल नहीं लगाते थे मैंने, कि औरों को मौका दे रहे थे सर।
0: तो आप ये बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक आपको रामपुर से एकदम गुड़गांव आना पड़ा हो, या गुड़गांव से एकदम अचानक रामपुर आपको जाना पड़ा हो, कभी हुआ है अचानक वाली हरकत?
1: बहुत मरतबा होता रहता है, कोई घर पर काम पर जाता है इमरजेंसी तो आ जाते हैं, फिर गुड़गांव के लिए इमरजेंसी, रात में कोई गुड़गांव के लिए काम पड़ता है तो वहाँ निकल जाते हैं गुड़गांव के लिए।
0: और कभी ऐसा हुआ आधे रास्ते में कोई सामान भूल गए हो आप, की याद आया हो यार ये तो रखना ही भूल गया मैं तो?
1: नहीं, सामान तो सर मेरा तो आना जाना लगा रहता है गुरुग्राम के अंदर, हफ्ते में 2-3-4 चक्कर लग जाते हैं रामपुर।
0: तो अब तो आप बहुत जल्दी से आसानी से पहुंच जाते होंगे, पहले तो बहुत समय लगता था, अब तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते होंगे आप?
1: तो सर 3-3.5 घंटे लगते हैं, और चलते हैं अपने हिसाब से, सीट बेल्ट लगाकर उपयोग करते हैं गाड़ी का।
0: सही है, बहुत ही बढ़िया। गाड़ी जब भी ड्राइव करें तो सीट बेल्ट का तो उपयोग करना ही करना बनता है।
1: जी सर, चाहे बाइक हो या चाहे कार हो, बाइक पे जब चले तो हेलमेट पहन के चले, और कार में जब चले तो सीट बेल्ट लगाकर चले, सड़क सुरक्षा के यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही साहब, चलान आने से बचेंगे, पता चला चलान भरते भरते ही।
1: देखिए सर, चलान की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिंदगी रही तो चलान भरते रहेंगे, लेकिन जिंदगी घट गई तो लेकिन वो फिर दोबारा नहीं मिलेगी।
0: बिल्कुल सही बात, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: सर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जिंदगी में हर चीज के लिए है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी कोई भी काम कर रहे हो, तो कहीं भी अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना तो जरूर घटेगी।
1: जी जी, आपके लिए दो लाइन है सर,
0: बताइए सर, जरूर सुनाइए।
1: इस जमाने से बहुत अलग हैं आप, इस जमाने से बहुत अलग हैं आप, और वो बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास हैं आप। हमारे लिए तो वो वक्त ही हसीन है, जब दिल से याद करते वक्त मुस्कुरा लेते हो आप।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, ये आपने हमारे बहाने जिसके पास लाइन पहुंचानी थी पहुंचा दी।
1: तो कहना चाहूंगा कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी दे दूं आपकी जिंदगी के।
0: क्या बात है वसीम अकरम साहब, आप बाउंसर बहुत अच्छा फेंकते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपने इस तरीके से शायरी करके अपना मैसेज पहुंचा दिया। तो कोई गाना भी उनके लिए पहुंचाना है
1: सर? हमें भी बहुत अच्छा लगा, और मुरादाबाद 89.6 पर बात हो रही है, अखिल सर से बात हो रही है।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी सर, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपकी दिलकश आवाज, खूबसूरत अंदाज में जब हेलो मुरादाबाद कार्यक्रम पेश करते हैं, और रात्रि का समय होता है, वो सुहाना मौसम होता है, साथ साथ जब आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो सर बहुत मजा आता है।
0: धन्यवाद, हमें भी बहुत मजा आता है जब हमारे साथ लिसनर जो है पूरे दिल खोल के अपनी बात करते हैं ना, भले ही थोड़ा सा समय देते हैं, मगर वो जो समय देते हैं आप लोग वो बहुत हमारे लिए कीमती होता है।
1: देखिए सर, गाने तो मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं, आज के दिन में सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन जो रेडियो का माध्यम से सुनते हैं सर, तो उसमें श्रोताओं की दूर दूर से देश से प्रदेश से कॉल आती है, और वो अपने शहर के बारे में बदलाते हैं और अपने बारे में बदलाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो ये चीज सुनकर सर बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, इससे हमें बहुत कुछ खुशी मिलती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही आपने वसीम साहब, और कहते हैं कि जो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जिनके साथ आपके साथ नाता जुड़ा होता है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप इनडायरेक्ट में उनसे जुड़े हुए होते हैं। अगर कहीं भी एफएम आप सुनेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करती है कि हाँ यार मैं ये एफएम सुनता हूँ, और इस एफएम पे मेरे साथ ये गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: सर मैं तो कहीं पे भी जाता हूँ तो एफएम है, एप के माध्यम से देश में भी आता हूँ सर, प्रदेश में भी जाते हैं हम घूमने के लिए, ट्रेवल करते हैं तो आपका प्रोग्राम सुनते हैं। जैसे सर यूट्यूब के माध्यम से, और क्या बोले इंस्टाग्राम पे से हमारी वॉइस की हेलो फरमाइश की बात करते हुए वॉइस पढ़ो भी सर, तो बहुत अच्छा लगता सर। कश्मीर की वादियों में जब हमने शूटिंग की थी सर, हमने अपनी हेलो फरमाइश की बात करते हुए इंस्टाग्राम पर हमने अपलोड की थी, तो आप ही लोगों को बहुत पसंद आया था सर।
0: चलिए साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर उसका ये आप एक बार हमें भेजिएगा लिंक, हम जरूर वो आपके इंस्टाग्राम पे देखना चाहेंगे।
1: जी सर, आप देख सकते हैं सलीम किश्तवार नाम से आईडी है, उस पर जो है रील प्रोवी है, हेलो फरमाइश के प्रोग्राम में भी सर सारी रील प्रोवी है।
0: चलिए ठीक है, आप जरूर देखेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, आप इतने टाइम बाद जुड़े, और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके कि वसीम साहब गुड़गांव आएंगे तो आपके पास जरूर बिरयानी खाने आएंगे।
1: जी सर, देखिए सर गुड़गांव आइए, गुड़गांव जो सर इंडिया का साइबर हब है, और ये साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत
1: लगता सर, जैसे जैसे आप दुबई में घूम रहे हैं, मिनी दुबई लगता सर ये जो है गुड़गांव।
0: बिल्कुल सही, मिनी दुबई और मिनी सिंगापुर दोनों ही इसके आगे फेल है
1: सर। आप जो सर एक बार यहाँ पे आइए गुड़गांव, आपको साइबर सिटी घुमाएंगे, बहुत सारे मॉल है, एंडिवास मॉल है, वो सहारा मॉल है गुरुग्राम के अंदर, साइबर सिटी है सर, बहुत बहुत ऊंची इमारतें हैं सर, घूमने का शहर है सर।
0: हम घूमे हैं सर गुड़गांव में, बहुत घूमे हैं गुड़गांव में, आपने किंगडम ऑफ ड्रीम्स का नाम सुना होगा, हम उसमें बहुत घूमे हैं।
1: जी जी जी सर,
0: तो जरूर आएंगे और आपसे जरूर मुलाकात करेंगे।
1: जी सर, ऐसा मैं आपसे अब हेलो मुरादाबाद कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट रामपुर से कॉल शामिल हो रही है, तो मूवी का नाम है साजन का घर।
0: साजन का घर
1: जी जी, और उसमें सोंगे दर्द सहेंगे, कुछ ना कहेंगे, सुखी रहेंगे प्यार में तेरे सनम।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही डीपली है साहब, आपने तो किसके लिए है
1: सर? रामपुर ग्राम के डांडे से मोहम्मद शामिल हैं, और ये हमारे छोटे दोस्त हैं मोहम्मद नुमान, और मैं कहना चाहूंगा कि गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, और जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हेलो मुरादाबाद में आपसे फिर मिलेंगे
0: जरूर। और इसी अगले हफ्ते हम आपका फिर से इंतजार करेंगे वसीम साहब, कि आप आएंगे और फिर कोई ना कोई बढ़िया सी बाउंसर हमें जरूर दे के जाएंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल सर, रख सकती है आप, जाए दीजिए, गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है,
0: धन्यवाद धन्यवाद। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ वसीम साहब, जिन्होंने खुल के बात करी, दिल से बात करी, रामपुर से थे भाई साहब, पूरी कहता है ना इन्होंने गुड़गांव तक की अपनी कहानी बताई और किस तरीके से जुड़े हुए हैं गुड़गांव से और अपने व्यापार से, बहुत ही अच्छी बात लगी। क्या बोलने का अंदाज था इन्होंने, क्या शायरी, भले ही वो शायरी जिसके लिए थी उसके पास पहुँच गई मगर शायरी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद आपकी ऐसी शायरी का और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों का। तो चलिए इनकी भी फरमाइश पूरी करते हैं और आपसे भी मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद 9837896896। अगर कॉल नहीं मिल पा रही ना साहब तो ज़रूर मिलाइए, अभी नहीं तो एक मिनट बाद उठ जाएगी, मगर पीछे मत होइए। हम मिलते हैं इस गाने के बाद आपसे, दिल से दिल तक अखिल संग में।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

वेलकम बैक दोस्तों, अखिल के साथ हैं आप दिल से दिल तक अखिल संग में। और अभी बात चल रही थी कुछ इंस्टेंट प्लानिंग की, तो इंस्टेंट प्लानिंग का सबसे पहला रूल, कुछ चीजें जो हमें एकदम चेक करनी चाहिए एक्साइटमेंट में निकलने से पहले। मान लीजिए दोस्तों ने कहा चलो आज दिल्ली चलते हैं, तो आपने कहा चलो भाई चलो, लेकिन मोबाइल है 5% की बैटरी पे, वॉलेट है खाली, कार में पेट्रोल भी कम है और घर वालों को तो अभी तक पता ही नहीं है। तो भाई साहब ये प्लानिंग नहीं है, ये तो एडवेंचर शुरू होने से पहले का एडवेंचर है। तो हमेशा ध्यान रखिए टाइम का अपना, कि पांच चीज़ें अपने पास बैलेंस होनी चाहिए, पांच चीज़ों का तो अपने पास पूरा बजट भी होना चाहिए। टाइम हो गया।

0: बजट हो गया, प्यूपल हो गए, किसके साथ जा रहे हैं आप, लोकेशन कहाँ जा रहे हैं आप, दिल्ली भी जा रहे हैं तो साहब दिल्ली भी बहुत बड़ी है, दिल्ली में भी कहाँ जा रहे हैं और बैकअप प्लान क्या है, अगर वहाँ जाके जिस काम के लिए जा रहे हैं अगर प्लान नहीं होता फेल तो क्या करना है, दूसरा प्लान भी तो होना चाहिए, ये थोड़ी है जी दिल्ली गए और बिल्ली पकड़ के आ गए तो चलता है। चलिए अपने लिसनर से बात करते हैं और पूछते हैं क्या उनकी आज की मस्ती चल रही है। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर मेरा नाम शमसुल इस्लाम, जिला रामपुर खेड़ा डांडा से बात कर रहे हैं।
0: और इस समय कैसा मौसम हो रहा है साहब?
1: मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, सावन का मौसम है, हवाएं चल रही है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है।
0: बहुत ही बढ़िया साहब, बढ़िया। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप भी एकदम अचानक जी आज निकलना है दिल्ली या आज निकलना है शिमला और आपने बैग उठाया और चल दिए?
1: नहीं ऐसा नहीं है, असल में सफर जो है बहुत कम है, दिल्ली जो शिमला का कोई काम ही नहीं है।
0: काम नहीं साहब, ये तो एकदम अचानक वाला प्लान होता है, कभी अचानक कहाँ गए घूमने ये बताइए।
1: घूमने ज्यादा दूर नहीं गए, दिल्ली एक दो बार गए हैं बस।
0: तो अचानक से कहीं नहीं गए आज तक आप,
1: अचानक तो नहीं गए। हाँ
0: एकदम प्लान करके ही गए हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। तो अचानक से कभी जाने का मौका मिला तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस कहेंगे चलो जी छोड़ो?
1: जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे।
0: चलिए तो इस समय क्या गाने की फरमाइश है आपकी?
1: गाने का की फरमाइश है, प्यार कैसा ढूंढना क्या मुगले आजा फिल्म का।
0: जरूर जरूर। कोई शायरी भी सुनाते हैं क्या आप इस्लाम साहब?
1: जी शायरी
0: शायरी का शौक है आपको, शायरी सुनाते हैं क्या?
1: ज्यादा याद तो नहीं है, ज्यादा थोड़े बहुत शेर याद होंगे।
0: तो थोड़ा बहुत शेर ही दे दीजिए, आजकल तो शेर और बाघ ही मिल रहे हैं सुबह सुबह।
1: सर इस बार का दिन था, कपड़े धो रहा था, जब तुम्हारी याद आई तो सर पकड़ के रो रहा था।
0: कपड़े ज्यादा होंगे आपके पास।
1: हाँ
0: कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। तो कपड़े धोते धोते रोना भी आ गया। सही है, बहुत ही बढ़िया आपने शायरी सुनाई, ऐसा शेर छोड़ा है कि जिसे सब वन विभाग वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो चलिए आपकी भी फरमाइश पूरी करते हैं और ये गाना जरूर सुनते हैं। धन्यवाद इस्लाम जी। श्रोताओ ये थे हमारे इस्लाम जी और कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारी याद आई, मैं तो रो रहा था और कपड़े धो रहा था। कभी कभी कपड़े कम पड़ जाएं तो हमें बता दें, हम पहुंचवा देंगे आपके पास। बहुत ही बढ़िया बात कही इन्होंने कि मैं इंस्टेंट प्लानिंग नहीं करता हूं, मैं तो भाई सब सोच सोच बहुत ही सोच समझ कर जाता हूं। अगर कभी इंस्टेंट प्लानिंग का मौका भी मिला, अचानक जाने का मौका भी मिला तो भी पीछे नहीं हूँ, ज़रूर हो जाऊँगा। तो एक बात तो पता हुई, कंफर्म हुई कि बंदा घूमने से और कहीं भी जाने से पीछे तो है। तो चलिए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं। आपकी भी अगर ऐसी कोई इंस्टेंट प्लानिंग हुई हो तो ज़रूर हमें आप कॉल करें 9837896896 पे, थोड़ा सा शेयर करें क्या रहा, कैसे रहा और किधर रहा। हमारे पास मैसेज आया है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक डाल पर तोता बोले और एक डाल पर मैना। जी ज़रूर बोलेंगे, अगर एक डाल पर तोता होगा और एक डाल पर मैना होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गुफ्तगू होगी। तोते पालने का शौक़ तो साहब मुझे भी है। वो शायर ही क्या जो महफिल ना जमाए, वो शायर ही क्या जो अकेले में ना रुलाए। बहुत ही शानदार बात की आपने। शंकर लाल यादव जी, निरांशी यादव जी, नमन यादव जी, अमित यादव जी, रितु यादव जी, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाशन का चुराया। हर रंग की उसकी क्या, हर रंग की उसकी क्या, लाल मकान में काला शैतान समाए, आंसर वाटरमेलन। ये आपने जो है पहेली का जवाब अब दिया है मेरे ख्याल से, तो कोई बात नहीं, इस पहेली का जवाब भी पता करेंगे साहब कौन सी पहेली थी आपसे पूछी गई जो आपने जवाब इसका अब दे दिया। हमारे पास ललिता कश्यप जी का एज यूजल जो मैसेज आया है, हाय अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी, आप भी गुड वाला इवनिंग आपके लिए भी। आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़ बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद। कभी कभी इसी चक्कर में हम अटक जाते हैं कि आप जैसे बोलते हैं आपका मैसेज आएगा तो क्या बोलेंगे आपसे। हमारे पास एक मैसेज और आया है, शंकर लाल यादव जी, उन्होंने अपना नाम लिख दिया, शंकर लाल यादव जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले हर हर शंभू। तो ज़रूर ये गाना प्ले करेंगे, शो के अंत में ये गाना ज़रूर प्ले होगा। तो मिलाइए कॉल और बात करते हैं खूब सारी 9837896896 पे, दिल से आपकी बात, क्या रहा आपका इंस्टेंट प्लान। तो कुछ भी हो तो शेयर तो कीजिएगा और कोई ना कोई तो खास होता ही है जिसके साथ आप इंस्टेंट प्लान कभी भी बना लेते हैं, तो उसके बारे में बताइएगा साहब। चलिए सुनते हैं, तब तक जब प्यार किया तो तक प्यार करोगे, नहीं तो डरना कैसे सीखोगे। जो जो शादीशुदा है वो समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं।

来来来来

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलते हैं, चलिए छोटी सी पहेली का जवाब देंगे पहले आप लोग, उसके बाद चलेंगे आगे की बातों पे। ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है? सोचिए सोचिए जनाब, कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है? मैसेज करें 9837896896 पे और बताएं कि इस पहेली का क्या जवाब होगा। जब तक आप आंसर भेजेंगे तब तक एक इंस्टेंट प्लानिंग की है और वो बताएंगे। कभी कभी हम प्लानिंग में इतनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि प्लान बनाने में जितना समय लगाना था उससे ज़्यादा समय तो प्लान बनाने में लग जाता है। एग्जाम्पल एक कहेंगे कि आज अपने ही एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, कहता हूँ मैं कि चलो भाई आज मूवी चलते हैं, फिर हमारा डिस्कशन होता है कौन सी मूवी, कौन से थिएटर में, कितने बजे चलेंगे और कौन सी सीट पे बैठेंगे, पॉपकॉर्न कौन खिलाएगा या पार्किंग कौन करेगा, और आखिर में चलो अगले संडे ही देख लेंगे। तो ये जो होती है ना प्लानिंग, ये बस हवा हवाई वाली प्लानिंग हो जाती है। हमारे एक लिसनर हैं जो हमसे जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं अभी। हाँ जी हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? नाम बताइए अपना।
1: मोहम्मद नौमान
0: जी, कहाँ रहते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
1: खेड़ा टाना में रहता हूँ मैं, और मैं क्लास 9th, अगले साल हाई स्कूल करना है।
0: उसके बाद 11वीं, उसके बाद 12वीं है ना?
1: जी सर।
0: और उसके बाद
1: एक शायरी मानना चाहूंगा।
0: शायरी बोलना चाहेंगे? बोलिए बोलिए, सुनाइए।
1: हर फूल खुशबूदार नहीं होता, के हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरों से मिलती है अक्सर नजरें, नजरों से मिलती है अक्सर नजरें, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता।
0: क्या बात है, क्या बात है नुमान साहब, आपने तो बहुत ही गहरी बात कही।
1: मेरे दोस्तों का गाना के नाम बताऊं?
0: हाँ, गाने का भी नाम बताइए।
1: ये वाला गाना, मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आती हो तुम।
0: क्या बात है, क्या बात है। ये आप क्लास में ही पढ़ाई करने जा रहे हो या आसपास स्कूल के अलावा कहीं और पढ़ाई चल रही है आपकी?
1: नहीं,
0: पक्का?
1: मैं रहता हूँ और ये कोचिंग वो ले लिए ट्यूशन के लिए।
0: ट्यूशन ले लिए, तो ट्यूशन वाली पढ़ाई अलग चल रही है?
1: जी सर।
0: चलो साहब, अच्छी बात है। और कौन
1: मेरे
0: किस किस
1: दोस्तों के नाम ले लो, दोस्तों के नाम।
0: हाँ, अब वो तो आप ही लोग है ना अपने दोस्तों के नाम। तो
1: वसीम अकरम
0: कौन, ये जो गेंदबाज है वो?
1: वसीम अकरम, हारिस किंग, अनस
0: बिरयानी। इनका नाम ही अनस बिरयानी है?
1: जी।
0: क्या बात है, इनका ये तो पहली बार सुना हमने साहब। हमने आलम बिरयानी सुना था, जुनैद बिरयानी सुना था, ये
1: नाम है उनका,
0: है?
1: अनस बिरयानी। क्यों नहीं,
0: बहुत अच्छा। आपने नुमान साहब, ये जो शायरी आपने जो भी इससे पहले हमें सुनाई थी, ये आपने कहाँ से पढ़ी, मतलब किस शायर की सुनाई थी या खुद ही लिखी थी आपने? ये
1: खुद ही लिखी थी। एक बार और सुनाओ सर प्लीज।
0: हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं।
1: किसी को ताकू या ना ताकू, एक शख्स को जरूर ताकना है, आ गया है वो सामने, हकीकत है या सपना है, लोग कब कैसे ईद मनाते हैं ये लोग ही जाने, लोग कब कैसे ईद मनाते हैं ये लोग ही जाने, हम जब चाहे ईद मना ले क्योंकि चांद हमारा अपना।
0: क्या बात है नुमान साहब, आज आपने तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्क्स मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, आए या नहीं आए, मगर आपने जो आज शायरी सुनाई है गजब की सुनाई है।
1: प्लीज थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट।
0: गुड नाइट। तो ये थे श्रोताओं हमारे साथ नुमान साहब, जिनके गाने की फरमाइश भी आप कहेंगे ना, दिल ने ये कहा है दिल से, तो दिल की बात है, उन्होंने एकदम दिल वाला गाना ही चुना है। पढ़ाई में भी मन लग रहा है साहब का, पूरी पूरी बातें हैं, बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई है, और कहते हैं ना एकदम बिल्कुल सटीक होकर बातें करिए, तो ये होना चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं और

जितने भी इस समय स्टडीज अपने कर रहे हैं, तो वो जितने एक्टिव रहेंगे, जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जितना कहते हैं ना पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान देंगे, वो उतना ही आगे अपने कहते हैं करियर की तरफ एक कदम आगे और चलते रहेंगे। तो चलिए नुमान साहब का भी गाना सुनते हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ लिसनर्स हैं उनकी भी आज जरा मैसेजेस पढ़ते हैं। एक मैसेज में शायरी आई है, इन्होंने लिखा है अनजान शायर। क्या बात है अनजान शायर साहब, आपकी भी सुनते हैं। सोच समझ कर कदम बढ़ाना भी ज़रूरी है, मगर हर कदम को रोक रोक देना भी ठीक नहीं। कुछ फैसले दिल से भी होने चाहिए, क्योंकि हर खूबसूरत कहानी की प्लानिंग नहीं होती। क्या बात है अनजान शायर साहब, आज आपने हमारी बात पे एकदम अलग बात रखी है और बहुत ही सही बात बोली आपने, क्योंकि हर खूबसूरत कहानी की ना प्लानिंग नहीं होती है। जो जो अचानक से इंस्टेंट आपके साथ होता है, उसकी एक अलग ही कहानी होती है और वो पल अपने में ही खूबसूरत बन जाता है। हमारे एक लिसनर हैं राहुल जी संभल से। क्या बात है भाई, मेरा सबसे अच्छा इंस्टेंट प्लान दोस्तों के साथ रात में चाय पीने जाने का था। सोचा था 20 मिनट में वापस आ जाएंगे, लेकिन 3 घंटे बातें करते रहे। राहुल जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप दोस्तों के साथ ऐसा प्लान बनाएंगे ना, तो वो 3 घंटे क्या, वो 3 से 4 घंटे भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ज़िंदगी की ये सबसे प्यारी और सबसे अच्छी इंस्टेंट प्लानिंग होती है, अचानक वाली। फ़ोन करा, हाँ भाई कहाँ पे हो अर्जुन, भाई मैं तो अभी घर पर हूँ। नहीं नहीं भाई, तू नीचे आ जा फटाफट, जा चल रहे हैं, 2 मिनट का चाय ब्रेक लेके आ रहे हैं। अब वो 2 मिनट का कब आपका वो चाय ब्रेक 2 घंटे का हो गया, वो बहुत ही बढ़िया हो गया था। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपस में शेयर भी होती, तो टेंशन लाइफ की ना बिल्कुल अचानक वाली प्लानिंग से ही ख़त्म होती है अगर कहें तो। एक हमारी और लिसनर हैं जिनका मैसेज आया है आशियाना कॉलोनी से, रितिका। रितिका जी कहती हैं, मेरे हिसाब से इंस्टेंट प्लान में सबसे पहले बजट देखना चाहिए, एक्साइटमेंट में ज़्यादा खर्च हो गया तो वो मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा, 100% सही कहा रितिका जी आपने, क्योंकि प्लान चाहे इंस्टेंट हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल तो इंस्टेंट नहीं होता ना, वो तो आएगा भाई साहब, आपको इस 45 डेज के अंदर पे करना है, वरना उसकी छोटी सी इंस्टॉलमेंट बननी चालू हो जाएंगी। तो ज़रूर बजट देख के ही आप इंस्टेंट प्लानिंग करें, वो तभी है जब आप कभी दूर जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अमित कहते हैं बुद्धि विहार से, मैं अचानक घूमने निकलता हूँ तो गूगल मैप और वेदर ज़रूर चेक करता हूँ। क्या बात कही आपने अमित जी, और इस समय तो बुद्धि विहार का भी आपको मैप और वेदर दोनों ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बादल हो रहे हैं थोड़ी जगह पे और गड्ढे ऐसे हैं कि भाई साहब गूगल मैप पे देख लीजिएगा कौन सा रास्ता ब्लॉक हो रहा है कहाँ का और कौन सा रास्ता ओपन है। और थोड़ा सा रोमांटिक रेन सोच कर निकलें, क्योंकि रास्ते में ना अगर फ्लड मिल गया तो रोमांस से पहले स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। पूजा जी कहती हैं लाजपत नगर से, आज क्या बात है, आज हमारे साथ सभी जगह से मैसेजेस आए हैं, अपने मुरादाबाद के कोने कोने से आए हैं। कोई ना कोई तो बुद्ध बाजार में होगा इस समय जो हमें सुनना होगा, और ज़रूर हमें मैसेज करके बोलेगा हाँ जी मैं भी हूँ यहाँ पे बुद्ध बाजार से बोल रहा हूँ, मुझे इंस्टेंट प्लान्स पसंद हैं लेकिन फैमिली को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा पूजा जी, एडवेंचर ज़रूरी है, लेकिन घर वालों को ये पता होना चाहिए कि आप एडवेंचर पे हैं या कहीं मिसिंग पर्सन तो नहीं है, तो घर वालों को पता चले। और कोई भी आपकी प्लानिंग हो, इंस्टेंट भी हो, तो आजकल तो व्हाट्सएप और कॉल से 1 मिनट दूर बस एक मैसेज ही कर दीजिए, पापा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ या माँ मैं तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी सी डांट पिटेगी मगर प्लानिंग तो पूरी हो जाएगी ना। तो चलिए आपसे ही बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, नुमान का फरमाइश सुन के 9837896896 पर जो भी बातें हैं दिल खोल के करेंगे, क्योंकि ये होगी हमारी लास्ट कॉल। तो सुनते रहिए, रेडियो बजाते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM मुरादाबाद।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, आज खूब सारी बातें हुई हैं हमारी, कहाँ कैसे प्लानिंग करनी है। इंस्टेंट जो इंस्टेंट प्लानिंग होती है सिर्फ घूमने या पार्टी के लिए नहीं होती है, लाइफ में कई बार अचानक अपॉर्चुनिटी भी आती है। किसी ने जॉब ऑफर किया या किसी ने बिजनेस या पार्टनरशिप की ऑफर शिप कह दी कि भैया कहते हैं ना ऑफर आ जाते हैं ऐसे, और किसी ने

0: कभी अचानक सामने आ जाते हैं। समझदार वही है जो मौके और खतरे के बीच का फर्क पहचान ले। तो चलिए बात करते हैं अपने लिसनर से, लास्ट कॉल लेते हैं। और ये जो हमारे लिसनर हैं, ये भी रेगुलर लिसनर हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शायरी करते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका, बता दीजिए सभी को। बस यही आवाज सुनना चाह रहे थे सभी लोग। बहुत ही सही बात। क्या कर रहे हैं उस्मान जी आप?
1: आज दिल पिक्चर का गाना सुनना है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए।
0: ए साहब, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई। इस समय अगर चैन, अगर आपको चैन नहीं लग रहा है तो बेचैनी हो रही है, तो उसके लिए पहले दिखाना पड़ेगा। और क्या कर रहे हैं उस्मान जी, कोई शायरी सुनाइए।
1: अच्छा साहब, सब कुछ मुझे पता है मगर ये खबर नहीं, मेरी खुशी की दुनिया किधर है किधर नहीं। सुनते हैं दिन बहार के गुलशन में आ गए रौनक, किसी भी फूल पे आई नजर नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात है उस्मान जी। और उस्मान जी, मौसम कैसा है आपकी तरफ?
1: बहुत बढ़िया, बस आपकी दुआ है। अच्छा है, मौसम ठंडा हो गया है, ज्यादा गर्म नहीं है।
0: अब ज्यादा गर्म नहीं है। चलिए, ये गाना सुन के, ये गाना सुन के आपको ज्यादा गर्म भी नहीं लगेगा, आपको चैन की नींद आएगी। और मुझे नींद ना आए और मुझे चैन ना आए, बस आज आपको बहुत बढ़िया वाली नींद आने वाली है उस्मान जी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओ, ये थे हमारे लास्ट कॉलर उस्मान जी, जो कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, ये वाला गाना इनकी पसंद का प्ले करना चाहिए या कोई और गाना प्ले करें? नहीं नहीं साहब, अगर चैन लेके आना है और नींद प्यारी से चाहिए तो इन्हीं की फरमाइश का गाना प्ले करेंगे। उससे पहले मैंने आपसे जो पहेली पूछी थी उसका जवाब बहुत ही बढ़िया और एक बार में कहते ना बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो विनर है हमारी ललिता कश्यप जी, जिन्होंने उसका जवाब दिया है अंडा, एग। और उन्होंने एक कहते हैं शायरी भी लिखी है, कुछ लिखा है उन्होंने। महफिल में जब अखिल सर मुस्कुराते हैं, उदास चेहरे भी खिलखिलाते हैं, उनकी बातों का क्या कहना जनाब, हंसी के ऐसे पटाखे छोड़ते हैं कि सब लोट पोट हो जाते हैं। बिल्कुल जो है ना, अब आज मस्ती में हैं कश्यप जी। और आपने बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी अच्छी बात आज लिखी। चलिए दोस्तों, अब हमारा हो गया चलने का टाइम। खूब सारी बातें हुई आज इंस्टेंट प्लानिंग के ऊपर। एक और मैसेज आया हुआ है। हेलो अखिल सर, गुड इवनिंग, आप कैसे हूँ? मैं बहुत बढ़िया हूँ, अदिति कश्यप मुरादाबाद से। तो अदिति जी, आप भी, मेरी पूरी पूरी उम्मीद है आप भी बहुत अच्छी और बहुत ही खुश होंगी इस समय और खूब एंजॉय कर रही होंगी अपने इस मौसम को भी, हर पल को भी। और आज की हमारी इतनी सारी बातें भी थी, वो भी आपने ज़रूर सुनी होगी। तो सुनी होंगी तो इंस्टेंट प्लानिंग ज़रूर करिएगा। और कुछ बातें जो चलने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, एक छोटी सी अलविदा लेने से पहले, कि हमेशा याद रखिएगा कि प्लानिंग ज़रूरी है लेकिन ओवर प्लानिंग नहीं। बजट देखिए, टाइम देखिए, सेफ्टी देखिए, साथ कौन है ये ज़रूर देखिए, और सबसे ज़रूरी बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में हर प्लान आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन खूबसूरत बात यह है, कभी कभी बिगड़ा हुआ प्लान ही सबसे अच्छी याद बन जाता है। तो एक फाइनल शायरी चलने से पहले, हर दिन कैलेंडर में लिखा हुआ नहीं होता, हर दिन कैलेंडर में लिखा हुआ नहीं होता, कुछ दिन अचानक खूबसूरत बन जाते हैं, कुछ मुलाकातें बिना प्लानिंग के होती हैं और कुछ पल दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो दोस्तों, अपने प्लान बनाते रहिए लेकिन ज़िंदगी को भी इतना प्लान मत करिएगा कि सरप्राइज़ के लिए कोई जगह ही ना बचे। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग, जहाँ बात सिर्फ शब्दों की नहीं दिल की भी होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी कल 9 बजे से 10 बजे तक दिल से दिल तक अखिल संग में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।

मैं दिल से जरूर जुड़िए साहब, मिलेंगे कल खूब मस्ती के साथ। आज जिन जिन की कॉल हम नहीं उठा पाए, जिनसे बात नहीं हो पाई, उनसे कल करेंगे पक्का बात। कल होगी आपसे सबसे पहली मुलाकात। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

बस थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी। मुझको बीवी, मुझको बीवी, मम्मी डैडी।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।